हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं

हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 33 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगली प्रसारण के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनेंगे हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद हम सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फहतनाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत

0: स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कुब्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीएनकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: ये है विविध भारती
0: वंदन वार।

चिंतन। अतीत में फंसना और भविष्य

की चिंता करना दोनों ही वर्तमान को खोखला कर देते हैं। ये कथन ओशो का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 257। संगीत सरिता, इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला घुंघरू की तरह का भाग 2। कलाकार गायक संगीतकार रविंद्र जैन, प्रस्तुति रूपाली रूपक। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए कार्यक्रम युगल गीतों का, हम है राही प्यार के।

समाचार प्रभात होंगे सुबह 8 बजे और 8:15 पर। सुनिए कार्यक्रम त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और 9:30 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा गायक पार्श्व गायक मुकेश पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, संपादन आकांक्षा सिंह का, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और पुनः प्रसारण रात 9:30। रंग तरंग कार्यक्रम सुनिए दिन में 11 बजे और दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 बजे श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार सुनिए दिन में 2:15 पर और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3 बजे और दोपहर बाद 4 बजे। सुनिए पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर शाम 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 होगा झरोखा, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। संध्या रंजन का समय होगा शाम 6:35, 6:45 पर संगीत सरिता। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे और 7:45 पर। इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए राग अनुराग। हवा महल कार्यक्रम में सुनिए नाटक मेरे दत्तक पिताजी, लेखन सीवी जोशी का, हिंदी रूपांतर प्रभा भावे, निर्देशक मुख्तार अहमद। रात्रि 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे विविध भारती पर। समाचार संध्या में होंगे समाचार रात्रि 8:45 पर और 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात, इस कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10:30 पर और रात 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये थी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। शाम 6:30 आप फिर से सुन सकेंगे शेष कार्यक्रम और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अब सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 257।

विलाप करती सीता को रावण अपनी रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से उड़ चला। मार्ग में एक स्थान पर गिरिशृंग पर बैठे वानर समूह को देख सीता ने अपना एक वस्त्र खंड गिरा दिया। उधर मारीच वध के स्थान पर अनुज लक्ष्मण को आया देख श्री राम ने

चिंता प्रकट की। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर लक्ष्मण वहां क्यों चले आए? गोदावरी तट पर आश्रम सूना पाकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। विलाप करते वन में भटकते दोनों भाइयों की तब जटायु से भेंट होती है, जो रावण से युद्ध में परास्त होकर जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री राम के दर्शनों के लिए अब तक उनके प्राण टिके हुए हैं।

0: संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: संगीत सरिता में एक बार फिर रविंद्र जैन साहब का स्वागत है। मैं दादा आपको नमस्कार कहता हूँ।
2: मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको दोबारा बुलाने के लिए और सबको प्रणाम करता हूँ।
1: दादा, पिछली कड़ी में हमारे श्रोताओं ने आपके व्यक्तित्व की महानता पर एक नज़र डाली। आपके व्यक्तित्व के कितने आयाम हैं, कितनी दूर तक फैले हैं आप एक कलाकार के रूप में, गायक और संगीतकार और लेखक के रूप में। आज हम बात करते हैं आपके संगीत में जो फोक संगीत का समावेश हुआ है, लोक संगीत जो है, भारतीय लोक संगीत, विभिन्न प्रांतों का संगीत, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपने अपने फिल्मी गीतों में प्रांत प्रांत के संगीत को डालकर फिल्मी गीत को दूर दराज तक कैसे पहुंचाया और क्या विधा थी वो।
2: ये जो लोक संगीत की हम बात कर रहे हैं, हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि खासतौर से हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ कि जब हमारा जीवन शुरू होता है उससे पहले से उसकी जो धुनें हैं आपको गर्व से ही आपकी कानों में डाल दी जाती हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसकी तो है ही बहुत सारी धुनें, जब अलग अलग सोहर और चीज़ें आप सुनते हैं उससे पहले के संस्कारों में भी आपको सुनने को मिलता है, जिसको आप बाद में भी सुनते हैं। और शास्त्रीय संगीत जो कि सीखने से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन लोक संगीत जो है वो आपको विरासत में मिलता है। और मैं चूँकि अलीगढ़ से मेरा संबंध रहा, अलीगढ़ में पैदा हुआ हूँ, तो वो ब्रिज भाषा का भी वहाँ उतना ही प्रभाव है उस क्षेत्र पे। ब्रिज भाषा ही बोलते हैं लोग और उर्दू बोली जाती है, हिंदी उर्दू का मिला जुला माहौल है। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने इस किस तरह मैंने उन वहाँ की धुनों को इस्तेमाल किया है
1: अपने गीतों में।
2: जी, अपने गीतों
1: जी जी।
2: तो सबसे पहले मैंने ये ब्रिज का जो फोक इस्तेमाल किया, मैं अपने परिचय में एक पहले छोटा सा मुखड़ा आपको सुना, तो तुम्हारी फोक पे सुना रहा हूँ।
1: जी जी।

0: ये हमारी लोग धुन है ब्रज की
1: जी,
0: और बोली भी वही है
1: जी,
0: और मेरी आपने शैली भी इसमें समझ दी होगी कि मैं किस तरह उसका इस्तेमाल करता हूँ।
1: बहुत ही सुंदर।
0: तो ये इसी तरह हमारे यहाँ मल्हारे हैं, देखिए पीलू में ही है ज्यादातर चीजें
1: जी।
0: सब ब्रज का जो फोक है ना, पीलू और काफी इसी में ज्यादातर बातें हैं।

0: ये गीत मैंने मेरे मित्र शिव कुमार की फिल्म में ब्रिजभूमि में रिकॉर्ड किया था।
1: अच्छा, अपने
0: इसके बाद जो मुझे जो बड़ी फिल्म मैंने जिसके लिए मुझे जाना जाता है
1: जी,
0: वो थी सौदागर राशि वालों
1: जी जी जी,
0: राजबाबू राशि प्रोडक्शन का, उस वक्त प्रोडक्शन का काम सारा उनके जिम्मे था, निर्माण वहाँ का। तो वो मेरे बड़े मित्र हैं और वो सबसे पहले मुझे गीतकार मानते हैं, या आज तक उनका मानना यही है, क्योंकि उनको मैंने जो गीत सुनाए थे उनसे प्रभावित रहे वो आज तक, और उसी प्रभाव में अभी तक गीतकार ही पहले कहते हैं, संगीतकार उनके यहाँ बाद में लिखते हैं मेरे नाम के आगे। तो वो फिल्म

0: सौदागर थी, जो एक शॉर्ट स्टोरी थी नरेंद्रनाथ जी मित्र की, रस बंगला परिपेक्ष था कहानी का
1: जी,
0: खजूर का गुड़ बनाने वाले की कहानी थी। तो कहानी में एज सच कोई सिचुएशन गाने कानों की नहीं थी, तो हमने बैठ के सारी सिचुएशंस वर्कआउट की और उन्हीं के ऑफिस में 7 दिन में सारा म्यूज़िक कंप्लीट किया। एक गाना रोज़ उनके लिए मैं सिचुएशन बनाता था और लिखता था और वहीं कंपोज करता था। राजबाबू को मैं जब पहली बार मिला तो मैं कलकत्ते की कुछ चीज़ें वहाँ से बना के लाया था, जिनमें से एक गाना वो गोपाल कृष्ण ने रिकॉर्ड किया पहला गाना, हमारे कीर्तन अंग का गाना है बंगाल का
1: जी।

0: वाह वाह,
1: टिपिकल बंगाल।
0: हाँ, टिपिकल बंगाल।
1: और भटियाली जो वहाँ का बहुत माझी
0: माझी गीत,
1: नाव खेने वालों का गीत है
0: जी,
1: वो मनाता ने बहुत अच्छा बड़ा सुंदर गाया है। और मैं अभी भी उस गीत का जो भाव है उसको मानता हूँ कि अभी तक मेरा भी किनारा बहुत दूर है, क्योंकि संगीत
0: अनंत है।
1: इस प्रोग्राम का नाम तो संगीत सरिता है, लेकिन संगीत सचमुच एक सागर है।

0: इस गीत में मैंने सिर्फ बोल सजाए हैं, धुन पारंपरिक है और जैसा कि इसका भावार्थ है, मैं भी यही मानता हूँ कि अब एक आध कदम का हिसाब क्या रखूँ, अब एक आध कदम का हिसाब क्या रखूँ, अभी तलक तो वही फासला लगे है मुझे, यानी दूर है किनारा।
1: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
2: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आज सुनते हैं उनकी वही अमर धुनें जो हर दौर में दिलों को छूती रहीं। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम इस महान गायक कलाकार को स्नेहपूर्वक याद करते हुए सुनते हैं उनके कुछ भूले बिसरे गीत।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, जब भी एहसासों को आवाज देने की बात होती है, मुकेश का नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है। आइए

बने अंगारे, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना। गायक कलाकार थे मुकेश, आनंद बख्शी की रचना और कल्याण जी आनंद जी की धुन। मुकेश के गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे हर गीत को पूरी सादगी और सच्चाई से निभाते थे। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज आज भी सीधे दिल तक पहुंचती है। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। आवाज एक बार फिर मुकेश की, फिल्म का नाम मधुमति, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी की धुन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और इस समय वक्त है एक अंतराल का।

भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मल्हार। इस फिल्म का गीत आवाज मुकेश की, कैफ इरफानी ने इसके बोल लिखे हैं और रोशन का संगीत।

दर्द हो, प्रेम हो या जीवन की कोई गहरी भावना, मुकेश ने हर एहसास को अपनी आवाज में इस तरह पिरोया कि उनके गीत समय की सीमाएं पार कर गए। आइए अब सुनते हैं आवारा फिल्म का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन की धुन।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा यानी विनोद का प्यार भरा नमस्कार। आज श्रोताओं ढेर सारी बातें करेंगे कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सुविचार से।

स्वामी विवेकानंद का कथन है, गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है।

श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में नज़र डालेंगे आज के इतिहास पर। आज 22 जुलाई है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 22 जुलाई वर्ष का 203वां दिन है। लीप वर्ष में यह 204वां दिन है। साल में अभी और 162 दिन शेष हैं। 22 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नज़र डालें तो आज ही के दिन 1999 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान परिश्रमिक की कार्य योजना लागू की गई थी। और आज ही के दिन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। और आज ही के दिन यानी 22 जुलाई 2009 को सूर्य ग्रहण, जो 29वीं सदी के सबसे लंबे पूर्ण सूर्य ग्रहण था, आज ही के दिन हुआ था, 22 जुलाई 2009 को। अब नजर डालते हैं आज जन्मे व्यक्तियों पर। इसमें पहला नाम आ रहा है 1923 को जन्मे मुकेश कुमार का, जो प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं, जिनका नाम मुकेश कुमार है, आज भी हम लोगों के दिलों में रहते हैं। उनका जन्म आज ही के दिन 1923 को हुआ था। और आज ही के दिन जन्म हुआ था 1965 को संदीप पांडे का, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता रहे। संदीप पांडे, उनका जन्म आज ही के दिन 1965 को हुआ था। और जन्म हुआ था आज ही के दिन 1898 को विनायक राव पटवर्धन का, जो प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक रहे। विनायक राय पटवर्धन, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1898 को हुआ था। और आज के दिन जन्म हुआ था 1933 को हिम्मत शाह का, जो भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, उनका जन्म आज ही के दिन 1933 को हुआ था। अब निधन हुए व्यक्तियों पर नज़र डालते हैं तो इसमें पहला नाम आ रहा है 1933 को निधन हुए यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त का, जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक रहे। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, उनका निधन आज ही के दिन 1933 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 1968 को मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का, जो भारत के प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता रहीं। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, आज ही के दिन निधन 1968 को हुआ था। अब हम आखिर में नज़र डालेंगे 22 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों पर। तो श्रोताओं, आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय आम दिवस और राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। श्रोताओं, इसी कड़ी में अब सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म आबरू से, गाया है इसे मुकेश ने। जीएल रावल के लिखे इस गीत को सोनी कोमी ने संगीत दिया है। फिल्म है आबरू।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना मुकेश की आवाज़ में, फिल्म आबरू से। अब कार्यक्रम को गति देते हुए नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम की गुफा में इस बार श्रावणी मेले के दौरान जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को विशेष और नई सुविधाएं मिलने जा रही है। मुख्य द्वार पर अतिक्रमण के कारण लगने वाली भारी भीड़ से अब श्रद्धालुओं को काफी हद तक निजात मिलेगी।

क्योंकि प्रशासन ने वहां के अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया है। मुख्य द्वार के भवन का नीले रंग से रंग रोगन करवाकर उसे यात्री सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सबसे बड़ी राहत की यह बात है कि गुफा के अंदर प्रवेश करने पर फर्श पर पड़े नुकीले पत्थर जो श्रद्धालुओं को पैरों में चुभते थे, इस बार उसके ऊपर रबर की मैट बिछाए जाएंगे। गुप्ता धाम की गुफा में बिछाए जाएंगे रबर की मैट, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा आज यानी 22 जुलाई रोहतास जिले के सासाराम में 12 परीक्षा केंद्रों पर एकल पाली में आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में कुल 6,624 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा पूर्वाहन 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होगी। मुहनिया समिति के चेक पोस्ट पर ट्रक चालकों से हो रही कथित अवैध वसूली के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 3 सैप जवान को, 1 होमगार्ड जवान को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 83,300 रुपए नगद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कैमूर जिले में पंचायतों पर जनसंख्या का दबाव घटाने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में अभी 146 ग्राम पंचायतें हैं। नई प्रसीमन के बाद यह संख्या 1.5 गुना होकर करीब 220 तक पहुंच जाएगी। आधार वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े होंगे। अभी हर पंचायत की औसत आबादी 10,000 से ऊपर है। इसे विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में दिक्कत आती थी, शिकायतों से निपटारे में भी परेशानी होती थी।

मुकदमा मुक्त ग्रामीण भारत बनाने की दिशा में कैमूर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहां 3 दिवसीय कम्युनिटी मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हो गया है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में कम्युनिटी एडिएशन टूवर्ड्स ए एलिगेशन फ्री रूलर इंडिया 2 के योजना के तहत आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के अंतिम दिन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रविन्द्रनाथ चौबे ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। वे नालसा के वरिष्ठ प्रशिक्षक प्रशिक्षक भी हैं। उन्होंने चयन 35 कम्युनिटी मीडिएटर्स को नालसा और वालसा की एपीओ और दिशा निर्देश के अनुसार मध्यस्थता की तकनीकी सिखाई। कैमूर जिला अंतर्गत राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज जैतपुर भगवानपुर में साइबर पुलिस स्टेशन कैमूर की ओर से साइबर मंगलवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंगलवार को रोहतास जिले के सभी प्रखंडों की चयनित 66 पंचायतों में सहयोग शिविर लगाया गया। दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर में डीएम दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार उपस्थित होकर आम जन से सीधे संवाद किए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। शिविर के दौरान पात्र लाभुकों के बीच राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र तथा शौचालय निर्माण प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया। इसमें यह निर्णय लिया गया कि लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि प्रशासन स्वयं पंचायत स्तर पर पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा। डीएम ने बताया कि जनसेवा पंचायत में शिविर आयोजन के पूर्व विशेष अभियान चलाकर शिक्षा, जन्म प्रमाण पत्र, नल जल योजना, राशन कार्ड, श्रम कार्ड, भूमि परिमार्जन और भूमि मापी सहित विभिन्न विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त कर जिन उस पर निपटारा किया जाएगा। पीएचसी परिसर में टीबी उन्मूलन अभियान को गति

के उद्देश्य से निश्चय मित्र योजना के अंतर्गत टीबी मरीजों के बीच पोषण आहार का वितरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एन के आर्या समेत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों एवं निश्चय मित्रों ने इस अभियान में सहभागिता निभाई। एमपीयूआईसी के तहत अन्य चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने निश्चय मित्र बनकर टीबी मित्रों को गोद लिया तथा उन्हें पोषण आहार से भरा किट वितरित किया। श्रोताओं, इसी के साथ सुन लेते हैं एक और गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में। मजरू के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है, फिल्म है धर्म करम।

अभी आपने धर्म कर्म फिल्म से इस गीत को सुना मुकेश कुमार और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में नज़र डालते हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग खबरों को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, TIR-4 के लिए अधिसूचना इसी महीने, ट्रांसफर पोर्टल भी जुलाई अंत तक खुलेगा। बिहार के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, सरकार ने शिक्षक भर्ती के चौथे चरण TIR-4 की अधिसूचना इसी महीने जारी करने का फैसला लिया है। इस खबर को प्राथमिकता दिया है दैनिक भास्कर ने और पहले पन्ने पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर लिखता है, बिहार में 30 लाख लखपति दीदी, देश में रिकॉर्ड, सम्राट चौधरी। बिहार में 30 लाख लखपति दीदी बन चुकी हैं, यह संख्या पूरे देश में सबसे अधिक है, जो रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जीविका कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह जानकारी दी। इस दौरान 2446 नव निर्वाचित कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। अगली खबर लेते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने इस खबर को प्राथमिकता देते हुए सचित्र छापा है, लिखता है, पेपर लीक के दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई की जाएगी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए मोदी ने साफ कह दिया कि नीट पेपर लीक मामले में सरकार ने कठोर कार्रवाई की है, सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सभी राज्य सरकारों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के हवाले से एक खबर है कि PM आवास के पास धरने पर बैठे राहुल हिरासत में लिए गए। नीट पेपर लीक को लेकर संसद में सड़क तक लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी सियासत गर्म रही। प्रधानमंत्री आवास के पास दोपहर करीब 3:30 बजे धरने पर बैठे कांग्रेसियों को पुलिस करीब शाम 6 बजे जबरन उठाकर ले गई। इस खबर को सचित्र छापा है हिंदुस्तान ने और पहले पन्ने पर जगह दिया है। हिंदुस्तान लिखता है, चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इसी माह। हिंदुस्तान के हवाले से यह भी खबर है कि ट्रेनों की गति बढ़ाने को 300 ठहराव होंगे खत्म। भारतीय रेलवे जल्द ही लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार में बड़ा इजाफा करने जा रही है। इसे लिए देश भर में प्रायोगिक आधार पर दिए गए 300 से अधिक ठहराव को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने का खाका तैयार किया गया है, जिससे यात्रियों का यात्रा समय 15 से 45 मिनट तक घटेगा। नई व्यवस्था अक्टूबर 2026 तक लागू होगी। रेलवे बोर्ड ने वरिष्ठ अधिकारी के लिए वर्ष 2021 से 25 के बीच स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसदों व विधायकों को सिफारिश और क्षेत्रीय जनता की मांग पर सैकड़ों स्टेशनों पर 6 महीने के प्रायोगिक आधार पर ट्रेनों के ठहराव मंजूर किए गए थे। दैनिक जागरण के हवाले से खबर लेते हैं। दैनिक जागरण लिखता है इस खबर को प्राथमिकता देते हुए कि 5वीं सक्षमता परीक्षा में 10,159 गुरुजी फेल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मंगलवार को 5वीं सक्षमता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर त्यागराजन SM ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि कुल 30% शिक्षक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है।

पांचवी सक्षमता परीक्षा में कुल 14,512 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें 6,559 पुरुष और 7,953 महिला शिक्षक अभ्यर्थी थे। परीक्षा में कुल 4,353 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। सफल होने वाले में 1,870 पुरुष और 2,483 महिला शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हैं। वर्ग एक से पांचवी में कुल 13,235 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 3,868 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। अब लेते हैं प्रभात खबर के हवाले से खबर। प्रभात खबर लिखता है, शिक्षक

शामिल हैं। वर्ग एक से पांचवी में कुल 13,235 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 3,868 शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए। अब लेते हैं प्रभात खबर के हवाले से खबर। प्रभात खबर लिखता है, शिक्षकों का जिला कैडर बनेगा, इसी माह TIR-4 के लिए अधियाचना जारी किया जाएगा। आने वाले समय में शिक्षकों का जिला कैडर बनाया जाएगा, ये अपना जिला परिवर्तित नहीं कर सकेंगे। विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक गौतम कृष्ण के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य सरकार इसी महीने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TIR-4 की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजेगी। श्रोताओं, अब इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: अभी हमारे श्रोता प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा।

0: और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत का औषधि उद्योग नॉर्थ मैसेडोनिया में दवाओं और चिकित्सक उपकरणों के संयुक्त उत्पादन में निवेश कर सकता है। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड चेन, नवीकरणीय ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने नॉर्थ मैसेडोनिया को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदारोधी अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभाश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
0: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBU 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोस की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ieefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को

0: मंजूरी दी गई।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
2: यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है,
3: पर मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावादी सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अम्स करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा भी की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नास।
5: धन्यवाद मनीष। देश की

0: राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत फिल्म गंगा जमुना से। हेमंत कुमार और साथियों ने इसे गाया है। गुलाम मोहम्मद का संगीत है और नौशाद का गुलाम मोहम्मद का गीत है। हेमंत कुमार और साथियों ने गाया है। गंगा जमुना फिल्म का नाम है।

अभी हमारे श्रोता गंगा जमुना फिल्म से एक देशभक्ति संगीत सुना। गायक कलाकार थे हेमंत कुमार और साथी। श्रोताओं, सुबह के 8:20 होने वाले हैं। अब हम सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। स्वागत है कार्यक्रम पसंद आपकी में आप सब श्रोताओं का। कार्यक्रम का सबसे पहला गाना सुनते हैं, प्यासा सावन फिल्म से सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर ने इसे गाया है। संतोष आनंद के लिखे इस गीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया है। फिल्म है प्यासा सावन, सुनना चाहे आप सबों ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ये श्रोता हैं इसी गाने की ख्वाहिशमंद। छत्तीसगढ़ से दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मणिकपुरी, लछनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरा से दुर्गा राम साहू ये श्रोता हैं। ग्राम पंचायत काले गांव जफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाघव, श्री डॉक्टर प्रशांत राजे जाघव, कुमारी संचित वयाल। मौताला से आप हैं कुमार प्रथमदेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख। करडा रिसोर से आप हैं कुमारी सानवी देशमुख, कुमार सर्वद देशमुख है ये श्रोता हैं। डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाई छत्तीसगढ़ से आप हैं देवांश देवांगन, कौशल देवांगन और हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गाना सुरेश वाडकर लता मंगेशकर की आवाजों में, प्यासा सावन फिल्म से।

कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म फकीरा से, लता मंगेशकर ने इसे गाया है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का है। फिल्म फकीरा सुनना चाहे आप सबों ने। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, आर के सिंह चौहान। धरसीमा से आप हैं छोटू लाल यादव, श्रीमती सीता यादव, अर्चना, अरुणा यादव, अनुराधा, अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से लक्ष्मू लाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव। ये श्रोता हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा। आप श्रोता हैं ग्राम नहोना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, विमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। अस्मिता रेडियो रिपोर्ट गुरु भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, मुरली छत्री, श्रीमती कविता क्षत्रिय, मिथिलेश यदु, दशरथ साहू, कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वैदेही जोशी। खंडवा मध्य प्रदेश से अब्दुल गफार डावर जी, ये श्रोता हैं न्यू एरिया गली नंबर 6 से मुन्ना, गुड्डेन, आदर्श, ओम, अरुण, नंदिनी, विनय, सुजय, वीना, अनुज, अंकित और उनके दादा दादी।

अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, फिल्म है मेरा गांव मेरा देश। इसके लिए हमारे पास पत्र आया है कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान बेगम निकहत, परवीन सदफ आरजू, शाही लरमान, मशकूर आलम, समा परवीन और बेबी अलीशा का। ये श्रोता हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आप हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। ये श्रोता हैं थाना चांद से भोला डी से, ग्राम सिरहीरा से शंभू प्रसाद चौरसिया, राजू कुमार चौरसिया, गोलू कुमार चौरसिया, प्रभावती देवी, विद्यावती देवी और भैया भरत बाबू। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म मेरा गाँव मेरा देश से।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना,
1: पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म आज और कल से मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर के बोल हैं, रवि का संगीत है। फिल्म है आज और कल, सुनना चाहे आप सबों ने। कुवात से शेख जफर हसन, राकेश रोशन। गोकुल चौक गंगा जला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, बुल्की वाली, फलना जा। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। ये श्रोता है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज आलम, नाज परवीन और अर्श बाबू। ये श्रोता है थाना मुरगढ़ नोखा से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सदमा मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शहबाज। ये श्रोता है इस गाने को सुनना चाहते हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की रिकी, नीतू, रिंकी, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्र, ढोली सकरा से जयंत कुमार वैरागी। तो ये सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आज और कल फिल्म से।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत फिल्म तलाश से। इसे सुनना चाहा है ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश राय, प्रेम कुमार, प्रिंस कुमार, राधे कुमार विद्यार्थी। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से कमला साहनी, पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मल्लिक, अमोल मानकर। रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी साहनी, सुनीता साहनी, संदीप मक्कार। और रंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाहनिया, शाहिन नाज, नाजिया, नूनीराज। करेर बिहार से बेगम निकहत परवीन और सदफ आरजू। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में तलाश फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ अब दीजिए इजाजत अपने रेडियो दोस्त विनोद को, कार्यक्रम पसंद आपकी से नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। श्रोताओं, सुबह के 8:45 हो चुके हैं, सुनते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार थोड़ी देर में।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 आईसीयू का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवली चक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत राज्य के 26 जिलों में 38 सघन चिकित्सा इकाइयों आईसीयू का निर्माण होगा। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी आईसीयू के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों की स्थापना और संचालन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, जबकि केंद्र सरकार आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार से संबंधित कोई प्रशासनिक अनुमोदन प्रस्ताव लंबित नहीं है। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पंचायतें शुल्क वसूल सकेंगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों और अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भवन का नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा की तर्ज पर गठित होने वाले प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। विधानसभा में कल इस विधेयक की प्रति सदस्यों के बीच वितरित की गई। राज्य सरकार ने कहा है कि जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर के दौरान हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य के लगभग 700 उच्च विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है।
1: पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था तो लगभग 600 से 700 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमें जमीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वह हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चल। माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाए।
0: विधानसभा ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य में कृषि भूमि का व्यावसायिक या अन्य गैर कृषि उपयोग के लिए भूमि के संपरिवर्तन की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस विधेयक के माध्यम से वर्ष 2010 के कृषि भूमि संपरिवर्तन अधिनियम को निरस्त किया गया है। मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान लागू होने के बाद कृषि भूमि के गैर कृषि उपयोग के लिए अलग से संपरिवर्तन की

0: अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
1: इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के पश्चात बिहार राज्य में बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रायोजन के लिए संप्रवर्तन अधिनियम 2010 निरस्त हो जाएगा और लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगा, किसी तरह का एनओसी या परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
0: विधानसभा में पक्ष और विपक्ष ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत विधायक निधि की राशि 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6 करोड़ रुपए करने की मांग की। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान योजना एवं विकास मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा कि विधायक निधि बढ़ाने का निर्णय वित्त विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। इसके अलावा सदस्यों ने विधायक निधि से बिना निविदा कराए जाने वाले कार्यों की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी मांग की। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि हर घर नल का जल योजना के संचालन की जिम्मेदारी फिर से वार्ड सदस्यों को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। विधान परिषद में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पंचायती राज मंत्री और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संयुक्त रूप से बैठक कर इस संबंध में निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदस्यों की ओर से दिए गए सुझावों पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा। राज्य सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि राज्य मार्गों पर केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। विधान परिषद में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देशानुसार गैर व्यावसायिक निजी वाहनों से टोल नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में नियमावली अधिसूचित की जा चुकी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए रेल यात्रा रियायत की सुविधा दोबारा शुरू करने का अनुरोध रेल मंत्रालय से करेगी। गौरतलब है कि यह सुविधा कोरोना काल के दौरान बंद कर दी गई थी। बिहार विधानसभा के सभी विधायकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम PMIS पोर्टल के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभा में शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। डॉ. कुमार ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विधायकों को AI के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग से अवगत कराना और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की निगरानी के लिए विकसित PMIS पोर्टल के प्रभावी इस्तेमाल का प्रशिक्षण देना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_Patna को फॉलो कर सकते हैं। भागलपुर की एक अदालत ने काजवलीचक विस्फोट मामले में दो दोषियों मोहम्मद आजाद और नवीन मंडल को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक हेमकांत झा ने बताया कि तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि विस्फोटक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोनों दोषियों को 10-10 साल कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। वहीं अदालत ने दोनों दोषियों को गैर इरादतन हत्या के मामले में 9-9 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा दी है। दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।
4: सत्रवाद संख्या 94-23 जो भागलपुर शहर में भयंकर विस्फोट हुआ था 2022 में काजवली चक में, जिसमें 14 आदमी मर गए थे, 10 आदमी घायल हो गए थे और 3 मंजिला बिल्डिंग उड़ गया था, उसी में 5 अभियुक्त था, जिसमें 3 अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया और 2 जो अभियुक्त हैं मोहम्मद आजाद और

0: तीन मंडल उनको दोषी पाया गया और सजा सुना दिया गया, मैक्सिमम 10 वर्ष की दिया गया है।
1: इधर बेगूसराय की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेशवासियों को कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देंगे और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में 105 नए ICU बेड, 70 वेंटिलेटर गहन चिकित्सा इकाइयों और 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मॉडल के तहत पहले चरण में 11 हब लैब और उनसे संबंध 221 स्पोक लैब के माध्यम से निशुल्क पैथोलॉजी सेवाएं भी आरंभ की जाएंगी। इसके अलावा राज्य के 25 अनुमंडल अस्पताल

0: बेड, 70 वेंटिलेटर युक्त गहन चिकित्सा इकाइयों और 2400 घंटे आपातकालीन सेवाएं शुरू की जाएंगी। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में PPP मॉडल के तहत पहले चरण में 11 हब लैब और उनसे संबद्ध 221 स्पोक लैब के माध्यम से निःशुल्क पैथोलॉजी सेवाएं भी आरंभ की जाएंगी। इसके अलावा राज्य के 25 अनुमंडल अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवा का भी शुभारंभ किया जाएगा। समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
1: वहीं मुख्यमंत्री आज पटना में 46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित भद्रघाट, नौजरघाट और महावीर घाट का उद्घाटन भी करेंगे। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के अन्य जिलों में भी बारिश का पूर्वानुमान है।
2: दिनांक 22 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: दरभंगा जिले में रैयाम चीनी मिल सहकारी समिति की सदस्यता और गन्ना किसान पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि 24 से 26 जुलाई तक केपटी, सिंहवाड़ा और मणिगाछी प्रखंड में शिविर लगाए जाएंगे। कैमूर जिले के मोहनिया स्थित समेकित जांच चौकी पर ट्रकों से कथित अवैध वसूली के आरोप में 3 सैप जवान और 1 होमगार्ड जवान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 83,300 रुपये नकद और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मुंगेर के चर्चित मधु कुमारी की मौत के मामले में फॉरेंसिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि जांच से पता चला है कि मधु की हत्या उनके निलंबित दारोगा पति चंदन कुमार ने की थी। उन्होंने बताया कि मामले में जल्द ही आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के तीनगछिया मोहल्ले से पुलिस ने अपहरण और रंगदारी के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। अररिया नगर थाना क्षेत्र स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क के पास से पुलिस ने 155 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पार्क के केयरटेकर की गिरफ्तारी हुई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, चौथे चरण में शिक्षक भर्ती की अधियाचना इसी माह, विधानसभा में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षा मंत्री ने घोषणा की। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, गांव में गरीबों से कोई टैक्स नहीं लेगी सरकार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पांचवी और अंतिम सक्षमता परीक्षा में 70% शिक्षक फेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, नीट पर पहली बार बोले पीएम मोदी, सरकार छात्रों के साथ। आज अखबार ने लिखा है, नीट आंदोलन प्रधानमंत्री आवास पहुंचा, राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव समेत कई नेता हिरासत में, देर शाम हुए रिहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत बिहार के 26 जिलों में 38 ICU का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, जिन विद्यालयों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें 6 महीने के भीतर जमीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। भागलपुर की एक अदालत ने काजवलीचक विस्फोट मामले में 2 दोषियों को 10-10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। और मौसम विभाग ने आज बांका, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
1: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
2: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
1: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
3: यार वोट देना तो है लेकिन मतदान केंद्र कहाँ है?
4: मेरा नाम मतदाता सूची में है या नहीं कैसे पता चलेगा?
5: और मुझे मतदान से जुड़ी जानकारी चाहिए।
4: बस एक नंबर याद रखिए, 1950।
3: 1950?
4: जी हाँ, मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया, चुनाव संबंधी जानकारी या सहायता, हर सवाल का जवाब एक नंबर पर।
6: मतलब जानकारी भी मार्गदर्शन भी?
4: बिल्कुल, 182 बाकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल करें।
5: अब तो मतदान और भी आसान हो गया।
4: 30 जुलाई 2026 को अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। कोई मतदाता ना छूटे।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।

0: party at 90.
1: अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। सुबह के 9:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुनेंगे और हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 10 के बाद तुरंत हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में कार्यक्रम पुनर्नवा के साथ सुबह के 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी सुन पाएंगे सुबह 10:30 पर और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार सुनेंगे सुबह 10:45 पर। पूर्वाहन के 11 बजे विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग और पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम बंधन के साथ। महिला सखियों का कार्यक्रम घर आंगन का समय होगा शाम 5:30 पर।

भोजपुरी लोकगीत हम सुन पाएंगे शाम 6 बजे से, और भोजपुरी समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 6:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे शाम 6:10 पर, और भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत सुनेंगे शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस का समय होगा शाम 7 बजे, और गुड इवनिंग रोहतास शाम 7:15 पर।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल का समय होगा शाम 7:25 पर और शाम 7:50 पर सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से ही विधानमंडल समीक्षा। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 8:00 से। फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद का समय होगा शाम 8:15 पर। इस कार्यक्रम को हर बुधवार और शनिवार आप सुन सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है, फोन नंबर है 06184221130। इस नंबर पे आप भी फोन कर अपने मनपसंद कार्यक्रम हेलो मनपसंद को सुन सकते हैं, अपने मनपसंद के गाने। श्रोताओं, समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे शाम 8:45 पर और रात्रि 9:00 सुनेंगे शास्त्रीय गायन सुर सौरभ। आज हम सुनेंगे कार्यक्रम सुर सौरभ में सितार वादन पंडित निखिल बनर्जी, राग राग श्री तबला संगत करामतुल्लाह खान का। विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार का समय होगा रात्रि 9:30 पर और संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही का रिकॉर्डिंग के प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 10:00 से। हम इसे समापन तक रिले करेंगे। समय रहते सुनेंगे रात्रि 10:15 पर हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग और हिंदी फिल्म संगीत कार्यक्रम चित्रपट तराने सुन पाएंगे रात्रि 10:30 पर। अगले दिन के कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान लगाएंगे रात्रि 10:15 पर और रोजाना की तरह रात्रि 11:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं, सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम के आरंभ में अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में अफसाना प्यार का फिल्म से एक गीत सुनते हैं। समीर के बोल है, बप्पी लहरी का संगीत है, फिल्म है अफसाना प्यार का।

कार्यक्रम की अगली पेशकश अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को अनु मलिक ने अपने संगीत से संवारा है। फिल्म है अकेले हम अकेले तुम।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक को, फिल्म आंदोलन में समीर के बोल थे, नदीम श्रवण का संगीत था। कार्यक्रम की अगली और आखिरी पेशकश साधना सरगम की आवाज़ में, फिल्म बेदर्दी सनम से ज्योली मुखर्जी के संगीत है।

इसी गीत के साथ दीजिए इजाजत। कार्यक्रम गीत मालिका से विनोद को नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से

0: हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

सपने। मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और मां थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

0: का।
1: मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन

रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आदाब अर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में

0: संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये,
1: छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला।

और इसके बाद राज कपूर, शंकर जय किशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के कम फैन नहीं थे।

0: चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।
1: जिंदा

0: नहीं।
1: अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978 मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नयन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाज

लेकिन ऐसा नहीं है कि दिलीप कुमार या मनोज कुमार के लिए ही मुकेश ने प्लेबैक किया हो। याद कीजिए काका राजेश खन्ना को फिल्म मर्यादा में।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुन

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976, डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत

एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सबकी आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा चैन।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिया में भारतीय उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि उथल पुथल और व्यवधानों के इस दौर में सबसे अधिक असर आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ा है। फिलीपींस के मनीला में आज आसियान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में श्री जयशंकर ने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को और अधिक समय तक हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत और आसियान देश अपने भविष्य के प्रति आशावादी हैं और इसीलिए चुनौतियों का सामना करते हुए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष है। विदेश मंत्री आसियान भारत पूर्वी एशिया सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय फोरम की बैठक सहित आसियान फ्रेमवर्क के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक के लिए दो दिन की यात्रा पर फिलीपींस के मनीला में है। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। तीन दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
1: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव सहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदारवेदी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने आतंकवादियों को शह और सहायता देने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी छत्रु इलाके में सक्रिय विदेशी आतंकवादियों की मदद कर रहा था। इसकी पहचान सिंहपुर के डवाथर निवासी मोहम्मद रफीक नाइक के तौर पर हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने में एक आदर्श और उत्कृष्ट नागरिक के गुणों को रेखांकित किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उदाहरण साझा करते हुए श्री

0: ने ये बात कही। आज राष्ट्रीय आम दिवस है। ये दिन फलों के राजा आम और भारत की समृद्ध आम परंपरा के सम्मान में मनाया जाता है। गोवा का प्रसिद्ध मनकुराद आम अपनी खास खुशबू, मिठास और अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर संभाग और जम्मू के ठंडे इलाकों के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने बताया कि अब स्कूल 27 जुलाई को खुलेंगे। मौसम विभाग ने 23 जुलाई तक तेज वर्षा और अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश हो सकती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 371 अंक गिरकर 77,097, जबकि निफ्टी 106 अंक फिसलकर 24,081 पर पहुंच गया। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। एचएस प्रणॉय कल प्रतियोगिता के शुरुआती राउंड में मलेशिया के खिलाड़ी से हारकर बाहर हो गए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, समाचार से पहले आपने सुना विविध भारती के कार्यक्रम आज के फनकार। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम पुनर्नवा। इस कार्यक्रम से पहले सुनते हैं एक संदेश।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: कार्यक्रम पुनर्नवा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आप सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रोताओं, पुनर्नवा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपकी रेडियो साथी विनीता सिंह। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लोकप्रिय कार्यक्रम पुनर्नवा में हमेशा किसी न किसी बुजुर्ग वरिष्ठ मेहमान से आपको मिलवाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे बुजुर्ग शख्सियत से जिनके जीवन का अनुभव, मार्गदर्शन, जानकारियों को हम आप तक साझा करेंगे उन्हीं के जुबानी। तो आइए श्रोताओं, अब हम बातचीत करते हैं आज के हमारे वरिष्ठ मेहमान श्रीमान त्रिपुरारी सरण सिंह जी से, जो एरिया मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं, अवकाश प्राप्त हैं। सर, सबसे पहले आपको कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से, हमारी तरफ से और समस्त आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए हमारी श्रोताओं को।
1: मेरा नाम त्रिपुरारी शरण सिंह, ग्राम मोर सराय, प्रखंड शिव सागर, जिला रोहतास का निवासी हूँ और मैं सीमेंट फैक्ट्री के एरिया मैनेजर के पद

0: सेवा निवृत्त हो कर अब घर पर बैठा हूँ।
1: जी सर, सर आपका बचपन कैसा रहा? पढ़ाई लिखाई, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई?
0: मेरा बचपन अपने माता पिता जी के संरक्षण में बीता और मैं गांव के ही स्कूल में, पहले हम लोगों के एक गुरु जी हुआ करते थे जिनके यहाँ हम लोग बचपन से तीसरा क्लास तक उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया। इसके बाद वो स्कूल ट्रांसफर हो गया, चला गया गांव में ही, केंद्रीय बुनियादी विद्यालय मोरसराय में, और वहां से मैंने 5 तक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मैं टाउन हाई स्कूल सासाराम में चला गया।
1: आप अपने गांव के विद्यालय मोरसराय में आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ली?
0: जी, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हमारी होगी।
1: फिर उसके बाद सर आगे की पढ़ाई आपने कहाँ से की?
0: आगे की पढ़ाई हमने सासाराम टाउन हाई स्कूल से, जो कि इस जिले का काफी पुराना और नामजद विद्यालय है, आजकल उसका नाम शेर शाह सूरी इंटर स्तरीय विद्यालय हो गया है, उसमें मैंने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा ली।
1: जी सर, तो सर इसके बाद आपने कहाँ तक पढ़ाई की, आपकी उच्च शिक्षा कहाँ तक हुई, इसके बारे में बताइए।
0: मैंने फिर SP जैन कॉलेज से BSc तक स्नातक विज्ञान में शिक्षा ली। इसके बाद श्री शंकर उच्च विद्यालय में BEd की पढ़ाई हो रही थी, वहाँ से मैंने BEd भी किया।
1: जी सर, यानी कि आपने BSc SP जैन कॉलेज से किया और उसके बाद आपने BEd किया। तो सर क्या आपकी एक शिक्षक बनने की तमन्ना थी या आप एरिया मैनेजर कैसे बन गए, आपकी चाह क्या थी?
0: उस समय तो चूंकि मेरे पिताजी की मृत्यु ऐसे समय में हो गई जबकि मैं उसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, और अचानक परिवार के जिम्मेवारियां आ गई।
1: यानी कि आपके पिताजी की मृत्यु असमय हो गई थी?
0: हाँ, हमारे पिताजी की मृत्यु असमय हो गई, इसलिए मैं नौकरी के बारे में सोच नहीं सकता था। 2 छोटे भाई थे, उन लोगों के भविष्य के बारे में मैंने सोचना शुरू कर दिया कि उन लोगों की शिक्षा दीक्षा बढ़िया से हो जाए।
1: यानी कि आपके पिताजी की असमय मृत्यु हो गई और आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, 2 छोटे भाइयों की, माँ की, और उनके परवरिश, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए आपने जॉब के बारे में सोचना छोड़ दिया। फिर सर आप एरिया मैनेजर कैसे बने?
0: इसके बाद जब हम देखे कि उन लोग भी धीरे धीरे अपना पढ़ाई लिखाई कर लिए, तो मेरे एक परिचित ससुराल में थे जिन लोगों की सीमेंट की एजेंसी थी, उन्हीं लोगों के माध्यम से मैं उस सीमेंट फैक्ट्री में संपर्क किया और मुझे वहाँ जॉब मिल गई और मैं सीमेंट का काम देखने लगा।
1: यानी आपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए आपने अपने जीवन निर्वाह के लिए सीमेंट फैक्ट्री में एरिया मैनेजर के पद पे आप नियुक्त हो गए। सर बचपन में आपका खेलने कूदने में कैसा रुझान था, आप खेल कूद में कैसे थे, मस्ती वगैरह करते थे?
0: हम लोगों के टाइम में तो खेल में एक ही खेल था जो कि फुटबॉल का, और फुटबॉल हम लोग खेलते थे। फुटबॉल में भी मैं बहुत अच्छा प्लेयर था, मैं सेंटर हाफ बैक से खेलता था। हम लोगों ने कई एक ठो फुटबॉल मैच जीता और उसमें सिल्वर वगैरह भी हासिल किया। फुटबॉल का मैं कुछ दिन कैप्टन भी रहा।
1: अच्छा, यानी कि आपके समय में फुटबॉल का क्रेज था और आपको फुटबॉल खेलने का ही शौक था, आपने फुटबॉल में काफी अच्छा खेला।
0: हाँ, उस समय और कोई खेल, क्रिकेट वगैरह तो कोई था नहीं, और उसके पहले बचपन में जब हम लोग मिडिल और प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा करते थे, उस समय गांव में बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ गिल्ली डंडा वगैरह भी हम लोग खेले हैं।
1: जी, ये हर बच्चा अपने बचपन में खेलता है अपने साथियों के साथ। सर इसके अलावा आप जब बड़े हुए और कॉलेज में गए तो बचपन के खेल तो पीछे छूट जाते हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए और क्या क्या करते थे? रेडियो वगैरह सुनते थे?
0: हाँ, रेडियो वगैरह सुनते थे, और वैसे हम लोग स्कूल के टाइम से ही NCC में भी थे, स्कूल में भी थे, कॉलेज में उस समय NCC अनिवार्य था, तो NCC में भी मैं ट्रूप सर्जेंट हुआ करता था।
1: अच्छा, आप NCC में ट्रूप सर्जेंट हुआ करते थे, यानी कि आपका फिटनेस बहुत अच्छा था उस समय।

0: सर, और भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ कॉलेज में और भी कई कल्चरल प्रोग्राम होते, उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे आप?
1: उसमें तो पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि उधर से निकल के आते थे तो घर की चिंता लगी रहती थी और घर आ जाते थे। कॉलेज और स्कूल छोड़ने के बाद सीधे साइकिल से, उस समय की सवारी भी साइकिल थी।
0: तो उस समय तो सर साइकिल रखना भी बहुत बड़ी बात होती होगी आपके समय में।
1: हाँ, साइकिल बहुत कम लोगों के पास साइकिल होती थी।
0: कितना अच्छा था हेल्थ के लिए और पर्यावरण के लिए साइकिल चलाना, जब आप लोग साइकिल चलाते थे। सर, इंटरटेनमेंट के लिए और क्या क्या करते थे? फिल्में वगैरह देखते थे?
1: हाँ, कभी कभी फिल्म वगैरह देख लेते थे।
0: कौन कौन से कलाकार आपको पसंद थे सर?
1: हम लोगों के टाइम में राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, यही सब कलाकार थे। ये लोग टॉप के कलाकार, एक राजकुमार भी थे।
0: ये कलाकार आपको पसंद थे, और फीमेल कलाकार में आपको कौन कौन पसंद थी? हीरोइने कौन कौन पसंद थी?
1: वैसे उस समय के हीरोइने तो थी आशा पारेख वगैरह, हाँ, वहीदा रहमान भी एक थी, और नरगिस भी एक थी, हाँ, मीना कुमार, जिसको ट्रेजिडी क्वीन भी कहा जाता था।
0: आपको ट्रेजिडी क्वीन मीना कुमारी बहुत पसंद थी क्या सर?
1: हाँ, उनका रोल हमको फिल्मों में अच्छा लगता। राजेंद्र कुमार जी का भी अगर कोई गाना हो तो एक गाना उनका हमको याद पड़ रहा है कि किसी फिल्म में वो काम किए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसमें कोई गाना गाया जा रहा था कि अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, बची है दुहाई।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सर के पसंद का ये गाना।

0: सर, आपकी शादी कब हुई? पढ़ाई करने के दौरान या पढ़ाई के बाद या जॉब लगने के बाद?
1: मेरी शादी मेरे पिताजी ने 1965 में कर दिया। उस समय मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, उसी दौरान शादी कर दिए।
0: उस समय सर यही प्रचलन था, यही रीति रिवाज थी कि बहुत ज्यादा बड़े होने पे नहीं शादियां होती थी, इसी उम्र में ही हो जाती थी।
1: हाँ, कम उम्र में ही। तो उस समय भी हम लोगों का उम्र करीब करीब 18 साल से तो ऊपर हो ही गया।
0: अभी जो है आप घर में रहते हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए, फिटनेस के लिए क्या करते हैं?
1: थोड़ा बहुत 1 घंटा के करीब योगा वगैरह सुबह में कर लेते हैं। 2 गाय रखे हुए हैं, उन लोगों पर विशेष ध्यान है कि गौ सेवा भी हो जाए, क्योंकि भगवान कृष्ण जिंदगी भर गौ सेवा ही करते रह गए, तो उन्हीं को देख के हम भी सोचे कि हमारा भी अंतिम समय गौ सेवा में ही बीते।
0: बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि गौ सेवा करना तो बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में गौ सेवा करना पुण्य का काम माना जाता है। तो आप गौ सेवा करते हैं, गाय वगैरह अपने घर में रखे हैं, और दूध दही भी उनका खाते होंगे, शुद्ध दूध दही?
1: हाँ, 1 गिलास दूध शाम को लेते हैं। स्वास्थ्य को देखते हुए अब बहुत ज्यादा लिया भी नहीं जा सकता है, 250 से 300 ग्राम दूध शाम को, अब ऐसे दही वही दिन में उसका मिल जाता है, घी मिल जाता है गाय का।
0: और सर आपका खान पान कैसा है, जीवन शैली आप कैसा रखते हैं, सुबह से लेके रात में सोने तक आपकी क्या जीवन शैली रहती है?
1: जीवन शैली एकदम सादा जीवन, उच्च विचार यही रखे हुए हैं कि जितना सादा में निभ जाए।
0: बहुत अच्छी बात कही, हमारी संस्कृति में सादा जीवन उच्च विचार की धारणा ही है, और हमारे कल्चर में कहा ही जा

0: आता है कि सादा जीवन उच्च विचार। सर क्या उम्र है आपकी और इस उम्र में आप जो है इतने फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी क्या उम्र है इस समय?
1: उम्र तो हमारा 79 हो गया है।
0: 79 ईयर्स के हो चुके हैं और इस उम्र में आप इतने अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, योगा करते हैं, सादा खाना खाते हैं, अपनी जीवन शैली इतना सुंदर रखे हुए हैं, इसीलिए आप इस उम्र में इतना फिट दिख रहे हैं और एक्टिव दिख रहे हैं। सर और एक्टिव रहने के लिए क्या क्या करते हैं? आप सोशल वर्क भी करते हैं अपने गांव घर परिवार में?
1: पहले तो बहुत सोशल वर्क किए, लेकिन अब बहुत कहीं जाओ के करना अब संभव नहीं है, इसलिए दरवाजे पर बैठे बैठे अगर कोई आ गया कुछ सलाह ले दे तो उसको जो भी हमारे समझ से उचित सलाह हो वो दे देते हैं और उसको समझाते भी हैं कि बाबू अच्छे से रहो, अच्छे से रहना, मिलजुल के रहना और परिवार में मेल जोल रखना, गांव घर में मेल जोल रखना, यही सबसे अच्छा चीज।
0: बहुत सुंदर बात कही आपने। और आप जब एक्टिव थे तो आप सोशल वर्क करते थे, सबके मसले सुलझाते थे, लेकिन अभी आप उतने उम्र के हिसाब से उतने एक्टिव नहीं हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, तो आप के पास कोई आता है तो आप उसे अपने अनुभव बताते हैं, उसे उचित सलाह देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सोशल वर्क है। सर वृद्धा आश्रम के बारे में आपका क्या कहना है? आज के दौर में गांव में तो अभी नहीं, ग्रामीण एरिया में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, या आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या कहीं से कुछ समाचार सुनते हैं कि वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सही है या गलत है? आप अपनी राय बताइए।
1: या तो बहुत गलत चीज है कि जो माँ बाप जिंदगी भर पाल पोस के बच्चों को बड़ा करता है अब उसको बच्चे ले जाके छोड़ आए वृद्धाश्रम में, ये हमको जरा भी पसंद नहीं। और जो तुम्हारे पास साधन है उसी में माता पिता को भी तुम साथ रखो और जो भी रूखा सूखा तुम खाते हो वही खिला के माता पिता उसी से स्वस्थ रहें और खुश रहेंगे। और एक चीज और भी मैं कहूँगा कि माता पिता को भी बच्चों के साथ मिल के अपना कोई ईगो नहीं रखना, बच्चों के साथ मिल के बच्चे जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में अपने को ढाल के चलें, तो माता पिता के लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए।
0: बहुत बड़ी बात कही सर आपने कि सामंजस्य बना के, माता पिता हों या बच्चे हों, जब आपस में सामंजस्य बना के रखेंगे तो माता पिता के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों के लिए अच्छा होगा, वृद्धा आश्रम में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी राय आपने दी। सर आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे साथ इतनी सारी अपने जीवन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको हमारी तरफ से, हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से और समस्त आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: श्रोताओं। कार्यक्रम पुनर्नवा में अभी हम बात कर रहे थे श्रीमान त्रिपुरारी शरण सिंह जी से, जो मोरसराय गांव के निवासी हैं और एरिया मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। श्रोताओं पुनर्नवा कार्यक्रम का आज का अंक यही समाप्त होता है। किसी वरिष्ठ मेहमान से हम आपको अगले अंक में फिर मिलवाएंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो साथी विनीता सिंह को दीजिए अनुमति। साथियों नमस्कार। स्वर एवं संकलन विनीता सिंह, प्रस्तुत करता संतोष कुमार।

अभी आपने सुना भरत शर्मा व्यास को आधी आधी रतिया एल्बम से, महेंद्र मिश्रा ने इसे लिखा था, भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया था। कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मुन्ना सिंह की आवाज़ में खूबसूरत सा भोजपुरी लोकगीत। पारंपरिक गीत को बीएन सिंह ने संगीत दिया है। एल्बम है करी हम कौन बहाना।

श्रोताओं, मुन्ना सिंह के गाए इसी गीत के साथ ही भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। अब हम सुनते हैं भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। आरंभ में सुनते हैं पल्लवी जोशी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत, पालम छोड़ी ना कलैया एल्बम से।

कार्यक्रम वसुधार की अगली पेशकश बिक्की बउआ और खुशी कक्कड़ की आवाज़ में, एल्बम है आशिक मरेला रो रो के।

कार्यक्रम रसधार के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना, धनंजय धड़कन और शिल्पी राज की आवाज़ में। ब्रजेश बिहारी ने इस गीत को लिखा है, उज्ज्वल कुमार का संगीत है और एल्बम है सुना ये समरिया।

धनंजय धड़कन और शिल्पी राज के गाए इसी भोजपुरी एल्बम सॉन्ग के साथ ही कार्यक्रम रसधार अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण सुनेंगे विविध भारती से थोड़ी देर में।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहला जो गीत है सुनिधि सी, इस एल्बम का गाना सुनिधि चौहान की आवाज में, गीत और संगीत ललित का।

हेमा सरदेसाई की आवाज में ये गीत आपको सुनवाते हैं, समीर के बोल, जवाहर वत्तल का संगीत और एल्बम का नाम सजना।

मिताली सिंह की आवाज में ये गजल आइए सुनते हैं। शब्दकार इब्राहिम अश्क, संगीत भूपिंदर सिंह का, और एल्बम कुछ इंतजार है।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: ये है हरिहरन की आवाज, शब्दकार ताहिर फराज, संगीत हरिहरन का एल्बम जश्न।

दलेर मेहंदी की आवाज में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। दलेर मेहंदी का ये संगीत है और गीत है दलेर मेहंदी और संजीव आनंद का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब मधुश्री की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना, राजेश रोशन का संगीत एल्बम मोक्ष।

अगली जो आवाजें हैं जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल निदा फाजली के, जगजीत सिंह का संगीत और एल्बम किसका चेहरा।

रंग तरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं पामेला जैन की आवाज में मनोज दर्पण का लिखा हुआ ये गाना, बबली का संगीत, एल्बम मेरा घूंघटा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में एनएचपीसी की तीस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में हुई दुखद दुर्घटना में जान मान की हानि पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक हरित ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस मालवान को बेड़े में शामिल किया। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भागीदारी की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने हिंद प्रशांत भू राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत आसियान को केंद्र में रखते हुए स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति वचनबद्ध है। इस बैठक से अलग डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत कल चंडीगढ़ में पारंपरिक पूरक और एकीकृत चिकित्सा पर ब्रिक्स सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की। ये सम्मेलन चंडीगढ़ में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम के 4 दिवसीय व्यापक कार्यक्रम

0: का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे लता मंगेशकर और मुकेश के गाए कुछ दो गाने। वीर दुर्गादास फिल्म का गाना सबसे पहले आपको सुनवाते हैं भरत व्यास के बोल एस एन त्रिपाठी का संगीत।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

0: रख कर वो जा रहे हैं, देखो दो प्यार करने वाले दुनिया वालों से दूर चलने वाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने आप सुनेंगे एक ब्रेक के बाद।

हम हाजिर हैं यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। तीसरा कौन इस फिल्म का गाना बोल है आनंद बख्शी के, संगीतकार राहुल देव बर्मन। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ये लता मंगेशकर और मुकेश के गाए युगल गीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: लीजिए अब सुनिए शोर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में, संतोष आनंद का लिखा हुआ गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

बात लिखी कि बचपन में माता पिता, बाद में वाइफ, और सूरत में जब 2006 में पूर आया था, यानी कि बाढ़ जब आई थी, तब मेरे अंकल यानी कि मेरे जो काका हैं उन्होंने मुझे कहा था मैं हूं ना। एक साथी की ये बात है कि आज जो इबारत है इंसान के भीतर छिपे उस असीम धैर्य और जज्बे को सलाम करती है जो सबसे गहरे अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाए रखता है। ये रूहानी और जादुई आवाज सदी के महान गायक मुकेश जी की है, जिनके गाए गीत जाऊं कहां बताए दिल की गूंज, इस इबारत के हर लफ्ज को महसूस होती है। जब रिश्तों के धागे टूट जाते हैं और अपने ही पराए होने लगते हैं, तब मुकेश जी की आवाज किसी ठंडी छांव की तरह हमारा हाथ थाम लेती है। उनकी गायकी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि केवल सुर नहीं लगाते थे, बल्कि इंसान के एकाकीपन और इसके उसके भीतर चल रहे संघर्ष को अपनी आवाज में जी लेते थे। उनका वो सादगी भरा, दर्द से भीगा अंदाज भरोसा दिलाता है कि बिखर जाना अंत नहीं है, ठोकरे खाकर फिर से खड़े होना जिंदगी का असली नाम है। बहुत अच्छी बात है आपकी, धन्यवाद आपका। और हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, देखिए कठिन समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती है, लेकिन अपने आप को संभाले रखना बहुत मुश्किल कार्य होता है। आप अपने आप को किस तरह से संभालते हैं? क्या कहते हैं आप अपने दिल को, अपने मन को किस तरह समझाते हैं? और ये भी हमने आपसे पूछा है कि कौन सी आवाजें हैं, कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने आपसे कहा है कि हाँ मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हमारे सवाल हैं, दो सवाल हैं, बताइए इसके बारे में। चलिए अगला गाना संगम फिल्म से है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इसमें तीन कलाकार हमें दिखाई देते हैं। तो राज कपूर तो हैं ही, उनके अलावा दो और कलाकार हैं, वो कौन कलाकार हैं ये आप हमें बताइए।

राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी लिख रहे हमारे कि जब मैंने कक्षा 10वीं परीक्षा दी थी, लास्ट पेपर के दिन पापा का देहांत हो गया था। मेरे पापा निरंतर विविध भारती सुना करते थे और ऑल इंडिया रेडियो भी सुना करते थे। आज लगभग 30 वर्ष हो गए मैं भी निरंतर रूप से विविध भारती सुनता हूँ और जब कभी परेशानी में होता हूँ तब विविध भारती में एक हिम्मत दिलाने वाला गाना बज जाता है और कहीं से ये सुनाई देता है कि चिंता मत करो मैं हूं ना। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे पास मुकेश जी के गाए गीतों की किताब हुआ करती थी जिसमें से हमने सारे गीत याद कर लिए थे, तो उनके तो सारे गीत ही हमारे फेवरेट हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि चांदी की दीवार ने तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, पैसे का महत्व धन की महिमा बखान करता है, गीत बता रहा है कि प्रेम में भी पैसे ने सेंध मारी की है, पैसे के खातिर लोग कैसे दिल तोड़ देते हैं और अलग दुनिया बसा लेते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी के गाने की बात है तो दिल की गहराइयों में समा जाता है वो जो गीत है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि मुकेश जी का व्यक्तित्व उनके गायन की तरह ही अत्यंत सरल, विनम्र और सहज था। वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे, उनके उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे सहकर्मियों, संगीतकारों और अपने प्रशंसकों के प्रति आत्मीय व्यवहार रखते थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही उनके व्यक्तित्व को और अधिक महान बनाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देवर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। आनंद बख्शी के बोल हैं, धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये गाना है। संगीत किसका ही आपको बताना है।

देवर फिल्म का ये गाना, इस गाने को संगीतबद्ध किया रोशन ने। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि जब हमारे साथी हमें छोड़कर चले गए, हमारी तो मानो दुनिया ही खत्म हो गई। तब सहारा दिया हमारे कई अपनों ने, जिसमें सबसे ऊपर नाम हमारे पापा का है, उसके बाद बच्चे और कुछ प्यारे से दोस्त। सबसे ज़्यादा सहारा मिला विविध भारती का, जिसके साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय बीता और गीत जो शुरू से शामिल थे हमारी जिंदगी में। एक हमारे जो साथी हैं वो ये बात लिख रहे हैं कि मुकेश की आवाज़ का जादू बयां करते हुए कुछ प्रशंसक पंक्तियां लिख रहा हूं। दर्द में डूबी वो आवाज़ जो रूह को छू जाए, मुकेश के गीतों में सारा जहां समा जाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए कि धुन हर दिल को सुकून और गहराई दे जाए। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दिल ने पुकारा इस फिल्म का गाना, इंदेवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मैं कभी मुकेश जी के गाने पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब गाने सुने तो पता चला कि इन लोगों को या इन गानों को लेजेंड क्यों कहते हैं। इन लोगों के गाए गाने सीधे दिल की गहराई में उतरते हैं। और एक गाना जो हमने देवर फिल्म का सुनवाया था, बहारों ने मेरा चमन लूट के, तो एक साथी हमारी ये लिख रहे हैं कि वाह क्या बोल है, किसी ने चलो दुश्मनी की मगर इसे दोस्ती का नाम क्यों दे दिया, अप्रतिम गाना है। और इसी गाने के बारे में हमारे साथी ने ये भी लिखा है कि देवर फिल्म की ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, ये इंसानी रिश्तों की मजबूरी, किस्मत के क्रूर खेल और निस्वार्थ प्रेम के बदले मिले धोखे को दर्शाता है। ये गाना सिखाता है कि जब इंसान के पास अपनी बेबसी जाहिर करने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो संगीत का सहारा लेता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुकेश जी 1972 में हमारे शहर कटक में आए थे, बाराबाती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, नितिन मुकेश छोटे थे वो भी आए थे, और गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं ये गाना उन्होंने गाया था, और ये बातें इन्हें याद आ रही है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज यानी सादगी, सच्चाई और दर्द का ऐसा संगम जो सीधे रूह को छू जाए। उन्हें विरह के गीतों का बेताज बादशाह यूं ही नहीं कहा जाता, बिना किसी शास्त्रीय तामझाम के भी उनकी गायकी सीधे दिल में उतर जाती है। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं छोटी बहन फिल्म का गाना। मुकेश की आवाज है, हसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कौन से कलाकार पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म,
2: शेखर, मेरे पास वक्त नहीं है तुम बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

रहमान पर फिल्माया गया ये गाना है। एक हमारे साथी की बात है कि मुकेश की गायकी कोई दिखावा या बनावटीपन नहीं था, उनके हर गीत में शब्दों का उच्चारण इतना साफ और संजीदा होता था कि हर शेर एक कविता की तरह कानों में रस घोलता था। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि इन गीतों को सुनते सुनते बड़े हुए हैं, एकदम अंदर तक धंसे हुए हैं दिल में ये सारे गाने। हम लोग के घर में लॉन्ग प्लेयर था रिकॉर्ड, मुकेश जी का हर तरह के गाने का कलेक्शन हुआ था होता था। बहुत अच्छे लगते हैं उनके ये गाने। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि राज कपूर के रूप में मुकेश को सिनेमा का बेहतरीन साथी मिला। आवारा हूँ या मेरा जूता है जापानी जैसे गीतों में उन्होंने आम आदमी, उसके संघर्ष और उसकी जिंदा दिली को अपनी गायकी से एक मुकम्मल अंदाज में बयां दिया। राज कपूर ने शायद इसीलिए कहा था कि मैंने अपनी आवाज खो दी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हरियाली और रास्ता इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किसने लिखा है ये गाना, ये आप हमें बताइए।

हरियाली और रास्ता फिल्म का ये गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ है। आपने सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि जिंदगी की राह में कभी ठोकरें मिलती है, कभी बहारें, कभी दोस्त साथ छोड़ जाते हैं, तो कभी वक्त वफा करना भूल जाता है। ऐसे में कुछ आवाज़ें सिर्फ कानों तक नहीं रूह तक पहुँचती है, वे हमारे दर्द को शब्द देती है, हमारी यादों को सहलाती है और अंधेरे में उम्मीद का दिया जलाती है। ऐसी ही ये आवाज़ें। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर जी एक ऐसी आवाज़ का नाम है जो सीधे दिल में उतर जाती है। द वॉइस ऑफ द मिलेनियम और द मैन विद द गोल्डन वॉइस कहे जाने वाले मुकेश जी की आवाज़ में जो दर्द, सादगी और एक अनूठी कसक थी, मुकेश जी की गायकी की सबसे बड़ी खासियत उनकी आवाज़ का ठहराव और उर्दू की बेहतरीन अदायगी थी। मुकेश जी अपने गीतों में जीवन के दर्शन, प्यार की तड़प और आशावादी दृष्टिकोण को बहुत खूबसूरती से उन्होंने पिरोया था। चलिए संजोग फिल्म का गाना, संगीत किसका है यह आपको बताना है। दो कलाकार हैं, प्रदीप कुमार और शुभा खोटे, उन पर फिल्माया गया ये गाना है।

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि मुकेश जी की आवाज़ की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वो केवल एक गीत नहीं गाते थे बल्कि सुनने वाले के दिल का बोझ हल्का कर देते थे। जब वे गाते हैं चांदनी आई घर जलाने तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ें भी उस वक्त इंसान को तकलीफ दे रही है। ये आवाज़ हर अकेले और उदास इंसान को ये तसल्ली देती है कि इस दर्द में वो अकेला नहीं है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों को ख्यालों में, वो मुझको आपको मिल ना सके सुबह के उजालों में। कुछ आवाज़ ऐसी रूहानी होती है ढूंढने से नहीं मिलती, गानों के माध्यम से कानों से होकर सीधे हमारे दिल में उतर जाती है वो आवाज़ मुकेश की। एक साथी हमारी लिख रही कि क्या आवाज़ थी वो, जब गम के साए घेरते तो चुपके से कहीं दूर रेडियो से झड़ती वो आवाज़ हमें अपने आगोश में ले लेती और हम कुछ देर के लिए गम भूल जाते और सब जब सुख के फूल बिखरते हैं तो ये आवाज़ हमें अपने साथ झूला झुलाती। न जाने कितनी उपमाओं से सजी थी मुकेश जी की आवाज़, जितना लिखूं कम है। आकाश में जितने तारे हैं, नदी में जितना पानी है, वैसे ही गायकी की दुनिया में मुकेश की उपस्थिति दर्ज है। सदियां बीत जाएंगी मगर मुकेश जी की आवाज़ का जादू कम न होगा। चलिए अनीता फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात है कि आज की इबारत मानव जीवन के सबसे गहरे दर्शन, संघर्ष और संगीत के रूहानी असर का एक अत्यंत भावुक और जीवंत चित्रण है। ये सच है कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हर ठोकर के बाद संभलना ही जीवन है। जब इंसान तन्हाई, छल और वक्त की बेवफाई से टूट जाता है, तब शब्द और तर्क काम करना बंद कर देते हैं। उस वक्त केवल संगीत और एक रूहानी आवाज ही दिल को तसल्ली दे पाती है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बंदिनी फिल्म का गाना, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, नूतन पर फिल्माया गया, संगीत किसका है आपको बताना है।

दिल को सीधे लगती है मुकेश जी की आवाज, बिल्कुल सीधी सादी सादगी सच्चाई भरी आवाज। कौन भला न होगा जो मुकेश जी की आवाज पर मोहित ना हो। एक साथी लिख रहे हैं कि हर इंसान की असली पहचान उसके जीवन की कठिन परिस्थितियों और चुनौती भरे समय उसके जीवन का हिस्सा होती है, कोई भी इससे अछूता नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियों में भी असली पहचान व्यक्ति के धैर्य और संयम से होती है। इसमें सफलता मिले या असफलता उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें इन्होंने लिखी है। समय कम है, चलिए एक गाना आपको सुनवाते हैं। बंबई का बाबू इस फिल्म का ये गाना है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार कौन है यह आपको बताना है।

अब हमें भी चलना होगा, समय जो है हमें अब इजाजत नहीं दे रहा है कि कुछ और बातें की जाए या और गाने सुनवाए जाए। ये जो गाना आपने सुना, इस फिल्म के मुख्य कलाकार देव आनंद और सुचित्रा सेन हैं, और आपने बहुत प्यारी बातें फेसबुक पर लिख करके भेजी, इसके लिए धन्यवाद। और अब मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का कई बार आग्रह किया। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने के कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि सदन में कोई भी चर्चा स्थापित नियमों के अंतर्गत होनी चाहिए और इसके लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। श्री रिजिजू ने जोर दिया कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को शामिल करते हुए

0: कोई भी चर्चा स्थापित नियमों के अंतर्गत होनी चाहिए और इसके लिए उचित व्यवस्था आवश्यक है। श्री रिजिजू ने जोर दिया कि सरकार देश के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों को शामिल करते हुए सार्थक और रचनात्मक चर्चा चाहती है। राज्यसभा की कार्यवाही भी लगातार हंगामे के कारण बाधित हुई है। विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल भोजन अवकाश के बाद की कार्यवाही शुरू हुई है। विपक्ष ने विधानसभा में आज कम बारिश से किसानों को हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सदस्यों से इस मुद्दे को शून्यकाल के दौरान उठाने को कहा। इस पर सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देख मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत होने पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में आज बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए पंचायतें शुल्क वसूल सकेंगी। विधान परिषद में आज की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा टीका टिप्पणी को लेकर जोरदार बहस हुई। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। इस समय भोजन अवकाश की कार्यवाही जारी है। जानकारी के अनुसार विधानसभा में कल पारित विभिन्न विधेयकों पर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार गृह तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने पटना में गंगा के तीन घाटों भद्रघाट, नौजर घाट और महावीर घाट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज अररिया, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा जिले के पुरैनी में सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सारण जिले की स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या से जुड़े एक मामले में दोषी पति, देवर और सास को 7-7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने इन सभी पर 60,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गोपालगंज जिले के बलथरी चेकपोस्ट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस संबंध में एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। जहानाबाद के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुरक्षा गृह पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सुपौल के बरुआरी स्थित तेजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को साइबर अपराधों को लेकर जागरूक किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब। ये आकाशवाणी।

0: पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट इम्तहान पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलों पर हिजब मुखालिफ के हंगामों के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इससे कबल लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान के बेहतर तरीके से चलाने के लिए हिजब मुखालिफ से तआवुन करने की कई बार अपील की। इसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा जारी रहने के सबब कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। इधर पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत नीट इम्तहान के पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनाब रिजिजू ने कहा कि ऐवान में कोई भी बात तयशुदा जाब्ते के तहत होनी चाहिए और इसके लिए मुनासिब इंतजाम जरूरी है। जनाब रिजिजू ने जोर दिया कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए सभी फरीक को शामिल करते हुए मुसबत और कारामद बातें चाहती है। इधर राज्यसभा की कार्रवाई भी लगातार हंगामे के सबब मुतासिर हुई। कानून साजिया के मानसूनी इजलास का आज तीसरा दिन है। दोनों ऐवानों में कार्रवाई बेहतर तरीके से चल रही है। फिलहाल खाने के वक्फा के बाद की कार्रवाई शुरू हुई है। हिजब मुखालिफ ने कानून साज असम्बली में आज कम बारिश से किसानों को हो रही परेशानी का मामला उठाया। हिजब मुखालिफ के अराकीन इस मामले पर बात करने का मुतालबा कर रहे थे। असम्बली के स्पीकर प्रेम कुमार ने अराकीन से इस मामले को वक्फे सिफ्र के दौरान उठाने को कहा। इस पर लेकिन नारेबाजी करते हुए ऐवान के बीच आ गए। हंगामा बढ़ता देखकर वजीर आला सम्राट चौधरी ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों के मफाद को मद्देनजर रखते हुए फिक्रमंद है और आबपाशी के लिए 12 घंटे बिजली फराहम कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर किसानों को डीजल की सब्सिडी भी दी जाएगी। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि कानून साज असम्बली में आज बिहार पंचायत राज तरमीमी बिल 2026 पेश किया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायत हलका में आम मकामात पर लगाए जाने वाले इश्तहारात के लिए पंचायतें फीस वसूल कर सकेंगी। ऐवाने बाला कानून साज कौंसिल में आज की कार्रवाई के दौरान कानून साज असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी को लेकर बरसरे इकतदार जमात के इराकीन की नुक्ताचीनी और तंज पर शदीद बहस हुई। बाद में चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह की मदाखलत के बाद मामला पुरसकून हुआ। इस वक्त वक्फ एहतमाम की कार्रवाई जारी है। इत्तलात के मुताबिक कानून साज असम्बली में कल पास हुए मुख्तलिफ बिलों पर आज बहस की जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने पटना सिटी में वाक़े गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल की नई इमारत में मुख्तलिफ मुफ्त तिब्बी सहूलियात, ज़िला दवा के गोदाम और रियासत के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में नई तिब्बी खिदमात का इफ्तिताह किया। जनाब चौधरी ने पटना में गंगा के 3 घाटों भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान उन्होंने 46 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा जदीद सहूलियात का भी आगाज किया। रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून की सरगर्मी से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आज अररिया, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, पटना, बेगूसराय, खगड़िया समेत 10 अजला में शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा 3 से 4 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ खित्तों में ऐसा ही मौसम बना रहेगा। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मधेपुरा के पुरैनी में सबसे ज़्यादा 64.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सारण जिला की मकामी अदालत ने जहेज के लिए कत्ल से मुंसलिक एक मामले में कसूरवार शौहर, देवर और सास को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन सभी के खिलाफ 60-60 हज़ार रुपये का जुर्माना भी आयद किया है। गोपालगंज जिला के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस ने गाड़ी जांच के दौरान एक ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद की है। इस सिलसिले में एक स्मगलर को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL असिस्टेंट के कुल 500 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और 100 उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.nationalinsurance.nic.co.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य वन संवर्ग के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत आईएनएस मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद

0: प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा।

0: इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
1: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को जो उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कदंबा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
2: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार, क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
3: In this era of volatility and disruption,
4: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
3: इवन वाइल एड्रेसिंग चैलेंजेस।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

0: पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
1: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार 4th दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। पहला जो गीत है ये उसने कहा था, इस फिल्म का गाना है। मन्ना डे, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, सलील चौधरी का संगीत।

तू नहीं और सही, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में, गीतकार असद भोपाली, संगीतकार रवि।

परख फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सलील चौधरी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला।

0: सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और
0: गया
1: आ गई।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप
2: हैं?
3: काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
5: सुनिए।
6: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब आपको सुनवाते हैं मियां बीबी राजी, इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज, शैलेंद्र के बोल, एसडी बर्मन का संगीत।

तीर और तलवार, इस फिल्म का ये गाना आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले की आवाज़, फारूक कैसर के बोल, संगीत निसार का।

अगला गीत सुनते हैं, रंगीला राजा फिल्म का गाना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल, संगीत शिवराम का।

रंगीला राजा फिल्म का ये गाना आपने सुना तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाजों में, असद भोपाली के बोल और संगीत शिवराम का। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला जो गीत है, जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

0: की सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: कैसी हो आरती?
1: बिल्कुल ठीक हूँ।
0: बिल्कुल बढ़िया।
1: बिल्कुल मॉनसून में
0: बारिश का आनंद ले रही हो, है ना?
1: बिल्कुल।
0: देखिए, कई जगहों पर तो अभी बहुत ज्यादा बारिश होने वाली, उसका रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम तो अपने सभी सखियों से, सखाओं से, साथियों से यही कहना चाहते हैं कि आप सावधानी रखिए और बारिश में और भी बहुत सारी पानी से संबंधित सावधानियां, खान पान से संबंधित सावधानियां, तो वो तो आपको रखनी ही है जब तक ये मानसून चलेगा।
1: बिल्कुल। और जितना ज्यादा हम अपना ध्यान रखेंगे उतना ही इस मानसून का हम लुत्फ भी उठा सकते हैं,
0: आनंद ले सकते हैं, अन्यथा बीमार होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। चलिए आज के विषयों की हम बात कर लेते हैं आरती। तो हाँ, पहला विषय भी हमारा फिटनेस से संबंधित है। महिलाएं और फिटनेस, ये हमारा पहला विषय है। और दूसरा
1: है लेखिका ज्योति जैन जी से ममता सिंह जी की बातचीत होगी, जिसमें वो फिटनेस के बारे में हमें बताएंगी, जानकारी देंगी, तो उसको आप सुनिएगा जरूर। हाँ। और साथ ही हम बात करेंगे साड़ियों के संसार के अंतर्गत, आज हम मणिपुरी साड़ी लेकर आए।
0: अच्छा, जो कि मणिपुर में बनती है।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: और अगला जो विषय है हमारा, हमारा शब्द, हमारा विचार आपके, तो जो शब्द है वो है फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची तो हमें नहीं करनी चाहिए, मितव्ययता से रहना चाहिए, सोच समझ कर कहाँ जरूरत है वहीं पर पैसा खर्चा करें, क्योंकि अगर हमने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो हमारे पूरे महीने का बजट बिगड़ जाता है, बचत नहीं हो पाती है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है,
1: क्योंकि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि हमें बजट के हिसाब से चलना है। हम जो हमें जरूरत की चीजें नहीं भी होती हैं उसको भी खरीद लाते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो आप बताइए, आपने क्या फिजूल खर्ची करी है, या फिर आप अपने अच्छी तरीके से अपने बजट के हिसाब से चलते हैं?
0: हाँ, तो ये आप हमें बता सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है www.facebook.com, तो वहां जाकर के आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में। और व्यंजन की भी आज बात करेंगे। देखिए, आज फिटनेस की बहुत सारी बात है, तो ज्वार के व्यंजन। अब ज्वार भी एक ऐसा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उससे बनने वाले जो व्यंजन है आपके जिस जगह पर, देखिए हमारा जो देश है विविधता से भरा हुआ देश है, हर राज्य में अलग अलग तरह एक ही चीज से अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो आप जहां पर रहते हैं, आपके एरिया में, आपके घर में ज्वार से किस तरह के और क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं।
1: क्योंकि जो फिटनेस का ध्यान रखते हैं वो अधिकतर ये ज्वार ही खाते हैं। तो आप बताइए, आप किस तरीके से आप इसको, ज्वार को बनाते हैं?
0: हाँ, तो रोटी तो बनती ही है, ये तो पारंपरिक तौर पर बहुत वर्षों से हम देखते आए हैं, हमारी दादी नानी के जमाने से, कि ज्वार के आटे से रोटी बनाई जाती है और विभिन्न तरह की उसके साथ दालें, सब्जियां उसके साथ खाई जाती है। लेकिन इसके अलावा भी और कोई व्यंजन अगर बनाए जाते हैं तो उनके बारे में आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। और जब फिटनेस की बात आती है, तो फिटनेस तो तभी आती है जब हमारा मन चंगा हो, दिल बहुत स्वस्थ हो, दिमाग बहुत स्वस्थ हो, और उसका एक बहुत ही अच्छा साधन है और
1: गीत, वो है संगीत।
0: चलिए सुनते हैं गीत।

0: आरती, देखो पहली फिल्म का ये गाना हमने आपको सुनवाया, हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाजें, और इसमें भी बारिश से संबंधित बातें थी लेकिन बड़ी खुशी वाली बातें थी। लेकिन ये खुशी तभी बरकरार रह सकती जब हम अपने फिटनेस का ध्यान रखें, और खास तौर पर जब बारिश बहुत हो रही हो, मानसून का सीजन हो, तो बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हुए फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है, तभी इनका आनंद ले सकते हैं।
1: तो चलो फिटनेस के ऊपर हम और कुछ बताने वाले हैं।
0: हाँ बिल्कुल, एक लेखिका है ज्योति जैन उनका नाम है, और वैसे तो वो लेखिका है, उन्होंने अपने लेखन के बारे में भी हमें बताया है, उनकी पुस्तकों के बारे में भी बताया है, लेकिन आज इस अंक में वो फिटनेस की बातें करने जा रही हैं। तो सुनते हैं उनकी ये बातें, और आने वाले अंकों में हम उनके लेखन के बारे में भी जानेंगे।
1: बिल्कुल, और ममता जी ने इनका इंटरव्यू लिया है, इनसे बातचीत करिए, तो सुनते हैं।
0: बिल्कुल
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और विविध भारती के स्टूडियो में साहित्यकार ज्योति जैन जी आई हैं। आपका हम सखी सहेली की ओर से और विविध भारती परिवार की ओर से स्वागत कर रहे हैं। ज्योति जी नमस्कार, आपका बहुत स्वागत।
3: नमस्कार ममता जी, और सचमुच सखी सहेली में आकर के मुझे बस सखी वाली ही फीलिंग आ रही है, तो आपका बहुत सारा धन्यवाद।
2: सखी सहेली आप सुनती रही है लगातार?
3: जी बिल्कुल।
2: तो आपको कैसा लगता है?
3: ऐसा लगता है कि देखिए, हम अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे सखी सहेली कार्यक्रम, उसके विज्ञापन भी सुनते थे कि सखी सहेली कार्यक्रम सुनने के लिए पुरुष वर्ग भी किस तरह से वो समय सखा भी सुनते हैं, तो अभी तक जिसको दूर बैठकर सुनते थे उसमें खुद आकर के तो एक अद्भुत अनुभूति हो रही है कि अरे वाह, मैं खुद भी एक सखी बन गई हूँ यहाँ आकर।
2: जी, हम सखियों को बता दें कि ज्योति जी के पास बहुत सारे हुनर हैं, और एक ऐसा हुनर है जो आप सबके लिए प्रेरणा की बात है। इन्होंने अपने फिटनेस के लिए बहुत कुछ किया है, डाइट से लेकर जिम जाती हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि बताइए सखियों को अपने फिटनेस के लिए क्या कुछ करना चाहिए।
3: सबसे पहले तो मैं सभी सखियों से ये कहना चाहूंगी कि स्वयं को कमतर न आके, क्योंकि आपकी जो देखभाल वाली लिस्ट है उसमें आपका नाम सबसे आखिरी में होता है।
2: बिल्कुल,
3: और ये चीज बिल्कुल गलत है, ये आप अपने साथ न्याय नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप परिवार में हर सदस्य का ध्यान रखती हैं। आपको पता होता है आपकी

0: सास को क्या पसंद है, ससुर जी को क्या पसंद है, या माता पिता हैं तो उनको क्या पसंद है, पति को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, हर एक का ध्यान रखती है और उसके अनुसार आप व्यंजन बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ईमानदारी से अपने लिए सलाद काटा?
1: अपने अकेले के लिए कभी खाना बनाया?
0: नहीं, अमूमन नहीं होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये पहले तो यहां से शुरू हो जाए कि आपको अपना स्वयं का ध्यान रखना है। आपने जिम की बात कही है, तो ममता जी मैं इसको यहां से शुरू करती हूं कि लगभग 13-14 साल पूर्व मुझे अस्थमा था, और पुराने लोग यह कहते पाए जाते हैं कि दमा जो है वो दम के साथ जाता है। अस्थमा यानी दमा, सांस की बीमारी, तो कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैंने भी सुना ये, कि तो मुझे एक मन में चीज लगी कि अरे ये मुझे बहुत ही गंभीर बीमारी है
1: जी।
0: और मुझे इससे अब बचना है। यहां तक कि मैं स्टेराइड्स पर थी,
1: जी।
0: तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं चूंकि खिलाड़ी रही हूं, एनसीसी की कैडेट रही हूं
1: बैडमिंटन खिलाड़ी।
0: और बैडमिंटन खिलाड़ी रही हूं, तो मुझे लगता है कि अपने फिजिकल जो फिटनेस है वो आपको बहुत सारी चीजों से बचाती है।
1: जी।
0: तो उस वक्त जब मैंने जिम ज्वाइन किया, और धीरे धीरे देखिए अभी क्या होता है, मैं कई लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे डेडलिफ्ट है 40 किलो का, या बेंच प्रेस है 25 किलो का डंबल का, तो उनको लगता है कि बड़ा अच्छा है ये तो। लेकिन कैसे होता है कि आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से चीजें आती हैं। आप एकदम से आप 50 किलो का या 40 किलो का या 25 किलो का डंबल नहीं उठा सकते हो। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, तब मैंने 2.5 किलो के डंबल से शुरू किया, 5 किलो से शुरू किया। तो जब जब मैंने जिम जाना शुरू किया, जब मुझे लगा कि नहीं, सेहत के प्रति हमको जागरूकता चाहिए, तो मैंने महसूस किया कि धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती जा रही हूं। तो जब आप भीतर से भी स्ट्रांग होते हैं, तो आपको बीमारियां फिर थोड़ी सी आपसे दूर भागती हैं, बीमारियां आपसे डरने लगती हैं। ये मैंने जिम शुरू किया, और जब सिक्किम में हम गए पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहां से आकर के मैंने जितनी स्टेरॉइड्स थी वो पैक की हुई थी और वो मैंने घर आके डस्टबिन में डाल दी। मुझे उसके बाद स्टेरॉइड्स नहीं लेना पड़ी। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आपका शरीर मजबूत होता है, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो बीमारियों पर आप इस तरह से विजय प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी
0: और तब मैंने एक कहानी लिखी फतेह, इसी
1: जी
0: थीम को
1: जी
0: लेकर के तब मैंने कहानी लिखी। दूसरी चीज ये हो गई है कि डाइट का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जल्दी छोटी उम्र से शुरू कर दें, यानी महिलाएं अगर 30 बरस से भी शुरू कर दें तो भी बहुत अच्छा है, और बड़ी उम्र से शुरू करें तो भी, बोलते हैं ना कि अभी समय नहीं बीता है, जब जागे तभी सवेरा, तो प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन यानी, और मैं ये नहीं कहती कि प्रोटीन पाउडर लीजिए, मैंने कभी प्रोटीन पाउडर नहीं लिया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन पनीर है, स्प्राउट्स है, मूंग मोठ चना चवला तो महिलाएं अपने किचन में रोज गलाएं खाएं, और छाछ लें, सत्तू लें, सत्तू तो आदिकाल से चला आ रहा है हमारे यहाँ पे, हाई प्रोटीन है उसमें, तो अपनी डाइट का अपने को ध्यान रखना चाहिए।
1: जी
0: मैं ये भी नहीं कहती कि आप कचौरी समोसे ना खाओ, सैंडविच ना खाओ, खाएं कभी कभी, लेकिन आपके पेट में क्या जा रहा है उस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: तो ये तो डाइट की बात हो गई। और हमने एक वीडियो देखा था जिसमें आप बहुत बड़ा डंबल उठा के और झुकी हुई हैं, ऊपर नीचे कर रही हैं, और एक में देखा कि आप टायर उठा उठा के फेंक रही हैं। तो ये कितने समय बाद ये शक्ति आपके भीतर पैदा हुई?
0: मेरे ख्याल से डेडलिफ्ट तो मैंने थोड़े टाइम बाद शुरू कर दिया था, लेकिन शुरू में जब हम डेडलिफ्ट करते हैं तो 20 केजी का बार होता है, 20 किलो का बार, तो पहले खाली बार से शुरू किया, फिर उसमें 5-5 किलो के चक्के डाले, पहिए जैसे होते हैं वो डाले, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तो वही कि आप एक झटके से नहीं कर सकते। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप जिम जाते हैं तो वहां

0: हर जिम में, या तो आप कुछ ऐसा स्तरीय जिम ढूंढें, जिम में ट्रेनर जो होते हैं वहाँ, जो भी हैं जो आपको अटेंड करते हैं, वो पहले पूछते हैं आपकी कोई सर्जरी हुई है, आप उसको सब सच सच बताइए,
1: जी
0: है
1: जी
0: ना। फिर वो पूछते हैं आपकी कहीं कोई इंजरी तो नहीं है, वो आप बताइए, आपको बैक पेन तो नहीं है वो बताइए, नी पेन तो नहीं है वो बताइए। मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मुझे एक घुटने में मेरे बहुत सालों पहले पस हो गया था, और उसकी एक छोटी सी सर्जरी हुई और करीब 2.5 महीने तक वो प्लास्टर रहा। तब मैं घुटना नहीं मोड़ पाती थी, मुझे नीचे बैठना मना था क्योंकि मैं नहीं बैठ पाती थी। लेकिन फिर जब जिम शुरू किया तो स्क्वाट्स लगाए तो मैं नहीं लगा पाती थी, लेकिन ट्रेनर के देखरेख में धीरे धीरे स्क्वाट्स लगाना शुरू किया और आज मैं बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। तो कोई भी चीज़ को आप निरंतर अभ्यास से करेंगे और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस जगह में हूँ आप भी उस जगह पर आ सकते हैं।
1: बिल्कुल। और एक लेखक को तो हाथ की तकलीफ अमूमन हो जाती है
0: होती है
1: क्योंकि वो नियमित रूप से
0: गर्दन की
1: अपना,
0: होती है,
1: हाँ,
0: गर्दन की
1: गर्दन की,
0: होती
1: हाथ
0: है।
1: की।
0: तो मैं भी जब लिखती हूँ, मैं अभी भी कागज कलम पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी कंप्यूटर युग में है पर मैं कंप्यूटर वाली अभी भी नहीं हूँ, मुझे लिखने के लिए कागज और कलम ही चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, कई बार लंबा भी लिखना पड़ता है, लेकिन बीच में आप थोड़ा सा गर्दन को चारों तरफ घुमा लीजिए और फिर लिखना शुरू कीजिए। जब आप अभ्यास में, आप शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें आपको परेशान नहीं करती हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही। और अब चलते चलते हम हमारी तमाम सखियों को बताइए कि आपने तो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे समझौते किए, समझौता कहें या अपनी चॉइस पर, अपनी शर्त पर आपने छोड़ी, कैजुअल अनाउंसर रही, फिर आकाशवाणी में अनाउंसर बनी, वो आपने छोड़ा परिवार के लिए, अपने प्रेम के तहत, और पायलट बनते बनते रह गई, रिटर्न में आप क्वालिफाई की। लेकिन सखियों से आप क्या कहेंगी कि आज के जमाने में उन्हें क्या करना चाहिए?
0: देखिए, जमाना बदला है ना। इस बदलाव को सभी लोगों ने स्वीकार किया है।
1: जी
0: एक जमाना था जब मैंने ये चीज़ें छोड़ी, लेकिन आज मैं मीडिया के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और जमाना बदला है तो, और अब चीज़ें भी बदली हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल लड़कियों को ये सब कुछ छोड़ के और करना पड़ता है। आजकल की जो बच्चियां हैं वो दोहरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा लेती हैं, और मुझे लगता है कि अपने सपनों को जीवित रखें, उनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। जिंदगी के प्रति जो अपना नज़रिया है वो सकारात्मक रखें, तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: मैं यहाँ एक चीज़ और कहूँगी कि
1: हाँ।
0: हक तो है ही। देखिए, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो वहां कर्तव्य भी जुड़े होते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो कर्तव्यों के साथ अपने अधिकार को प्राप्त करें,
1: जी
0: इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता।
1: जी और इस समय बहुत बेहतर होगा कि एक गाना हम सुनवा दें अपनी सखियों को। कौन सा गाना?
0: मैं ना खूब मस्तीखोर हूं, मैं खुल के जीती हूँ, खुल के नाचती हूँ जब मौका मिलता
1: जी
0: है।
1: जी
0: मुझे नृत्य करना अच्छा लगता है, मैंने विधिवत नहीं सीखा है, पर जहां म्यूजिक होता है मेरे पैर अपने आप उठ जाते हैं।
1: थिरकने लगते हैं।
0: तो मुझे ना एक कॉलेज में मुझे एक टाइटल मिला था मेरे आचरण को देखते हुए, तो हम वही गाना सुनते हैं, और वो टाइटल था जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने
1: किसने
0: जाना,
1: जाना, सुनते
0: तो
1: हैं।
0: बस यही गाना सुनते हैं।

0: ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: आपका। विविध भारती के स्टूडियो में आई और सखियों सहेलियों से इतनी उम्दा जानकारी वाली
1: जी
0: बातें की और इतनी इतनी प्रेरक बातें आपने साझा
1: जी
0: की।
1: जी बहुत
0: शुक्रिया
1: धन्यवाद ममता जी। आपका दिन शुभ हो और स्वस्थ हो।
0: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार। तो आरती, देखो हमारी जो सखी ज्योति जैन है उनकी ममता सिंह से जो बातचीत हुई वो हमने सुनी और उन्होंने भी फिटनेस के बारे में काफ़ी कुछ बातें हमें बताई।
0: जी
1: और देखिए, हंसना, खिलखिलाना, नृत्य करना, गीत सुनना, ये भी फिटनेस के
0: बिल्कुल, ये
1: कुछ
0: भी
1: राज।
0: फिटनेस में ही आता है।
1: तो ये उन्होंने हमें
0: जी
1: बताया। चलिए अब हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन जब बात अपनी सेहत की आती है तो उसे वो सबसे आखिर में रख देती हैं। जबकि सच ये होता है कि यदि महिला स्वस्थ और फिट होगी तभी परिवार की भी खुशहाल और स्वस्थ रहेगा
0: बिल्कुल।
1: ना।
0: और फिटनेस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पतले दिखें। पतले दिखना ही फिटनेस नहीं होता है। फिटनेस का अर्थ होता है शरीर का स्वस्थ होना, मन का प्रसन्न होना और ऊर्जा से भरपूर जीवन जीना। और महिलाओं के लिए रोजाना 30 से लेकर 45 मिनट की जो शारीरिक गतिविधि होती है वो बहुत लाभदायक होती है
1: हाँ,
0: उसमें।
1: और बहुत सारी महिलाएं ये सोचती कि हम घर का काम करते हैं ना तो उससे तो हमारे शरीर की हलचल हो जाती है, तो अब हमें और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जो एक्सरसाइज जो हम करते हैं उसके जो पोस्चर होते हैं
0: बिल्कुल।
1: वो हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर की बनावट के लिए वो काफी उपयोगी होते हैं। तो काम अपनी जगह बहुत अच्छी बात है कि
0: जी
1: करना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 मिनट के लिए हम थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़े आसन करें तो
0: बिल्कुल,
1: वो भी हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
0: क्योंकि इतने काम के बीच में अगर हम अपने लिए 30 मिनट ना निकालें ये तो अपने खुद के साथ नाइंसाफी हो
1: हाँ,
0: जाएगी।
1: लेकिन कई महिलाएं नहीं निकाल पाती,
0: जी
1: घर की व्यस्तता बहुत ज्यादा होती
0: जी
1: है, बड़ा परिवार होता है, दिन भर काम करते हैं और उसके बाद में अगर वो अपने लिए समय निकालती है तो कई बार घर के लोग कहने भी लग जाते हैं कि अरे इतना काम पड़ा है कि तुम ये क्या करने लगी हो। तो कई महिलाओं के साथ इस तरह की परिस्थितियां भी होती हैं। खैर, लेकिन तेज कदमों से चलना, योग, प्राणायाम, साइकिल चलाना, नृत्य या हल्की एक्सरसाइज, इनमें से कोई भी गतिविधि नियमित रूप से अगर अपनाई जाए तो काफी अच्छा होता है और संतुलित आहार भी फिटनेस की मजबूत नींव होता है।
0: बिल्कुल। और आप खाने में हरी सब्जियां ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दालें हैं, दूध है, मोटे अनाज हैं, पर्याप्त पानी और प्रोटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे कि बहुत से लोग जो नहीं खाते उस तरीके के तो वो अंडे नहीं खाते हैं, तो वो पनीर खाएं, ज्यादा से ज्यादा पनीर ले सकते हैं, दूध की बनी चीजें ले सकते हैं। और ये जो जंक फूड होते हैं वो जो बहुत ज्यादा मीठे चीजें होती हैं उनको अपना लें तो ज्यादा बेहतर है।
1: हाँ, डिब्बा बंद जो भोजन आजकल बहुत प्रचलन में है
0: जी
1: तो उसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले लें और उसके बाद ही उनका उपयोग करें। और हमारा तो सुझाव यही है कि उसकी बजाय आप घर में कोई भी चीज़
0: बिल्कुल,
1: बनाकर
0: क्योंकि हम
1: खाएं तो
0: छोटी सी भी चीज़ जो जंक फूड वाला लेते हैं ना उसके ऊपर आप देखिए कितनी कैलोरी लिखी होती है ना, तो
1: बिल्कुल
0: उसमें हमें जितना चाहिए उसे कहीं कई गुना ज़्यादा हम थोड़े से खाने में ही ले लेते हैं, तो उसको आप ना लें तो ज़्यादा अच्छा है।
1: इसके अलावा मानसिक फिटनेस भी उतनी ही आवश्यक होती है। तनाव कम करने के लिए ध्यान, योग, अच्छी नींद लेना, संगीत सुनना, किताबें पढ़ना और परिवार के साथ समय बिताना, ये बहुत मददगार साबित होते हैं इसमें।
0: बिल्कुल। और जीवन के अलग अलग चरण हैं, जैसे किशोरावस्था हो या जो गर्भावस्था है, प्रसव के बाद का समय।

0: या रोजने वृत्ति का समय है, ये महिलाओं की शारीरिक इसमें जरूरतें जो होती हैं वो बदलती रहती हैं, इसलिए समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच कराना और विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, ये जो रजोनिवृत्ति की तुमने बात की तो उस समय भी महिलाओं को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको जैसे हॉट फ्लशेस आना और बार बार मुंह सूखना, प्यास लगना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं उन्हें। तो घर के लोगों का भी तो ये कर्तव्य बनता है कि वो भी अगर ऐसी समस्या उनके साथ है तो थोड़ा उनका साथ दें और उनका ख्याल रखें। तो इस तरह से अब इन बातों का ख्याल रख के फिटनेस का ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा फिटनेस कोई विकल्प नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर महिला स्वस्थ है तो ही वो अपने परिवार को स्वस्थ रख पाएगी और सशक्त समाज की वो पहचान भी होती है। इसके लिए महिलाओं की फिटनेस पर बहुत अधिक ध्यान देना। बिल्कुल,
0: अगर आप जिम नहीं जा पा रही हैं, डंबल्स नहीं है आपके पास, तो आप एक एक लीटर की जो बॉटल्स होती हैं है ना, उसके जरिए भी आप कर सकती हैं, डंबल्स का काम उससे ले सकती हैं। तो आप घर में ही कुछ एक्सरसाइज हैं वो करेंगी ना तो आपको फायदा दिखने लगेगा।
1: फिलहाल हम एक गीत सुन लेते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और वो जो गीत हमने सुना शगुन फिल्म का, उसके पहले हम फिटनेस की बातें कर रहे थे। हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस बारे में अपने जो दिल के जो बातें थी या जो वो बताना चाहते थे हमें लिख भेजी है, तो हम एक एक करके हम अपनी सखियों को बताते हैं। एक साथी हमारी लिख रही है कि फिटनेस उम्र की मोहताज नहीं होती, चाहे किशोरी हो, गृहिणी, कामकाजी महिला या वरिष्ठ महिला, सभी के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहना समान रूप से महत्वपूर्ण है। सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद महिलाओं को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इससे तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और अनेक बीमारियों से भी बचाव होता है।
1: बिल्कुल। एक और हमारी सखी जो लिखते हैं कि 50 के बाद प्रोटीन के रूप में सोयाबीन, टोफू मिल्क और स्प्राउट, खासकर मूंग, मूंगफली, काले चने हर महिला के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं।
0: और एक हमारी जो साथी हैं वो ये भी लिख रही हैं कि व्यायाम से एंडोर्फिन यानी कि जो हैप्पी हार्मोन से वो निकलते हैं जो तनाव, चिंता और मूड स्विंग्स को कम करते हैं। हड्डियों की मजबूती उम्र के बढ़ने के साथ महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हड्डियां मजबूत होती है। ऊर्जा और आत्मविश्वास फिट रहने से शरीर का स्टेमिना बढ़ता है, जिससे महिलाएं अपने दैनिक कार्य अधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ कर पाती हैं।
1: जी। और एक और श्रोता जो लिखती हैं कि मैं सुबह सैर को जाती हूँ, थोड़ा बहुत योग व्यायाम करती हूँ, बाहर का खाना जो होता है उसको खाने से परहेज करती हूँ कभी कभार को छोड़कर, और मौसमी फल सब्जी खाती हूँ। संगीत बहुत तरोताजा रखता है इसलिए विविध भारती के प्रोग्राम सुनना नहीं छोड़ती हूँ। मनोरंजन के लिए सखी सहेलियों के साथ गेट टुगेदर भी करती हूँ।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी हमारी ये भी लिख रहे हैं कि योग और प्राणायाम मानसिक शांति और लचीलेपन के लिए, योग सबसे उत्तम है। पिलेट्स, कोर स्ट्रेंथ और बॉडी पोस्चर सुधारने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है। ब्रिस्क वॉकिंग या जॉगिंग हृदय स्वास्थ्य के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट यानी कि रोजाना 30 मिनट तेज चलना फायदेमंद होता है। और इस तरह की फिटनेस से संबंधित बहुत सारी बातें हमारे सखियों ने हमें लिख करके भेजी, तो हम उन सभी को धन्यवाद कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मणिपुरी साड़ी के बारे में। तो मणिपुरी जो साड़ी है ये साड़ी आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से यानी कि राजा रानियों के समय से काफी लोकप्रिय है। पुराने समय में इस साड़ी को रानियां भी पहना करती थी। मणिपुर की साड़ी को कारीगर मशीन का इस्तेमाल करके नहीं बल्कि हाथ की बुनाई से बनाते हैं।
1: जी, यही इसकी खासियत भी है। इसे बनाने में कुल 15 से 20 दिनों का समय लगता था और मणिपुर की साड़ियों को आज भी महिलाएं खास मौकों पर पहनती हैं। इन साड़ियों को पहनकर वो अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मणिपुरी साड़ी का इतिहास बहुत पुराना है। ये राजघरानाओं की जो राजघराने होते थे उनकी परंपरा और महिलाओं के सामाजिक सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है।
0: हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जब कोई भी महिला जब साड़ी पहनती है तो एक एलिगेंट लुक, मतलब यूं कह सकते हैं कि बहुत सुंदरता उसमें नजर आती है। और जब हमारे देश में विभिन्न तरह की साड़ियां बनती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह की साड़ियां बनती है, और जब कोई त्योहार आता है तो उस प्रांत की वो खास जो साड़ी है वो पहनी जाती है, तो सब महिलाएं एक तरह की साड़ी पहनती है, उस खूबसूरती का तो कहना ही क्या है ना। और मणिपुरी साड़ी और कपड़ों में दिखने वाले प्रसिद्ध टेम्पल डिजाइन और मोइरांग फी कहा जाता है, जो डिजाइन होते हैं उनका नाम है ये। और इस डिजाइन का आविष्कार मोइरांग साम्राज्य की जो राजकुमारी थी थोड़बी, उन्होंने किया था। और मणिपुरी साड़ियों को प्रिंट या डाई करने के लिए पहले के समय में पेड़ों की छालों, पत्तियों और प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता था।
1: बिल्कुल, पहले तो इसी प्राकृतिक तरीके से ही बनाते थे, कुछ भी अलग से रंग नहीं इस्तेमाल करते थे। इन सभी चीजों से कपड़ों पर कलर किया जाता था। यही कारण है कि ये साड़ियां सालों साल अपनी चमक नहीं खोती हैं। मणिपुरी साड़ी जो होती है वो सिर्फ रानियों तक सीमित नहीं थी बल्कि आज भी ये अपने हल्के और आरामदायक फैब्रिक, टेम्पल बॉर्डर और खूबसूरती के लिए महिलाओं के बीच काफी चलन में है।
0: बिल्कुल। और ये साड़ियां मलबरी सिल्क, एरी सिल्क और कॉटन सिल्क ब्लेंड से तैयार की जाती है। ये सिल्क हल्का और सॉफ्ट होने के कारण बेहद आरामदायक होता है। इन साड़ियों पर बनी टेम्पल बॉर्डर साड़ी के लुक को और खास बना देती है। मणिपुरी संस्कृति में रंगों का विशेष महत्व है और प्रत्येक रंग का अपना प्रतीक और अर्थ होता है।
1: जी, जैसे कि लाल रंग प्रेम और जुनून का प्रतीक होता है, जबकि हरा रंग उर्वरता और समृद्धि को दर्शाता है। पीला रंग खुशी और शुभता से जुड़ता है, जबकि सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है। ये साड़ियां हथकरघे पर बुनी जाती हैं, मुख्य रूप से इनमें सूती और रेशमी धागों का प्रयोग होता है।
0: हाँ, और ये जो रंग बिरंगी साड़ियां होती है ना, वाकई में ये अलग अलग जो रंग होते

0: चटकदार जो रंग होते हैं वो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, और कई महिलाएं तो हर तरह के रंगों
1: जब वो त्योहार जब वो पहन के आती ना तो पता चलता है त्योहार है।
0: बिल्कुल। और कुछ साड़ियां तो ऐसी होती है जिसमें मिले जुले रंग होते हैं, बहुत सारे रंगों की एक ही साड़ी बनी होती है, तो वो भी बड़ी एक इंद्रधनुष के रंगों की तरह बड़ी खूबसूरत लगती है। आजकल कुछ आधुनिक डिजाइनों में मिश्रित धागों का भी प्रयोग किया जाता है। महीन बुनाई और सादगी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और इसके मुख्य प्रकार हैं फानेक, मयेक, नाइबी, क्षेत्रीय धारियां वाला सबसे लोकप्रिय पारंपरिक फानेक है, कनाप फानेक, विशेष अवसरों पर पहना जाने वाला सिला हुआ ये एक रूप है। ये अलग अलग तरह के नाम हैं जो अलग अलग डिजाइन को दिए गए हैं
1: जी। और फिर है मोइरोंग फी जो होता है वो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र जिसकी सीमा जो यानी बॉर्डर जो होता है उस पर विशेष आकृतियां बुनी जाती हैं, और इसे GI मान्यता भी प्राप्त है इस वाले इसको। और वांगखे फी ये बेहद महीन और पारदर्शी मलमल यानी कि मसलिन जैसी जो होती है साड़ी वो होती है, और शुरुआत में इसे शाही परिवार के लिए वांगखे क्षेत्र में बुना जाता था।
0: और जी सामी लामी फी ये बुनाई और कढ़ाई का एक अद्भुत संयोजन है जिसमें जानवरों पारंपरिक प्रतीकों को उकेरा जाता है
1: जी। और कभी से मणिपुर में प्रतिष्ठा योद्धाओं का प्रतीक माना जाता था। पारंपरिक रूप से इन साड़ियों को सूती, कॉटन और रेशम जो होती है एरी और मलबरी धागों से हाथों द्वारा बुना जाता है। इन्हें रंगने के लिए प्राकृतिक जड़ी बूटियों और पेड़ों की छालों का उपयोग किया जाता था।
0: हाँ, तो इस बार अगर जब भी आप मणिपुर जाएं तो, या फिर आपके कोई दोस्त कोई रिश्तेदार अगर जाते हो तो वहां से एक साड़ी जरूर मंगवाइएगा, उनसे कहिएगा कि हमारे लिए एक मणिपुरी साड़ी लेकर आई है। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: हमारा ये जो सेगमेंट है ना कि
1: हम्म,
0: शब्द हमारा और विचार आपके, तो इसमें आज का जो शब्द है वो फिजूल खर्ची है, तो इस बारे में हमारे साथियों के, हमारे सखियों के क्या विचार हैं वो जान लेते हैं। हमारे एक साथी ये लिखते हैं कि फिजूल खर्ची मतलब समय या संसाधनों का बिना ठोस आवश्यकता खर्च में लापरवाही बरतना। ये एक ऐसी आदत है कि व्यक्ति अपनी आय के मुकाबले ज्यादा खर्च करके सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लुटाता रहता है, अंत में कर्ज में डूब जाता है और तब उनकी आंखें खुलती है तब बड़ी देर हो चुकी होती है। खर्च करने के बारे में एक गुजराती मुहावरा है कि पछेड़ी प्रमाणे सोड़ ताड़वी। इसका मतलब यह होता है कि चादर के हिसाब से पैर फैलाना। खर्च के
1: बिल्कुल
0: साथ बचत की आदत भी डालें, वो आपके बुढ़ापे में एक लाठी जैसा सहारा बन सकती है।
1: जी। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची भाई, इस रोग से प्रायः सभी ग्रसित होते हैं, और ऐसा इसलिए है कि अपने वास्तविक आवश्यकताओं की जानकारी ही नहीं है, और एक पर एक फ्री का लोभ भी समाया हुआ है, फिर मानव की प्रवृत्ति भी संग्रह करने की है। इस दृष्टिकोण से फिजूल खर्ची होना स्वाभाविक ही है। अक्सर ऐसा होता है ना मंजू जी, जब हम कुछ लेने जाते हैं, तो जो हम लेने जाते हैं अगर उसके साथ में कुछ और एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, कम दाम का मिल रहा होता है, या एक और एक पर एक फ्री होता है, तो हम उसको जरूर उठा लेते हैं, चाहे हमें उसकी जरूरत हो चाहे ना हो।
0: हाँ बिल्कुल, ये समझ करके कि ये तो फ्री मिल रहा है हमें,
1: हाँ
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका कुछ तो हमें भुगतान करना ही होता है जो कि हमें पता नहीं चलता है।
1: जी
0: हमारी एक साथी ये लिख रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग और आकर्षक विज्ञापनों के प्रभाव में आकर अनावश्यक वस्तुओं को खरीदना, बजट न बनाने और बचत के महत्व को न समझने की आदत, गलत वित्तीय आदतें जैसे फिजूल खर्ची, बिना बजट के खर्च करना और बचत न करना जो कंगाली की शुरुआत कर सकती है। आय
1: जी
0: से अधिक खर्च करने पर व्यक्ति कर्ज के दुष्चक्र में फंस जाता है। मानसिक तनाव, वित्तीय असुरक्षा के कारण परिवार में कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है।
1: जी और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। आज की दिखावे की दुनिया में लोग अक्सर आवश्यकता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही खर्च करना चाहिए और अनावश्यक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। सादगीपूर्ण जीवन और मित्रता हमें आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं, इसलिए फिजूल खर्ची छोड़कर बचत और समझदारी की आदत अपनाना ही जीवन की सच्ची समृद्धि है।
0: और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि फिजूल खर्ची को रोकने का अर्थ कंजूसी करना नहीं बल्कि मितव्ययता, यानी कि सोच समझकर खर्च करना है, इस आदत को अपनाना है। इसके लिए व्यक्ति को किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ये उसकी आवश्यकता है या केवल एक इच्छा। बजट बनाकर जीने और अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने से ही आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है।
1: बिल्कुल
0: और एक साथी ने ये भी लिखा है कि फिजूल खर्ची एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। तो इन सब आदतों से, इन बातों से हमें बचना है और फिलहाल एक गीत
1: गीत
0: सुनना
1: सुनना
0: है।
1: है।

0: गीत, एक चटपटा सा गाना हमने सुना और अब ज्वार की कुछ चटपटी रेसिपीज हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि हमारे प्रांत में ज्वार नहीं होता है, अच्छा। महाराष्ट्र जाने पर वहाँ ये रोटी खाई जाती है, बहुत अच्छा लगता है और वहीं के लोगों से बनाना भी हमने सीखी है। और अब तो वैसे पैकेट में सारी चीज़ें मिल रही है, आटा भी मिल जाता है। ज्वार की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है और अब मैं थोड़े ढंग से उसे बना भी लेती हूँ, क्योंकि उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है ना, वो टूट जाती है किनारों से, इसलिए तो उसको बनाना भी एक टेक्निक होती है और हर किसी के हाथों में ये हुनर नहीं होता है, तो हमें भी सीखना चाहिए। लिखती है ये कि मैं रात के खाने में ज्यादा ज्वार की रोटी खाती हूँ, किसी भी तरह की तीखी चटनी और सब्जी के साथ खाई जाती है, पर मुझे ये ठेचा और गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठेचा एक तरह का महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक तरह की चटनी होती है, मसाला भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारी लहसुन होती है, थोड़ा अदरक हरी मिर्ची होती है और फिर उन सबको थोड़ा भून लिया जाता है, थोड़ा मूंगफली के दाने डाल करके और फिर उसे पीस लिया जाता है नमक डाल करके और थोड़ा दरदरा सा इसे रखा जाता है, उसे ठेचा कहते हैं।
1: बिल्कुल एकदम मुंह में पानी आ जाए ऐसी रेसिपी बता दी आपने।
0: बिल्कुल पारंपरिक जो रेसिपी होती है, व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें बड़ी मेहनत से बनाया जाता है, हाथ से कूटना पीसना और इस तरह के कुछ अच्छी तरह से उन्हें सेकना, चूल्हे के ऊपर पहले तो सेका जाता था, तो ये जो प्रोसेस होते थे इसमें उन चीजों का एक स्वाद जो है वो निकल
1: जाता था। खाली मिक्सी में आप पीस दें तो वो स्वाद नहीं आता जो हाथ से पीस के आता है।
0: बिल्कुल। अब और भी व्यंजन,
1: हाँ जी बिल्कुल, एक हमारे जो श्रोता है उन्होंने लिखकर भेजा है ज्वार आटे की राब।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 4 चम्मच ज्वार का आटा, 4 चम्मच घी, 1/2 चम्मच अजवाइन, 3 चम्मच काजू बादाम की कतरन, 4 चम्मच गुड़, 1/2 चम्मच ड्राई जो अदरक का पाउडर होता है वो, और 2 कप गर्म पानी सजावट के लिए ड्राई फ्रूट्स की कतरन। अब सबसे पहले एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें अजवाइन डालकर 1 मिनट के लिए इसको भून लीजिए अच्छे से, और बाद में ज्वार का आटा डालकर धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। बाद में अदरक का पाउडर, गुड़ और पानी डालकर अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लीजिए। बाद में काजू बादाम की कतरने डालकर वापस से 2 मिनट के लिए पका लीजिए। तो अभी हमारी जो टेस्टी गर्मा गर्म जो ज्वार आटे की राब है वो बनकर तैयार है, इसको ड्राई फ्रूट से जा सकते हैं।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर, प्रोटीन और खनिजों से भरपूर होता है। इसके सेवन से वजन नियंत्रण और पाचन क्रिया बेहतर रहती है। ज्वार के आटे और साबुत ज्वार से कई स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। अब पहले ज्वार की रोटी या भाकरी के बारे में इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में गर्म पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर नरम आटा गूंथ लें और हाथ या बेलन की मदद से गोल बेलकर धीमी आंच पर इसे सेकें, तो इस तरह से तो ये रोटी बन जाएगी। हालांकि इन्होंने जितनी आसानी से लिखा है उतनी आसानी से वो बनती नहीं
1: बनती नहीं।
0: ज्वार का चीला किस तरह, पुड़ला जिसको बोलते हैं, वो किस तरह से बनाए कि ज्वार के आटे में दही, पानी, कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, टमाटर, गाजर और इसके अलावा नमक और हरी मिर्च मिलाकर एक घोल बना ले इसका। अच्छा। वो तैयार कर ले और तवे पर तेल लगाकर वो घोल जो है वो फैलाते हैं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेके, अचार या दही के साथ इसको खा सकते हैं, चाय या कॉफी के साथ भी खाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है।

0: सकता है। इसी के साथ इन्होंने ज्वार का उपमा किस तरह से बनाए वो भी लिखा है कि रात भर भीगी हुई साबुत ज्वार को कुकर में उबाल लें, पैन में राई, करी पत्ता, प्याज और अपनी मनपसंद सब्जियां भुनें और इसमें उबली हुई ज्वार और मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं और पकाएं। इस तरह से ज्वार का उपमा तैयार होता है।
1: वाह, बहुत अच्छी चीज है ये तो। और साथ ही हम बात कर रहे थे ज्वार की जो खस्ता कचौड़ी होती है उसके लिए एक कप गेहूं का आटा चाहिए, बेसन अभी उसमें आप ले सकते हैं लेकिन ये तो उन्होंने गेहूं का बताया हुआ है, हमें तो चाहिए ज्वार का। तो हम बात करते हैं ज्वार भाकरी की। तो दो कप ज्वार का आटा, दो टेबल स्पून इसमें चावल का आटा चाहिए, दो टेबलस्पून तेल और एक टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया और एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ हरा लहसुन, स्वाद के अनुसार नमक और भाकरी सेकने के लिए घी। सभी सामग्री को अच्छी तरह से आप मिला लीजिए और पानी की सहायता से उसका सख्त आटा आप गूंथ सकते हैं। तो मतलब पतला नहीं रखना है, पतला तो वो अलग हो जाएगा फिर वो वैसा नहीं बनेगा। तो आटे को बराबर नींबू के आकार की छोटी छोटी सी लोइयों में आप बांट लीजिए, लोई को बेल कर भाकरी बना लीजिए, तवे को गर्म करके और धीमी आंच पर भाकरी को दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक लीजिए, फिर घी डालकर लकड़ी के प्रेस से मतलब उस तरह से दबाते हुए अच्छी तरीके से उसको दोनों तरफ से धीमी आंच पर तब तक सेकिए जब तक वो कुरकुरी ना हो जाए, फिर अपनी पसंद की सब्जी या चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। एक साथी हमारी लिख रही है कि ज्वार एक अत्यधिक पौष्टिक और ग्लूटेन मुक्त अनाज है जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है और इसके सेवन से ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल में रहता है। और ये लिखती है आगे कि मध्य प्रदेश और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां ज्वार की पारंपरिक रोटी, स्वादिष्ट ज्वार की राब, ज्वार का ढोकला या मुठिया और कुरकुरी ज्वार की पूरी आसानी से बना सकते हैं। और ज्वार के कुछ व्यंजनों के बारे में लिखा है, इन्होंने रोटी के बारे में लिखा है जो कि हम बता चुके हैं इसलिए, और चिले के बारे में भी लिखा है और उसके बारे में भी हम बता चुके हैं तो ये तो हम नहीं बता रहे। इसके आगे इन्होंने ज्वार के स्टफ्ड बाटी के बारे में लिखा है तो वो हम बता देते हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्वार के आटे में अजवाइन, तिल और कसूरी मेथी मिलाकर आटा गूंथ ले, इसके अंदर आलू और मटर का मसालेदार मिश्रण भरे और बाटी की तरह इसको सेक ले या कम तेल में कचौड़ी की तरह तल ले और यह स्वाद और सेहत का एक बेहतरीन संगम है। इसके बाद इन्होंने ज्वार का उपमा बनाने के बारे में लिखा है कि साबुत ज्वार को कुछ घंटे पानी में भिगोकर उबाल ले और अब राई, करी पत्ता और अपनी मनपसंद की सब्जियों से तड़का लगा, ये भी हम आपको बता चुके हैं। और राब के बारे में इन्होंने लिखा है जो भी जिसकी रेसिपी भी हम बता चुके हैं।
1: बिल्कुल। एक छोटा सा ज्वार, ये ज्वार का डोसा है वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए एक कप ज्वार का आटा, तीन बारीक कटा हुआ प्याज, तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, एक मुट्ठी कटा हुआ ताजा धनिया, तीन कप पानी और स्वाद के अनुसार नमक, दो चम्मच डोसा सेकने के लिए तेल चाहिए। अब एक बाउल में ज्वार, जो ज्वार होता है उसका आटा लीजिए, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, नमक और पानी डाल लीजिए, सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिलाकर उसका पतला घोल तैयार करें, तवा गर्म करें और हल्का सा तेल लगा दीजिए उसको, फिर तवे पर घोल को डालकर गोल गोल घुमाते हुए फैलाएं जैसे कि आप डोसा बनाते हैं और धीमी आंच पर डोसे को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लीजिए, फिर इसमें आप कुछ भर भी सकते हैं आलू का मसाला या आप ऐसे भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल। जो लोग रसोई घर में काम करते हैं उन्हें पता होता है कि किस चीज से किस तरह की चीजें और वो विभिन्न तरह के वो प्रयोग भी करते रहते हैं कि अरे इससे हो सकता है कि ये चीज अच्छी बन जाए, वो चीज अच्छी बन जाए और इस तरह से बना के वो कुछ अलग अलग प्रयोग करके भी बना सकते हैं। हमारे एक साथी ने ज्वार के आटे का कप केक बनाने की रेसिपी भी हमने लिख के भेजी है लेकिन अभी तो हम समय नहीं कि उसे पढ़ पाएंगे, तो अगर हमारे कोई साथी बनाना चाहते हैं तो इस फेसबुक पेज से आप पढ़ सकते हैं और बना सकते हैं।
1: बना के देखिए,
0: एक गीत हम यहाँ सुन लेते हैं।

0: आरती देखो, जब हमारी पसंद की कोई रेसिपी बनती है ना, जो हमें बड़ी पसंद हो, स्वादिष्ट हो, तो हम भी तो अपने मन में कुछ सपने सजा करके बैठ जाते हैं कि आज
1: कि हम इसको किसके साथ खाएंगे।
0: बिल्कुल, इस तरह के सपने सजाए जाते हैं। खैर, हम अपनी सभी सखियों सखाओं के लिए यही दुआ मांगते हैं हमेशा कि आप बहुत अच्छे सपने सजाएं और आपके सपने पूरे भी हों।
1: बिल्कुल, स्वस्थ रहें।
0: हाँ, स्वस्थ रहें। इसी के साथ कार्यक्रम अब समाप्त करने की बारी है, तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन हैं। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: होट

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश
1: में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं।

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश
1: में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार यूनुस भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
0: नमस्कार
1: थैंक
0: यूनुस
1: यू
0: भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी। आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
2: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसे गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने समहाउ मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ,
1: वाह वाह,
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे,
1: वाह
2: तो
1: वाह
2: इस
1: वाह
2: तरह से
1: वाह।
2: मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज़ की तरफ ज़्यादा,
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी
1: जी
2: तो
1: बिल्कुल।
2: पैदाइश वहीं की है।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका
2: जी
1: जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
0: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के, और जहाँ पे मैं सीखता था बेसिकली इलाहाबाद, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कंपटीशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात
1: हाँ,
0: नहीं, वो गाने का मौका मिला,
1: क्या बात है।
0: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया
1: क्या बात है,
0: इसमें।
1: तो वही गाना सुनाइए फिर।
0: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात, गोविंद के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं
0: जी
1: पढ़ रहे
0: बेसिकली मैं इंजीनियर
1: थे?
0: हूँ,
1: हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी।
0: दोनों अलग अलग हैं। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संगीत समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो इस
1: बगावत
0: प्रोफेशन को
1: करनी
0: मैंने
1: पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं
0: चुना।
1: करेंगे।
0: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ, मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ,
1: अच्छा, ये भी
0: क्योंकि
1: हुआ है।
0: हाँ गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया, उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है, तो बस वो चलता रहा चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है,
0: हाँ नहीं जी
1: सिंगर है। मुख्तार
0: जी
1: भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे
2: क्या बात है।
1: बाप रे बाप,
2: हाँ
1: ये क्या मामला
2: और
1: है।
2: मैं मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर, मैं जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा,
1: जी
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में,
1: हाँ,
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है
0: सच में सच
1: कि
0: में।
1: कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं,
2: लेकिन
1: तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता
2: शायद ऐसा था डेस्टिनी बोलते हैं ना कि,
1: जी जी
2: तो मैंने शुरुआत की क्राइम साइड, मेरा लीगल प्रैक्टिस है
1: हाँ
2: आज भी,
1: हाँ
2: मतलब मेरा एनरोलमेंट है,
1: जी
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ।

0: मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया, और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो
1: हाँ,
0: ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा।
1: क्या बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं क्योंकि
0: हाँ
1: वो पॉपुलर गाने हैं,
0: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिले।
0: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
0: में,
1: बात है, क्या
0: ये
1: बात है, सरदार
0: मतलब
1: मलिक साहब का संगीत है
0: जी
1: ये।
0: जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है,
1: वाह वाह
0: तो
1: वाह।
0: ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता
1: एक
0: है।
1: गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे नाम लेकर
0: वाह
1: पुकारो,
0: हाँ क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है
1: ये
0: ना,
1: डांसिंग का म्यूजिक
0: तो दो लाइनें हो
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूं कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस, कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते,
0: बिल्कुल
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि आंख बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना, और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना। वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए

0: जाएं, और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज़्यादा पसंद करूँगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है,
1: बिल्कुल,
0: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है, और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज़्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है, गोविंद आप ये मानते हैं?
2: यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का, तो यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
0: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश,
1: क्या
0: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: है।

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। वाह,
0: मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी
0: अच्छा
1: मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मज़ा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु।
2: मैं वो सोच ही रहा था,
1: सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुप

0: आशिकी
1: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
0: एक पूरा दौर रहा है
1: यस
0: गजलों का, जब
1: यस
0: गुलाम अली के कैसेट्स कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते
1: हाँ
0: होंगे।
1: एग्जैक्टली
0: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने, कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
1: तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
0: क्या
1: कि
0: बात
1: भाई
0: है।
1: लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज़ ठीक से निकल जाए, आवाज़ चल जाए,
0: हाँ
1: क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज़ को उसको कॉपी करना है, तो वो
0: हाँ
1: थोड़ा सा, क्योंकि अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
0: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद, कितना टेंशन होता है शो से पहले?
1: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है,
0: हाँ
1: जैसे धक धक धक धक करता रहता है। और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ मेरा, जब

0: नंबर आने लगता है, जैसे पहला गाना मेरा ही है तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है, और
1: अच्छा
0: मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना आज।
2: ये तो सबसे बड़ी बात ही है, टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर वाले को
2: हाँ, उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं
2: जी,
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
2: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को पता है, हम फिल्में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी।
1: बिल्कुल।
2: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
1: चलता चला जाता है।
2: हाँ,
1: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा है।
2: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी। कहते ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते तो आपको चोट लगती है।
1: अरे
2: तो खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज।
1: गोविंद, कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
0: हाँ, कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला अभी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना, वो दिमाग में मेरे बैठ गया है, वो चीज कुछ लाइनों को देखना पड़ता है। मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूमन कभी नहीं गाया है या पहले दो बार गा रहा हूँ, दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: अच्छा, फिर इतने सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
2: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये हाँ, कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन्स रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल।
2: अनलेस के कोई ऐसा आप रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा बिगर देखना पड़ा।
1: गोविंद, आप बताइए।
0: नहीं, रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो, सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो चाहे म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ, कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
2: जी,
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
2: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
2: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था, गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देख कर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे, तो उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी बारीकी से,
2: बारीकी से जो सुनना
1: जी
2: ये,
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स, बहुत शोज किए हैं आपने।

0: तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
1: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहाँ नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को, जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ ख़त्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
0: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ, हाँ,
0: वो गाना सुनते हैं हमसे।

0: क्या बात है, इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ है म्यूजिक, चुराया हुआ नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: अभी तब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी तो होता है। और काफी सारी फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, मैं दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनका सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देंगे तो हम शुरू हो जाते हैं।
2: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था बस।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं। शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
2: वो तो हारमोनियम लेके,
1: लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए हैं तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना आप गा सकते हैं।

0: तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
1: यस, एक बहुत ही सच्चाई की पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
1: सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो।

0: कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है
1: जी।

0: पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र। इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 5 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी। उन्होंने इस घटना को आपत्तिजनक और सदन की गरिमा तथा मर्यादा के विरुद्ध बताया। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली।

0: सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है।

0: सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकारी नीतियों का उद्देश्य बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और उत्तरदायी इंटरनेट प्रदान करना है। लोकसभा में श्री वैष्णव ने कहा कि 2023 में लागू डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रोसेसिंग को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन लेकर हम आएंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 6:00 और भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनिएगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से, समय होगा शाम 6:05 पर।

ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर हम पेश करेंगे शाम 6:10 पर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत का समय होगा शाम 6:40 पर और प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस हम प्रस्तुत करेंगे शाम 7 से। गुड इवनिंग रोहतास, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार का समय होगा शाम 7:25 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा सुनिएगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से, समय होगा शाम 7:50 पर। संसद समीक्षा आपको सुनवाएंगे रात्रि 8 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर। समाचार

और संध्या सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समय होगा रात्रि 8:45 पर। शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरव आपको सुनवाएंगे रात्रि 9 बजे से। और फिल्मी हिंदी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रस रंग सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनना न भूलिएगा रात्रि 10:30 पर।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदन।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। लीजिए सुनिए महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों को रिभा का प्यार भरा नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं आज के कार्यक्रम की रूपरेखा पर। सखियों से हम बातचीत करेंगे वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण विषय पर। वहीं रसोई घर में जानेंगे बरसात के मौसम में भोजन को सुरक्षित रखने के क्या क्या तरीके हैं। कार्यक्रम के बीच बीच में गीत संगीत का आनंद लेंगे। योजना में नव भारत शिक्षा कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। सखियों, वृक्षारोपण जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए बेहद जरूरी है। पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, भूजल स्तर बढ़ाते हैं और वन जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। यूं कहें कि आत्मा के आनंद के लिए भी हमें पेड़ लगाना चाहिए। जो पर्यावरण हमें जीवन देता है उसके संरक्षण के लिए हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। पेड़ लगाना मानवता की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। विकास के नाम पर जिस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही है उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं वर्षा बिल्कुल भी नहीं हो रही है। पहाड़ों में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, जिससे जान माल की क्षति के साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण जरूरी कदम है। आप पेड़ लगाएं, उसका देखभाल करें। जरूरी नहीं है कि आपके पास खुद का जमीन हो, जगह हो, तभी आप पेड़ लगाएं। किसी भी सार्वजनिक जगह पर आप पेड़ लगा सकते हैं। सड़क के मार्ग के किनारे, विद्यालय में अगर पर्याप्त जगह है तो उसे भी वृक्षारोपण के द्वारा सजा सकते हैं। बच्चों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं। सरकार द्वारा वृक्षारोपण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, जिसको बच्चे

बहुत उत्साह से लगा भी रहे हैं, बस जरूरत है उचित देखभाल की। सखियों, पेड़ पौधे से प्रायः हर कोई जुड़ा होता है, बस जरूरत है उसके रख रखाव के लिए थोड़ा समय दें। पेड़ पौधे का ख्याल रखना बच्चों के ख्याल रखने जैसा है। जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं, तो उन्हें देखकर जो मन में खुशी होती है वह एक प्राकृतिक प्रेमी ही महसूस कर सकता है। पेड़ पौधे हमें बदले में कुछ बहुत कुछ देते हैं। एक छोटे से बीज या पौधे को अपने हाथों से लगाना, फिर उसे बड़ा होते हुए देखना प्रकृति से जुड़ने का और जीवन को पनपने का सबसे अद्भुत एहसास है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि प्रकृति और पौधे के बीच समय बिताने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर घटता है, जिससे मानसिक शांति और खुशी मिलती है। यह जीवन चक्र का एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो हमें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और अधिक उदार बनाता है। सखियों, पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर 3R को अपनाना सबसे प्रभावी है। कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण अपनाना जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, जल और ऊर्जा को बचाएं, अधिक पेड़ लगाएं और कचरे का सही प्रबंधन करें। छोटे बदलाव से हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रख सकते हैं। बिजली और पानी की खपत कम करें। कमरे से बाहर निकलते समय लाइट और पंखे बंद कर दें। जिन चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें फेंकने के बजाय काम में लाएं, जैसे कांच की बोतलों का पुनः उपयोग। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक स्ट्रा और कप का उपयोग बंद करें। खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें। अपने घर से निकलने वाले गीले और सूखे कचरों को अलग अलग डस्टबिन में डालें। गीले कचरे से जैविक खाद बनाएं। कम जगह हो तो बालकनी में ही सही छोटे पौधे लगाकर हरियाली को बढ़ावा दें। कारपूलिंग अपनाएं, जिससे ईंधन की बचत होती है और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। केमिकल युक्त उत्पादों के बजाय पर्यावरण अनुकूल यानी इको फ्रेंडली और प्राकृतिक उत्पादों को प्राथमिकता दें। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आप स्वयं सजग रहें और अपने परिवार, दोस्तों और समाज को जागरूक करें, क्योंकि वन ही जीवन है। तो आइए सखियों, अब एक गीत सुनते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आ गई सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: सखियों, बरसात का मौसम सुहावना, नमी भरा और हरा भरा होता है। इस दौरान आसमान में काले बादल छाए रहते हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं और कभी रिमझिम तो कभी भारी बारिश होती है। भीषण गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ चारों ओर हरियाली और ताजगी देखने को मिलती है। पेड़ पौधे खिल उठते हैं, नदियाँ तालाब भर जाते हैं और मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है। लेकिन इन सब के साथ हमें हर

मौसम के अनुसार अपने खान पान के चीज़ों को सुरक्षित रखना होता है। बरसात के मौसम में रसोई में नमी और बैक्टीरिया से भोजन को सुरक्षित रखने के लिए सभी अनाजों एवं मसालों को एयरटाइट कंटेनर में रखें। चम्मच साफ और हमेशा सूखा इस्तेमाल करें और बचे हुए खाने को तुरंत फ्रिज में स्टोर करें। दाल, चावल, आटा और मसालों में अक्सर बरसात के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं। इन्हें सही रखने के लिए एयरटाइट डब्बों का इस्तेमाल करें और डिब्बों में सूखी नीम की पत्तियाँ या तेज़पत्ता रखने से कीड़े कम लगते हैं। नमक और चीनी में नमी के कारण गांठें पड़ जाती हैं। इससे बचने के लिए इनके डिब्बों में कुछ चावल पोटली में बांधकर रखें या फिर दो चार लौंग डालकर इन्हें आप सुरक्षित रख सकते हैं। रसोई को हमेशा सूखा और साफ रखें। कीटाणुनाशक का इस्तेमाल करें ताकि सीलन के कारण कीड़े न पड़े। बारिश में सूजी और दलिया में भी कीड़े लग जाते हैं। सूजी, दलिया, सेवइयाँ जैसे चीज़ों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें और इन्हें रखें तो ये लंबे समय तक ख़राब नहीं होते और कीड़े नहीं लगते हैं। बरसात में उतना ही सामान लें जितना कि आवश्यक हो। स्टोर करके रखने के लिए चीज़ें न खरीदें तो बेहतर है। सब्जियों को हमेशा अच्छी तरह से धोकर और सुखाकर फ्रिज में रखें। पत्तेदार सब्जियों में नमी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें साफ़ करके और पेपर में या सूती कपड़े में लपेटकर स्टोर करें। दूध या डेयरी उत्पाद को रूम टेम्परेचर में न छोड़ें बल्कि हमेशा फ्रिज में रखें और जल्द से जल्द इस्तेमाल करें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर बरसात में हम भोज्य सामग्री को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आइए अब सखियों के साथ एक और गीत सुनते हैं।

सखियों आइए चर्चा की ओर चलते हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे उल्लास भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख योजना है। इसका मुख्य लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन सभी वयस्कों को बुनियादी साक्षरता, अंकगणित और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है, जो किसी भी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यह केंद्र प्रायोजित योजना 2022 से 2027 तक लागू है। इसके लक्ष्य की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत

इसका लक्ष्य 2030 तक देश में 100% साक्षरता हासिल कराना है। यह कार्यक्रम स्वयं सेवा पर आधारित है। इसमें शिक्षार्थियों और स्वयं सेवकों को जोड़ने के लिए उल्लास पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाता है। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल जागरूकता और व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण भी शामिल है। यदि आप नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में एक स्वयं सेवक के रूप में पढ़ाना चाहते हैं या शिक्षार्थी के रूप में पंजीकरण कराना चाहते हैं तो अपने जिला में शिक्षा विभाग से संपर्क कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए अब सखियों के साथ एक और गीत सुनते हैं।

इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। सखियों, आप सबसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अपनी सखी रिभा को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी लोकगीत में कजरी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रघुआ चंद्रमोहन से भोजपुरी में समाचार सुनी। संसद के दोनों सदन के कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामला समेत अलग अलग मुद्दा पर विपक्ष के हंगामा के वजह से रुकल रहल। लगातार हंगामा देख लोकसभा के कार्यवाही दिन भर खातिर स्थगित कर दिहल गई। एने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहले कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामला पर चर्चा खातिर पूरा तरह से तैयार भी आ। श्री रिजिजू कहले कि सरकार देश के लइकन के भविष्य के ध्यान में रख के सब पक्ष के शामिल करके सार्थक और अच्छा चर्चा चाहतिया। नीट परीक्षा पेपर लीक मामला के लेके छात्र आज पटना में विरोध प्रदर्शन कैले। पटना के गांधी मैदान से लोक भवन तक निकालल गई विरोध मार्च के दौरान कई जगहन पर पुलिस बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियन के रोके के कोशिश कैलस। इस दौरान पुलिस आ प्रदर्शनकारी लैकन के बीच झड़प भी भइल। प्रदर्शनकारियन पर काबू पावे खातिर पुलिस बल प्रयोग भी कैलस। विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पास हो गई। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले कि इस विधेयक के मकसद लइकन के राज्य में ही बढ़िया उच्च शिक्षा देवे के मौका उपलब्ध करावे के बाद। विधानसभा में शहीद जुबा सहनी वस्तुकला अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 के ध्वनिमत से पास कर दिहल गई। इस विधेयक के विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी पेश कैली। विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरा दिन आज 13 गो महत्वपूर्ण विधेयक पास कल गई। ये सब के बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 26 और ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 मुख्य बाटे। विधान परिषद में आज के कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के ना रहला पर सत्ता पक्ष के लोग द्वारा कई गई टीका टिप्पणी के लेके भारी बहस भइल। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत भइल। जानकारी के मुताबिक विधानसभा में काल पास भइल अलग अलग विधेयक पर आज चर्चा भी भइल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नया भवन में अलग अलग मुफ्त इलाज के सुविधा, जिला दवा भंडारण गृह और राज्य के अलग अलग अस्पताल में नया चिकित्सा सेवा के शुरुआत कैले। मुख्यमंत्री श्री चौधरी पटना में 46 करोड़ 26 लाख रुपया के लागत से बनल 3 गो गंगा घाट, भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट के लोकार्पण भी कैले। राज्य के अलग अलग हिस्सा में दक्षिण पश्चिम मानसून के असर से पानी बरसे के सिलसिला जारी बा। मौसम विभाग आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण भाग में कई जगहन पर भारी बरखा के अलर्ट जारी कैले बा। विभाग अपना अनुमान में कहले बा कि अगला 24 घंटा के दौरान पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के दक्षिण मध्य भाग में कई जगहन पर तेज हवा के साथ पानी बरसे।

के संभावना बा। इस दौरान कुछ जगहन पर ठनका गिरे के आशंका जतावल गई बा। एने पिछला 24 घंटा में मधेपुरा जिला के पुरैनी में सबसे ज्यादा 64.2 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कल गई। अरवल के सिविल सर्जन के साथे मारपीट के घटना के विरोध में सदर अस्पताल के ओपीडी सेवा आज पूरा तरह से ठप रहल। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के आह्वान पर डॉक्टर लोग ओपीडी सेवा के बहिष्कार कैलस। जहानाबाद जिला के कृषि कार्यालय में आज प्रखंड स्तरीय खाद्य निगरानी समिति के बैठक में अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि लोग हिस्सा लिहल। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार बतौलें कि 980 मेट्रिक टन यूरिया और 200 मेट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध बा। रोहतास जिला के धौठाट थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 पर एगो तेज रफ्तार कार के चपेट में आवला से नर्सिंग के पढ़ाई करे वाला छात्र के मौत हो गई, जबकि 2 लोग छात्र गंभीर रूप से घायल बने। सारण जिला के स्थानीय अदालत दहेज हत्या के जुड़ल एक मामला में दोषी पति देवर और सास के 7-7 साल के सजा सुनौले बा। कोर्ट इस सब पर 60,000 रुपया के जुर्माना भी लगैले बा। गोपालगंज जिला के बलथरी चेक पोस्ट पर पुलिस गाड़ी चेकिंग के दौरान एगो ट्रक से 477 लीटर देशी शराब बरामद कल गई। इस मामला में एगो तस्कर भी गिरफ्तार कल गई बा। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सभे श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा। देखी श्रोता सभे, आजकल मौसम बड़ा सुहावना बन रहा बा, आ बादल कहीं कहीं बरस भी जा रहा बा। ऐसन में रोपनी काम चारों तरफ बड़ा जोर शोर से चल रहा बा, किसान भाई लोग बड़ा खुश बड़ा। देखी श्रोता सभे, समय पर कोनो चीज़ अच्छा लगेला, हमनी के रोपनी के भी समय एकदम मने निकल रहा बा। ऐसन में हमनी के अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाता तो नहर के कुछ पानी भी मिल जाता, जौना से कि किसान भाई लोग के रोपनी बड़ा जोर शोर से चल रहा बा। तो हमनी के बात से चुके के ना चाहिए, रोपनी जितना जल्दी हो सके ओकरा के पूरा कर लेवे के चाहिए। काहे से कि आगे खेती आगे आगे पीछे खेती भागे जुगे कहल जाला, तो जौन आगे हो जाला वो तो खैर आगे रहबे करी। तो ऐसे देखी रोपनी के काम बड़ा ही तत्परता से आ बड़ा यथाशीघ्र हमनी के करे के कोशिश करे के चाहिए। आई आज के हमनी के कार्यक्रम के थोड़ा संक्षिप्त रूपरेखा देख ले जाओ। अभी हमनी के चर्चा के लिए भारत में लोक प्रशासक के भूमिका का बा, काहे से कल भारतीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई के मनावल जा रहा बा। एक बाद एगो लोकगीत के आनंद लिया जाए, आज के कलाकार और रीना सिन्हा एगो, एक बाद एगो वार्ता सुनल जाए। विषय रही सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकास खातिर आकाशवाणी के भूमिका का बा। आ एक जानकारी के तहत हमने जानल जी बरसाती रोग से बचाव बा जरूरी। फिर हमने के मौसम के पूर्वानुमान आ कुछ विशिष्ट सलाह भी जानल जी, आ संदेश भी बीच बीच में सुनल जाए। तो आई सबसे पहले हमने के ये जानल जाओ कि भारत में लोक प्रशासक के भूमिका का बा। तो देखिए भारतीय प्रसारण दिवस कल मनावल जा रहा बा, आ भारतीय प्रसारण दिवस हर साल हमनी के देश में 23 जुलाई के राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनावल जाला। ये दिन के मनावे के मुख्य उद्देश्य बा कि भारत में रेडियो प्रसारण के शुरुआत और जन जन तक एकर महत्व के याद करे के बा। एकर शुरुआत 23 जुलाई 1927 के भारत में पहला बार एगो निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC द्वारा बॉम्बे अब मुंबई स्टेशन से मने बन गिलवा से रेडियो प्रसारण शुरू भइले है। ई भारत के पहला संगठित रेडियो

प्रसारण रहे, जोना के उद्घाटन तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन कैले रहन। 1936 में ये सेवा के सरकार अपना अधीन लेलन और एकर नाम ऑल इंडिया रेडियो देलन, जोना के 1957 में आधिकारिक रूप से आकाशवाणी कहल जाए लगल। रेडियो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगन के एकजुट करे और आज़ादी के संदेश देवे में एगो बड़ा भूमिका निभोले रहे। श्रोता सभे, आई अब हमनी के एकरा माने बारे में विस्तृत जानकारी लिहल जाओ। देखी सबसे पहले तो रेडियो हमनी के 1923 में ही शुरू भइल, लेकिन एकर शुरुआत 1927 से ही मानल गई। भारत में प्रसारण के शुरुआत वास्तव में AIR के अस्तित्व में आवे से पहले 13 साल पहले भइल रहे, जौन बम्बे से भइल रेडियो क्लब के रूप में। 6 सितंबर 1990 के भारतीय संसद एकर नाम प्रसार भारती अधिनियम पारित किलन। हालांकि ई आधिकारिक नियम 15 सितंबर 1997 के प्रभावी रहल। देखी भारत में FM के भी शुरुआत भइल 1977 में भइल। 2001 में FM प्रसारण के निजीकरण के बाद एकर लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि भी भइल। लेकिन भारतीय प्रसारण के जनक लिवेन फील्डन 1936 में सरकार के सैंपल में रिपोर्ट अपन दिल रहन प्रसारण भारतीय प्रसारण कंपनी के माने विफलता के कारण का एक बारे में बतौल रहन, जौना के हमनी के भारतीय प्रसारण के जनक मानल जाला लियोनेल फील्डन। तो एक तरह से 8 जून 1936 से पहले भारत के रेडियो सेवा के इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जानल जाते रहे। 1936 के बाद नया नाम मिलल लेकर ऑल इंडिया रेडियो। तो देखी ई रहल हमनी के भारत के भारतीय प्रसारण दिवस के मनावे के मुख्य उद्देश्य आ मुख्य एक तरह से कहीं भूमिका। आई हमनी के प्रसारक के मुख्य भूमिका का बा हमनी के देश में, भारतीय जैसन हमनी के भारत जैसन देश में लोकतंत्र में लोक प्रसारक जैसे प्रसार भारती जौना में आकाशवाणी और दूरदर्शन शामिल बा की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण बा। ई जन जागरूकता, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और निष्पक्ष सूचना के एगो मुख्य माध्यम है। सटीक और निष्पक्ष सूचना देवेलन, सरकार के नीतियन, योजना और निर्णय के जानकारी बिना कोनो व्यवसायिक लाभ या सनसनीखेज के आम जनता तक पहुँचावे के इनकरे कर्तव्य बा लोक प्रसार के। लोक प्रसारक के इतने ना ही सांस्कृतिक और सामाजिक एकता बनाए में भी इनकर अहम भूमिका बा। विविध भाषा, कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार करके देश में एकता में विविधता के भावना के मजबूत करे में भी इनकर बहुत बड़ा महत्व बा। दूर दराज के इलाका तक पहुँचावे में भी भारत के हमनी के लोकतंत्र में लोक प्रसार के बहुत बड़ा भूमिका बा। देश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र तक जहाँ निजी मीडिया के पहुँच ना होके वहाँ तक लोक प्रसारक शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रसारित करेलन। शिक्षा और जागरूकता, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे ज्ञान दर्शन और सामाजिक मुद्दे जैसन कि स्वास्थ्य स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेलन। आपातकालीन जानकारी भी देवेलन। प्राकृतिक आपदा या संकट के समय लोगों तक त्वरित, प्रमाणिक और विश्वसनीय चेतावनी या राहत संबंधी जानकारी ई पहुँचावेलन लोक प्रसारक। तो इसे देखी भारत में लोक प्रसारक के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बा। एकरा के हमनी के भूल ना सकनी जा, एकर भूमिका बहुत बा जौना के हमनी के गिना ना सकनी जा। आई अब हमनी के एगो लोकगीत के आनंद लिया जाओ। आज के हमनी के कलाकार बनी रीना सिन्हा, तो यहाँ से सुनल जाओ बरसाती गीत। देखी भरोसी भारती बनी आज के कलाकार, कोनो कारण बस रीना सिन्हा के लोकगीत नहीं बजा पाओ, तो आई सुन लो भरोसी भारती के।

देखी कतना निमन गीत सुनैनी भरत सिंह भारती और साथी लोग। ए गीत खातिर यहाँ के धन्यवाद दे दिया जाओ। श्रोता सब है सही में गीत संगीत जौन बा हमनी के दुख दर्द दूर कर देला। सुनला के बाद एगो आनंद आ जाला। आ कजरी के तो पूछबे न करी, अब कजरी के सीजन भी आ रहल बा। तो देखी हमनी के आकाशवाणी जौन बा।

0: वो भूमिका कम नीखे कहें जहाँ ना पहुँचे कोनो बाणी ओजा पहुँचे आकाश बाणी कहल जाला। तो जैसे सुदूर क्षेत्र में सुदूर क्षेत्र के विकास में अगर देखल जाओ तो आकाशवाणी के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बा। आकाशवाणी बहुत जात जात रुआ खबर पहुँची, आकाशवाणी सेकेंड में मिनट में खबर पहुँचा दी। तो इस तरह से सुदूर क्षेत्र के विकास में आकाशवाणी के भूमिका बहुत बड़ा बा और बहुत महत्वपूर्ण बा। एकरे बारे में एकरे पर आधारित एगो वार्ता सुनल जाओ, आज के वार्ताकार बानी ददन पांडे। तो आई सुनल जाओ सुदूर क्षेत्र के विकास में आकाशवाणी की भूमिका।
1: आज का युग सूचना का युग है। आज जो जितना अधिक सूचना संपन्न है वह उतना ही विकसित है। सूचनाओं का विस्तार संचार माध्यमों के जरिए होता है। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न के बाद अब इंटरनेट भी एक प्रमुख संचार माध्यम बन गया है। आज विकसित समाज में उसे पिछड़ा माना जाता है जो इंटरनेट की दुनिया से नहीं जुड़ा है। विकास के दौर में संचार माध्यमों का विकास भी निरंतर हो रहा है। पत्र पत्रिकाओं का जनमानस पर अच्छा प्रभाव रहा है। लोग रोज़ रोज़ की घटनाओं से परिचित होने के लिए समाचार पत्रों के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें अनेक तरह की जानकारियां मिलती हैं। किंतु इसके लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों। शिक्षित व्यक्ति ही अखबार पढ़ सकता है। भारत जैसे देश में जहाँ अभी भी सभी को शिक्षित नहीं किया जा सका है और निरक्षरों की बड़ी संख्या है, उनके लिए पत्र पत्रिकाओं का कोई मतलब नहीं है। फिर पहुँच के लिहाज से पत्र पत्रिकाओं का प्रसार क्षेत्र शहरों और कस्बों तक सिमटा हुआ है और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी आज भी उससे वंचित है। यद्यपि आज़ादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ होने के बाद संचार माध्यमों में एक युगांतकारी शुरुआत हुई। एक छोटे से रेडियो सेट पर दूर दराज की आवाज़ सुनना जादुई चमत्कार जैसा था। वैज्ञानिक विकास के क्रम में फिर टेलीविज़न आया, जिसकी आज बड़ी धूम है। आज उससे आगे इंटरनेट का ज़माना आ गया है। विकास के दौर में नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। इंटरनेट आज भी आम आदमी के पहुंच से बाहर है। टेलीविज़न ने उससे आगे की दूरी तय की है और उसकी पहुंच बढ़ी है, किंतु सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी रेडियो यानी आकाशवाणी की पहुंच सबसे अधिक है। आकाशवाणी एक ऐसा माध्यम है जिसके संवाद सिर्फ सुने जाते हैं और वह हर आदमी उसके संदेश को सुन सकता है जो वधिर न हो। आकाशवाणी का श्रोता पढ़ा लिखा नहीं हो फिर भी वह उसका लाभ उठा सकता है। टेलीविज़न और इंटरनेट के लिए बिजली आवश्यक है, लेकिन रेडियो के लिए बिजली की भी ज़रूरत नहीं है। आज के महंगे युग में रेडियो सेट 100-200 रुपए में भी उपलब्ध हैं। अत्यंत सस्ता होने के कारण यह रेडियो सुदूर देहातों तक जहाँ बिजली नहीं पहुँची वहाँ भी अपनी पहुँच बना चुका है। जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, कहीं भी रहकर रेडियो का प्रसारण सुना जा सकता है। आज देश भर में 188 आकाशवाणी के स्टेशन हैं, जिससे पूरे देश में रेडियो के संदेश प्रसारित होते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां की 80% आबादी गांव में बसती है। कृषि के विकास के लिए नई वैज्ञानिक जानकारियां आकाशवाणी के कार्यक्रमों में नियमित दी जाती हैं। कीटनाशकों का प्रयोग कब और कैसे करना है, उर्वरकों का प्रयोग कब कब करना है, अच्छे किस्म के बीज कहाँ से प्राप्त होंगे, किस मौसम में किस चीज़ की खेती करना लाभदायक होगा, इस तरह की तमाम जानकारियाँ किसानों को नियमित आकाशवाणी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती हैं, जिससे सुदूर देहाती क्षेत्र के अनपढ़ किसान भी लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती और उत्पन्न अनाज के सही मूल्य कैसे और कहाँ मिलेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त कर किसान लाभान्वित होते हैं। कृषि संबंधी रेडियो कार्यक्रम अक्सर शाम को प्रसारित किया जाता है, जब किसान दिन भर के खेती के कार्य से मुक्त होकर घर लौटते हैं। किसान शाम को कृषि कार्यक्रम और समाचार जरूर सुनते हैं, जिसमें उन्हें प्रदेश भर की सूचना और मौसम की जानकारी

जानकारी मिल जाती है। देहात में लोग शाम को नियमित एक जगह बैठकर रेडियो प्रसारण सुनते हैं और फिर उस पर उनके बीच चर्चा होती है। बीच बीच में क्षेत्रीय भाषाओं के गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन भी होता है। आकाशवाणी की पहुंच सुदूर देहातों तक है, जहां अन्य कोई संचार माध्यम नहीं पहुँचते। आज सुदूर देहातों में भी वैज्ञानिक तरीके से खेती होने लगी है। कम सिंचाई में अधिक फसल लेने की विधि से अनपढ़ किसान भी लाभ उठा रहे हैं और यही कारण है कि आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। किसानों को लाभप्रद खेती के लिए शिक्षित करने में आकाशवाणी ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। देहातों का एकमात्र संचार माध्यम होने के कारण आकाशवाणी द्वारा प्रसारित सूचनाएँ दैववाणी के रूप में सत्य मानी जाती हैं। लोग आकाशवाणी द्वारा घोषित समय से अपनी घड़ी का समय मिलाते हैं। मौसम के पूर्वानुमान से ग्रामीण काफ़ी लाभान्वित होते हैं। बाढ़ जैसी विपदा में भी रेडियो ही एकमात्र ऐसा माध्यम होता है जो पानी के घटने या बढ़ने की जानकारी लोगों को देता और बचाव कार्य से अवगत कराता है। बाढ़ जैसी विपदा में बेघर होकर लोग रेडियो के ही सहारे अगले दिन होने वाले राहत कार्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं और आगे बचाव की तैयारी करते हैं। किसी विपदा में जब अन्य संचार माध्यम नष्ट हो जाते हैं, आकाशवाणी की सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रहती हैं और लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराती हैं। आकाशवाणी के समाचार के अलावे मनोरंजन के कार्यक्रम भी देहातों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। शाम को प्रसारित होने वाले समाचार लोग नियमित सुनते हैं और देश दुनिया के साथ अपने जिले जवार की घटनाओं से वाकिफ हो जाते हैं। देहातों में आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना दैनिक नियम की तरह होता है, क्योंकि वह काफ़ी जानकारीपूर्ण और उपयोगी होता है। आकाशवाणी की महत्ता आज टेलीविज़न और इंटरनेट के पदार्पण के बाद भी पूर्ववत बरकरार है। खासकर देहातों में तो आकाशवाणी आज भी अपना एकाधिकार बनाए हुए है। संपन्न ग्रामीण देहातों में भी टेलीविज़न रखे हुए हैं, किंतु बिजली के अभाव में वह कार्य नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में एकदम सस्ता और आसानी से उपलब्ध रेडियो ही सुदूर क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए है। कृषि के अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के जरिए पशुपालकों और मत्स्य पालकों को दिशा निर्देश दिए हैं। सरकार के जितने भी जनउपयोगी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका अग्रणी रही है। बागवानी, फूल और फल की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं, इसके प्रचार के लिए आकाशवाणी ने समय समय पर विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण कर लोगों को लाभ पहुंचाया है। मिट्टी की जांच से लेकर रासायनिक खादों के खेती पर होने वाले कुप्रभाव से आकाशवाणी के कार्यक्रम किसानों को सचेत करते रहते हैं। जैविक खाद के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के उपाय पर भी आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और किसान गांव में बसते हैं, जहां आकाशवाणी की पहुंच है। इसलिए आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आए बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, इंदिरा आवास योजना, अल्पसंख्यक कल्याण, नारी सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी के समाचार और कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसका लाभ लोग उठा रहे हैं। लोक अदालत और उनसे होने वाले लाभ के अलावे समसामयिक विषयों पर वार्ता के माध्यम से महत्वपूर्ण विचार लोगों के बीच प्रसारित होते हैं। विशेषज्ञों के वार्ता और साक्षात्कार के माध्यम से भी आकाशवाणी ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित कर रही है। FM स्टेशनों के माध्यम से होने वाले क्षेत्रीय कार्यक्रम लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है और इसका लाभ ग्रामीण लोग अधिक उठा रहे हैं। सासाराम में भी FM चैनल का एक रेडियो स्टेशन है, जिसका प्रसारण क्षेत्र रोहतास और कैमूर जिला है। इसका उद्घाटन 2 मई 1991 में हुआ था। इस स्टेशन में ध्वन्यांकन सुविधा युक्त

0: बहुउद्देशीय स्टूडियो है और हवा में इसका प्रसारण क्षमता 55 किलोमीटर है। 3.8 एकड़ में यह स्टेशन फैला है, जिसमें 292.27 वर्ग मीटर में भवन बना हुआ है। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर इसके प्रसारण सुने जा सकते हैं। क्षेत्रीय जरूरतों के हिसाब से प्रसारित इस स्टेशन के कार्यक्रम काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं और प्रसारित कार्यक्रमों के संबंध में श्रोताओं की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे पता चलता है कि इसके कार्यक्रमों का दायरा कितना विशाल है और उसका लाभ कितना बड़ा वर्ग उठा रहा है। 100 मीटर ऊंचा एंटीना वाले इस स्टेशन के कार्यक्रम गांव देहात से लेकर कैमूर पर्वत के ऊपर और जंगलों में भी सुना जाता है। भारत जैसे विकासशील और बिहार जैसे पिछड़े तथा नदियों, पहाड़ों और जंगलों से घिरे राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी आकाशवाणी ही सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है, जो बिना बाधा के अपने कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है और उसे जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो रेडियो से परिचित न हो। रेडियो आज किसी के लिए दुर्लभ नहीं है, यही कारण है कि उसके कार्यक्रमों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके लोकप्रिय कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। फसलों में वृद्धि और किसानों की हालत में सुधार में कृषि पर आधारित कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों के विकास में आकाशवाणी की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच ही कारगर है। आकाशवाणी के प्रसारण क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार सुदूर क्षेत्रों तक होना ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण है। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी ने अपनी जन पक्षधरता की भूमिका का बखूबी निर्वाह भी किया है।
1: श्रोता सब कितना निमन निमन जानकारी ददन पांडे जी देनी। सुदूरवर्ती क्षेत्र के विकास में आकाशवाणी की भूमिका बड़ा महत्वपूर्ण बा, सही में महत्वपूर्ण बा। तो यह जानकारी खातिर ददन पांडे जी के हमनी के धन्यवाद दे दिया जाओ। आई कुछ संदेश सुन लो, फिर आगे चर्चा कर ली। देखें श्रोता सब, अभी हमने की एक जानकारी के तहत बरसाती रोग से बचाव है जरूरी, एकरा बारे में जानल जाओ। श्रोता सब, बरसात के मौसम में हर जगह कहीं ना कहीं पानी जमा हो जाला, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस और मच्छर बहुत तेजी से पनपे लागलन। ए दौरान पानी और भोजन से गंभीर संक्रमण जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और पाचन से जुड़ल समस्या होके के खतरा काफ़ी बढ़ जाला। जमा पानी से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसन बीमारी होखबे करला। दूषित खाना खाए से भी फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड और डायरिया, दस्त जैसन बीमारी भी होला। जैसे कि अचानक मने हमनी के मौसम बदलता, एकरा में हमनी के प्रतिरोधक क्षमता घट जाला, जौना से जल्दी बीमार हो जानी जा। आ नमी के कारण फंगल इन्फेक्शन, खुजली और अस्थमा जैसन सांस के बीमारी बढ़ जाला। एकरा बचाव खातिर हमनी के हमेशा उबलल पानी या शुद्ध पानी पियल जाओ। घर के आसपास पानी न जमा होके दिया जाओ। कूलर में पानी हमेशा बदलत रह जाओ, ताकि मच्छर के न पन पसंद। सड़क किनारे बिके वाला खाद्य पदार्थ और जौन काटल फल बा ओकरा से परहेज कर जाओ। आपन रोग रोधी क्षमता के मजबूत करे खातिर मौसमी फल और हरी सब्जी खाई जाओ, पर्याप्त नींद लिया जाओ, तब जाके बरसाती रोग सब के बच सकत हन जा। आई अब संदेश सुन लिया जाओ।
2: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता और सुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार।
2: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
3: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइला आसान।
2: घर, दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
3: डायल करें 8700014242।
2: नंबर फिर लिखी 8700014242।

0: 0001-4242।
1: देखिए श्रोता सब है, आई अब हम मौसम के कुछ बारे में जान लिया जा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घना बादल छाइले रही और जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले और हल्का से मध्यम वर्षा होके का अनुमान बा। अधिकतम तापमान हमने 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 80 से 90% और दोपहर में 50 से 55 से 60% रहे की संभावना। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा पूर्वा चले के अनुमान बा। कल जौन बा वर्षा हमनी के 14 mm होके के संभावना बा। अधिकतम तापमान हमनी के 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 45% रहे के संभावना बा। हवा के गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेगा। आंधी और 20वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर परिसर से प्राप्त शिलालेख जो वर्तमान में नेशनल म्यूजियम कोलकाता में संरक्षित है, उसके अध्ययन के पश्चात विभिन्न विद्वानों ने वर्तमान मंदिर को 26वीं शताब्दी का
2: मनु भाई की तरफ से नमस्कार।
1: वर्ष 2003 में मंदिर मिनी 100 अन्य पुरातात्विक

0: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग देही ओके बुलंदियन के पांख।
1: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
0: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
1: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
0: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
1: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम पारामेडिकल है पारस।
1: प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुधवार का दिन है और राजेश आ गया कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस लेकर। इस कार्यक्रम की जैसे आप सबों को आदत पड़ गई है, मुझे भी आदत पड़ गई है। बुधवार अभी अभी तो गया था और अभी अभी फिर आ गया और हमें इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, क्योंकि करोड़ों युवा साथियों और उनके माता पिता से बात करने का मौका जो मिलता है, बताने का मौका मिलता है कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़ जाइए। आज आगे कुछ भी बोलूं उससे पहले नीट में जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की है उनको कोटि कोटि बधाई, बहुत बहुत बधाई आप सबों को जिन्होंने नीट की परीक्षा क्वालिफाई कर ली है और अब इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग शुरू हो और अपना मन पसंद हॉस्पिटल कॉलेज मिल जाए जहां से पढ़ाई की जाए और समाज में एक मुकम्मल डॉक्टर बनकर निकलें और समाज की सेवा करें, नाम शोहरत पैसा सब कुछ मिल जाए। डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हमारे साथ बैठे हैं। हाँ, चलिए सबसे पहले हम उनको बुलाते हैं कार्यक्रम में और स्वागत करते हुए कहते हैं कि जिनका हो गया नीट में उनकी भी जय जय, जिनका नहीं हुआ नीट में उनकी भी जय जय। डॉक्टर साहब,
3: अच्छा प्रयास किया उसका सफलता अच्छी रही,
4: लेकिन बहुत सारे लोग निराश भी हैं, उनसे क्या कहना चाहिएगा?
3: देखिए, निराशा का तो कोई मतलब नहीं होता है, यही मैं कहूँगा कि सफलता की तैयारी जो होती है वो अच्छी तरह से नहीं हुए इसलिए असफल हुए, थोड़ी जहाँ कमियां दिखी आपको उसको फिर से मेंटेन कीजिए। और एक बात और कह दूं राजेश
4: जी
3: कि हमें आगे वो ले जाता है जो हम नहीं कर पाए थे, जो कर पाए वहाँ तक, जो क्वेश्चन को हल कर पाए वो तो हल हो ही गया, जो क्वेश्चन को हमने हर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए और किसी कारण से हम उसको समझ नहीं पाए थे तो वो हमको आगे ले जाएगा, उस पर केंद्रित करना चाहिए।
2: मतलब सोचो, विचार करो कि कहाँ गड़बड़ी हुई है और उस पर ध्यान केंद्रित करो। जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात हम यहाँ पूछना चाहते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत लंबी होती है ना, होती है, लेकिन जो लोग 3-4 साल से लगे हैं और कुछ नहीं हो रहा है और स्कोरिंग भी इतनी अच्छी नहीं हो रही है, तो क्या उन्हें दूसरा ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए?
3: बिल्कुल बिल्कुल, वैकल्पिक रास्ता भी चुनना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा बहुत सारे आ गए हैं जिसमें पैरामेडिकल का शिक्षा है, नर्सिंग का शिक्षा है, फिजियोथेरेपी का शिक्षा है
4: जी।
3: तो ये सब शिक्षा है जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए, केंद्रित हो जाए।
2: बिल्कुल सही है कि हम जो सोचते हैं कभी कभी ऐसा नहीं होता। क्या हुआ कि नीट में आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है ना कि क्वालिफाई करके भी अड़चन खड़ा हो जाता है और आपका दाखिला नहीं हो पाता, आप जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता। तो इससे निराशा नहीं होनी चाहिए, आपको एक दूसरा ऑप्शन खोजना चाहिए और इसी स्थिति में हमारा ये कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस आपके लिए बहुत सारे आयाम खोलता है, दिखाता है कि भैया आप यहाँ यहाँ भी अपना करियर बना सकते हो। जैसे पैरामेडिकल के क्षेत्र हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रीम हैं, फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, इसके लैब टेक्नीशियन है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसके अलावे ANM GNM का कोर्स है, इसके अलावे जो आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो नर्सिंग में, OT में, कहीं भी आप BSc कर सकते हैं, अपने लिए रास्ता तलाश सकते हैं। और हेल्थ सेक्टर में जो समाज सेवा की भावना से आप पढ़ना चाहते हैं ना, उसको पूरा कर सकते हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस और मैं हूँ आपका अपना राजेश, डॉक्टर NP प्रियदर्शी भी हमारे साथ बने रहे हैं और ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, जहाँ का नंबर है नोट कर लें, खास करके वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट में क्वालिफाई किया है, आप पता कीजिए आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है और जो नहीं कर पाए हैं तो उनको तो शर्तिया ध्यान दे

0: ना चाहिए प्रोफेशनल पढ़ाई, टेक्निकल पढ़ाई पर। हेल्थ सेक्टर में तो टेक्निकल पढ़ाई की कोई कमी ही नहीं है। नोट कीजिए नंबर 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888, 9155558888। और अब डॉक्टर साहब क्या रास्ते हो सकते हैं
1: जी कि अब इस बार जो जिसको हम लोग बहुत बच्चे लोग अवॉइड करते थे
2: क्या,
1: और ये फिजियोथेरेपी का कोर्स को
2: हाँ।
1: सरकार ने मान्यता दे दी है
2: हाँ।
1: और ये मेडिकल मतलब कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है।
2: क्या बात है,
1: कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है
2: हाँ।
1: और अभी जो है इसके तरफ बच्चों का रुझान बहुत नहीं है
2: हाँ।
1: तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे एलोपैथी था, MBBS हुआ, BMS हुआ, BHMS हुआ, BUMS हुआ, बैचलर ऑफ योगा हुआ, उसी तरह से ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया है। सरकार ने निम्स इसको

0: और अब डॉक्टर साहब क्या रास्ते हो सकते हैं
1: जी
2: कि अब इस बार जो जिसको हम लोग बहुत बच्चे लोग अवॉइड करते थे
1: क्या
2: और ये फिजियोथेरेपी का कोर्स को
1: हाँ।
2: सरकार ने मान्यता दे दी है
1: हाँ।
2: और ये मेडिकल मतलब कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है।
1: क्या बात है,
2: कंप्लीट मेडिकल फील्ड हो गया है
1: हाँ।
2: और अभी जो है इसके तरफ बच्चों का रुझान बहुत नहीं है
1: हाँ।
2: तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जैसे एलोपैथी था, MBBS हुआ, BMS हुआ, BHMS हुआ, BUMS हुआ, बैचलर ऑफ योगा हुआ, उसी तरह से ये बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया है। सरकार ने निम्स इसको नोटिफिकेशन निकाल दिया है, अब ये उसी तरह का विंग हो जाएंगे, उसी तरह का रहेंगे। तो इसलिए मैं बच्चों को, उन बच्चों को कहूंगा कि जिसने मेडिकल फील्ड चुना था, किसी कारण से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो इस फील्ड को ऑप्ट कीजिए। बहुत अच्छा फील्ड है और बहुत अच्छा स्कोप है, इससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब एक बात बताइए, चर्चा सुनी थी कहीं

0: डॉक्टर रहती, फीमेल डॉक्टर रहती है, तो उसके पास सभी बंधन मुक्त हो जाता है और वो कर फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा से करा सकती है।
1: तो ठीक तो है, अगर मान लीजिए लड़के ने किया, आगे चल के फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट लड़की से शादी कर ले तो दोनों कम्बाइंड अपना अपना इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हो जाएगा, व्यवसाय शुरू हो जाएगा।
0: आपका भी सोच सही है,
1: जीवन में हंसना भी चाहिए, हंसना भी चाहिए। एक तो नीट का रिजल्ट आया है, जिनका हो गया वो बल्ले बल्ले, जिनका नहीं हुआ है बेचारे परेशान है। और जो नीट में आके किसी कारण से, हाँ, फिजियोथेरेपी बहुत एक अच्छा करियर हो सकता है। डॉक्टर साहब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जिनका MBBS में नहीं हुआ तो फिजियोथेरेपी किसी से कम नहीं है, ऑप्ट किया जाए। अब एक सवाल ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब, और पूरा बिहार सुन रहा है, उन बच्चों के लिए, उन युवा साथियों के लिए बताइएगा कि जो नीट में नहीं कर पाए या किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए, आपके यहाँ श्रीराज इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल में आपके यहाँ है फिजियोथेरेपी का कोर्स,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उनके लिए क्या सुविधाएं आप दीजिएगा? अगर वो आके दिखाएं कि मैं नीट क्वालिफाई हूँ लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ या पा रहा हूँ एडमिशन,
0: अगले बार भी मैं कहा था, इस बार भी मैं कहता हूँ कि नीट क्वालिफाई जो बच्चे रहते हैं,
1: हाँ,
0: जो नीट क्वालिफाई बच्चे रहते हैं, जिसको हम 10% की अपने फी में हमेशा कम कर देते हैं, और इस बार भी मैंने वही सोचा है कि 10% अपने फी में जो नीट क्वालिफाई रहेंगे उनको 10% हम अपने फी में कम करते हैं
1: जी।
0: और हमेशा से रहा, इस बार भी ऐसा ही रहेगा।
1: अच्छा, आपके यहाँ तो कुछ नीट क्वालिफाइड लोग आके पढ़ाई भी कर रहे हैं, पिछले और उसके पिछले साल वाले लोग
0: सभी बैच में है,
1: हाँ।
0: बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे। इस बार तो एक बच्ची ऐसी ली है जिसको 450 नंबर है
1: जी।
0: लेकिन उसको कहा कि शायद सर नहीं होगा, अगले साल मैं चुक गया था, इस बार नहीं चुकूंगा,
1: हाँ।
0: और ले चुका है, एडमिशन ले चुका है।
1: सोचिए, तो चिंता की कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहब की बात को मानिए, और डॉक्टर साहब से ही कहते हैं अपना नंबर बताने के लिए कि आप उस पर बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सीधे सीधे आप अपना खुद का दोनों नंबर आराम से बताइए।
0: अच्छा ठीक है भाई, 9162413233 एक नंबर ये है,
1: रिपीट कीजिए इसको।
0: इसको रिपीट करें,
1: हाँ, मिलाएगा कैसे लोग,
0: 9162413233 ये नंबर हुआ। दूसरा नंबर है 9155558888
1: 9155558888 ये नंबर है। देखिए, जहाँ रास्ता खोजिएगा रास्ता मिल जाएगा, एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। डॉक्टर साहब का ये नंबर आपका रास्ता खोलेगा, एक बार बात कीजिए। घर में बैठने से, निराशा के चादर को ओढ़ने से कुछ भी नहीं होता है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और जिंदगी का मजा लीजिए। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारा कुछ करना है जिंदगी में, है ना? क्या गलत बोल रहे हैं डॉक्टर?
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बच्चों के साथ साथ मैं कुछ उन गार्जियन को भी कहूंगा कि बच्चों पर दबाव ना डाले,
1: हाँ।
0: और इस तरह के कोर्स अगर आप करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको मतलब मानसिक रूप से प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि ये कोर्स नहीं करता, ये कोर्स करता। जो कोर्स करना चाहता है उसके लिए बेहतर है और भविष्य में वही काम देगा।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे स्टूडियो में, इस कार्यक्रम के अंदर ढेर सारी बातें की। पूरा बिहार पॉपुलेशन के बीच हमारा ये कार्यक्रम पहुंच रहा है, जबकि झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल में, हर जगह ये कार्यक्रम पॉपुलर है। और सिर्फ राजेश हवा में बात नहीं कर रहे, आपके फोन कॉल्स आते हैं। बताइए, नाम बता दें, आज वक्त नहीं, अगले एपिसोड में पूछिएगा, हम बता देंगे किसका किसका फोन कॉल आता है ना? चलते हैं, हेल्थ सेक्टर में करियर तलाशिए, आपके लिए एकदम कंफर्टेबल जोन है, कहीं से भी कोई चिंता की बात नहीं। हम तो कहते हैं पढ़ते पढ़ते, हाँ, पढ़ते पढ़ते रोजगार मिल सकता है, आप कमाने भी लग सकते हैं। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन टेंशन में मत रहिए, टेंशन ही आने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हैं ना? एकदम हंसते खेलते खूब खाइए, खूब मजा कीजिए, पिक्चरों देख लीजिए, लेकिन करियर के बारे में सिंसियर रहिए, नहीं तो किसी के माता पिता ने जीवन भर साथ नहीं दिया है। चले, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।

पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपको सुनाएंगे स्थानीय गतिविधियां, इसकी जानकारी देंगे। डीएम ने सुनी समस्याएं, 66 पंचायतों में लगा सहयोग शिविर। सासाराम में मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों के चयनित 66 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। दावत प्रखंड के जमसोना पंचायत सरकार भवन में आयोजित शिविर में जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। सदर अस्पताल परिसर स्थित मॉडल अस्पताल में 24 घंटे आईसीयू सेवा के बेहतर संचालन के लिए सिविल सर्जन कार्यालय ने 12 स्टाफ नर्सों की प्रतिनियुक्ति की है। सोमवार को ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के बाद आईसीयू को पूरी क्षमता से संचालित करने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्रतिनियुक्त किए गए कर्मियों में अकोड़ीगोला, डेहरी, दिनारा, काराकट, कोचस और नासरीगंज प्रखंडों के स्टाफ नर्स शामिल हैं। जिला उपभोक्ता फोरम ने किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कॉरपोरेशन बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कृष्ण कुमार और बैंक के जोनल महाप्रबंधक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर परिवादी किसान को मुआवजा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं होने पर 9% वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

वाटरफॉल परिसर में चला स्वच्छता अभियान। रोहतास जिले के प्रसिद्ध कशिश वाटरफॉल परिसर में मंगलवार को युवाओं ने स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यटकों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। बरसात के मौसम में वाटरफॉल की प्राकृतिक सुंदरता देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों द्वारा प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स व बिस्कुट के रैपर तथा अन्य कचरा खुले में छोड़ने से परिसर में गंदगी फैल रही है। जिले की सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए जल संसाधन विभाग ने मुख्य पश्चिमी नहर की लाइनिंग के लिए 750 करोड़ रुपए के महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। योजना को विश्व बैंक से प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। जिले में हर माह लगभग 120 नाबालिग बच्चियों के घर से भागने के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ रही इस प्रवृत्ति को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर है। एसपी रोशन कुमार ने अभिभावकों से अपनी बच्चियों पर विशेष नजर रखने व किसी भी संदिग्ध गतिविधियां या परेशानी की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है। कहा, बच्ची को बहलाने फुसलाने की कोशिश करें, पुलिस को सूचित करें। सासाराम में 100 दिवसीय टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को नवनिर्मित मॉडल सदर अस्पताल परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र, पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार, उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडे तथा सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने 500 टीवी मरीजों के बीच पौष्टिक आहार युक्त फूड बास्केट का वितरण किया।

इसी गाने के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त संगीता को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे, मेरा वोटर आई कार्ड घर पर रह गया, अब क्या मैं मतदान नहीं कर पाऊंगा?
2: क्यों नहीं, पहचान के और भी कई मान्य विकल्प है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त बैंक या डाकघर पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, पैन कार्ड, सेवा पहचान पत्र, एमपीआर स्मार्ट कार्ड, सांसद, विधायक, एमएलसी की आधिकारिक पहचान पत्र, आयुष्मान भारत या श्रम मंत्रालय योजनाओं के स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड तथा यूडीआईडी कार्ड दिखाकर भी मतदान किया जा सकता है।
1: मतलब वोट जरूर दे सकता हूँ?
3: बिल्कुल, पहचान पत्र की वजह से आपका वोट नहीं छूटना चाहिए।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में मतदान तिथि है 30 जुलाई 2026। मतदान के दिन मान्य पहचान दस्तावेज साथ रखें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
5: कोई मतदाता ना छूटे।
6: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
7: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
8: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
9: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
8: आज ही केन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।
10: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे की स्थिति बने रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मानसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते हैं तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आज राजधानी पटना में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से वामपंथी दलों के छात्र संगठन शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने आज पटना के गांधी मैदान से लोक भवन तक विरोध मार्च निकाला। मार्च के दौरान कई स्थानों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झड़पें भी हुईं। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बाद प्रदर्शनकारी लोक भवन और लोक सेवक आवास तक बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस प्रयास को विफल कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर नीट परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बिहार के छात्रों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। छात्रों का कहना है कि पेपर लीक का विरोध सही है, लेकिन विरोध के नाम पर हिंसा और राजनीति कतई ठीक नहीं है।
3: नीट का पेपर लीक हो गया, अगर ये उस मामले में है तो मैं उसका समर्थन करूंगी, लेकिन

0: जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ।
1: हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ।
2: अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे के पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। इससे पहले ये पूरे एजुकेशन रिलेटेड था, ये एकदम सही था, लेकिन अब धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा।
3: विधानमंडल के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 प्रमुख हैं। विधानसभा में बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य छात्रों को राज्य में ही बेहतर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है।
4: बिहार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से लाखों बच्चे दूसरे राज्य में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। मैंने कहा भी है कि एक यूनिवर्सिटी के हमसे उनके संस्थापक मिले, उन्होंने बताया कि जालंधर में लवली यूनिवर्सिटी में 11,000 बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं, अमेठी में लगभग 30,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इन्वेस्टमेंट हो, बिहार में लोग आकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोले और बिहार के बच्चों को बिहार में रहकर पढ़ने का अवसर मिले, इसलिए इसमें संशोधन लाने का काम किया गया।
3: विधानसभा ने शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2026 को भी ध्वनिमत से पारित कर दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने सदन में विधेयक पेश करते हुए इसके प्रावधानों से अवगत कराया। विधानसभा में आज बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य पंचायतों को सशक्त बनाना और उनकी आय में वृद्धि करना है। श्री प्रकाश ने बताया कि विधेयक के तहत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में होर्डिंग और बैनर जैसे विज्ञापनों पर शुल्क लगाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के लिए नक्शा स्वीकृत कराने को अनिवार्य करने का अधिकार दिया गया है।
5: ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज हम लोग देख रहे होंगे शहर के ही भांति बड़े बड़े अपार्टमेंट का निर्माण हो रहा है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है। आज के समय में जो भी निर्माण हो रहा है अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है, ये सभी चीजें हो सके इसके लिए एक प्राधिकरण की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है पंचायतों के क्षेत्रों में उनसे संबंधित जो भी नक्शा है उसको पास कराने की व्यवस्था हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था हो।
3: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने सदस्यों की सहमति से इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित किए जाने की घोषणा की।
6: प्रश्न है कि बिहार पंचायत असम विधेयक 2026 स्वीकृत हो, जिसके पक्ष में हाँ कहें जो भी पक्ष में ना कहें, मैं समझता हूँ पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, बिहार पंचायत असम विधेयक 2026 स्वीकृत हुआ।
3: इससे पूर्व प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सदन में कम बारिश से किसानों की हो रही समस्या का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और सिंचाई के लिए 12 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जरूरत होने पर किसानों को डीजल अनुदान भी दिया जाएगा।
4: माननीय सदस्यों की चिंता है कि कम बारिश हुई है और लोगों को दिक्कत हो रही है, हम लोग जो किसान भाई हैं, इसलिए हमने दो तरह की व्यवस्था सरकार की है। एक तो 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक पर्याप्त बिजली हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि सभी जगह किसानों को उनके खेत में पानी पहुंचाने का काम कर सके। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है, जिस जगह भी सुखाड़ की स्थिति होगी वहां डीजल अनुदान देने का काम सरकार तुरंत करेगी।
3: विधान परिषद में आज की कार्यवाही के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की टीका टिप्पणी को लेकर जोरदार बहस हुई। बाद में सभापति अवधेश नारायण सिंह के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आज की कार्यवाही में विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात।

0: संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण समेत राज्य के उत्तर पूर्व और उत्तर दक्षिण भागों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 23 जुलाई को राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान मधेपुरा जिले के पुरौनी में सबसे अधिक 64.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि नदी के तटबंधों पर भारी दबाव को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल स्थित कोसी बराज से आज शाम 4 बजे तक 1,73,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जबकि नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र बराह से 1,11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नदी के जलस्तर में कमी के बावजूद तटबंधों पर भारी दबाव है। इधर मौसम विभाग से मिल रही भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर भी प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सावन कुमार ने पूर्वी कोसी तटबंध और अस्पड़ों का निरीक्षण किया। उन्होंने अभियंताओं और विभागीय कर्मियों को तटबंधों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
1: कटिहार जिले में लगातार बारिश के कारण महानंदा और अन्य नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे कई इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
4: जिले में लगातार बारिश के कारण गंगा, महानंदा, कोसी और बरंडी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार महानंदा नदी के जलस्तर में कई स्थानों पर 55 सेंटीमीटर तक की वृद्धि दर्ज की गई है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण तटीय क्षेत्रों में कटाव से लोगों में भय का वातावरण बन गया है। प्रशासन ने कटाव प्रभावित इलाकों में बाढ़ निरोधात्मक कार्य तेज कर दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के नए भवन में विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं, जिला औषधि भंडार गृह तथा राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में नई चिकित्सा सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने पटना में 46,26,00,000 रूपये की लागत से नवनिर्मित 3 गंगा घाट, भद्र घाट, नौजर घाट और महावीर घाट का लोकार्पण भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के पास मार्च पहुंचने पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोगों को हल्की चोट लगी है। नालंदा विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के बीच आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित सतत विकास, प्रौद्योगिकी प्रसार, कौशल विकास और वैज्ञानिक जनसंपर्क को बढ़ावा देना है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और CSIR के महानिदेशक डॉ एन कलेसेल्वी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की पूर्व संध्या पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने रेडियो के प्रसारण को डिजिटल युग में भी प्रासंगिक बताया है। उन्होंने कहा कि रेडियो प्रसारण समाचार और मनोरंजन के स्रोत होने के साथ ही सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार हैं। राज्य के दो तेज गेंदबाजों वासुदेव प्रसाद और रिंकल तिवारी का चयन MRF पेस फाउंडेशन के लिए हुआ है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों उदीयमान खिलाड़ियों को

0: ऑस्ट्रेलिया में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एमआरएफ कैंप के लिए देश के चुने गए दोनों खिलाड़ी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। अरवल के सिविल सर्जन के साथ मारपीट की घटना के विरोध में सदर अस्पताल की ओपीडी सेवा आज पूरी तरह ठप रही। बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ भाषा के आह्वान पर चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया। जहानाबाद जिले के कृषि कार्यालय में आज प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रखंड कृषि पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि 980 मीट्रिक टन यूरिया और 200 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध है। रोहतास जिले के धौटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक नर्सिंग छात्र की मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक मामले को लेकर पटना में छात्र संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, सुरक्षा बलों ने लोक भवन घेराव के प्रयास को किया नाकाम। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 13 विधेयक विधानसभा में पारित। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार के छात्रों को राज्य में ही मिलेगा बेहतर उच्च शिक्षा का अवसर। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पश्चिम चंपारण में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अरे वाह, यहाँ ठंडा पानी है
2: और देखिए साफ सुथरा शौचालय भी।
3: मेरे लिए रैंप और व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। वाह,
4: दिशा सूचक इतने स्पष्ट हैं कि केंद्र ढूंढना बिल्कुल आसान हो गया। हेल्प डेस्क पर हर जानकारी तुरंत मिल रही है।
5: वाह, मोबाइल रखने की व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, शाम तक रोशनी की सुविधा, सब कुछ है।
6: और ये पोल वॉलंटियर्स कितना सहयोग कर रहे हैं।
4: 182 बांकीपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2026 में आपका मतदान अनुभव होगा सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर भूतल पर मतदान केंद्र, ठंडी पेयजल, स्वच्छ शौचालय, स्पष्ट संकेतक, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, प्रकाश व्यवस्था, छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र, पूल वॉलंटियर्स और मोबाइल रखने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। 30 जुलाई 2026 को घर से निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
7: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी।
8: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्निकांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदीश कुमार तिवारी।
9: नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही जिले में हो रही वर्षा से खेतों में पर्याप्त पानी पहुंचने लगा है, जिससे धान की रुपाई में तेजी आई है और किसानों को सिंचाई की समस्या से काफी राहत मिली है। जिले में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सदर, बरौली और बैकुंठ प्रखंड में सारण तटबंध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 9 प्रखंडों

0: में डिग्री कॉलेज स्थापित होने के बाद अब विद्यार्थियों को स्नातक की पढ़ाई के लिए दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सिधवलिया डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार का लक्ष्य हर छात्र छात्रा तक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है।
1: इसी महीने TRE-4 की अधियाचना हम भेजने वाले हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण 10 तारीख से शुरू हो गए हैं प्रक्रिया, क्योंकि कई प्रक्रिया को पार करके उन्हें ट्रांसफर लेना है और उसी के लिए रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है और 1 सप्ताह का उनके उन्हें टाइम मिलेगा, वो भी किसी आज से कल तक घोषित होगी। और जब टाइम रहेगा तो इस शिक्षा पोर्टल पर वो अपना आवेदन दर्ज कराएंगे और उसके बाद वो स्थानांतरण पाएंगे।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति के तहत प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण निकटवर्ती पंचायत और पुरुष शिक्षकों का निकटवर्ती प्रखंड में किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा चुके हैं और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरण किया जाएगा। जिले के प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा ने सिमराव पंचायत में आयोजित शिविर सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने आम लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से मामलों के निष्पादन के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने 20 सूत्री समिति के सदस्यों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित आवेदनों, विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सभी मामलों में शीघ्र निष्पादन पर जोर दिया गया।
2: पंचायत में जाकर के निरीक्षण भी किए और सारे आवेदनों पर हर विभाग बार मॉनिटरिंग किया गया, समीक्षा की गई और बेहतर करने का निर्देश भी दिया गया।
0: जिलाधिकारी समीर सौरभ ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निश्चय मित्र के रूप में सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों का दौरा किया। उन्होंने टीबी मरीजों के घर पहुंचकर उनसे उन्हें पोषण किट का वितरण किया, नियमित दवा के साथ संतुलित एवं पौष्टिक भोजन लेने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने समाज के लोगों से भी टीबी मरीजों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की और कहा कि सामुदायिक सहभागिता से ही टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। जिले के सभी 14 प्रखंडों में सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने वर्चुअल माध्यम से इन विद्यालयों का उद्घाटन किया। इन मॉडल स्कूलों में आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और चरणबद्ध तरीके से शिक्षकों की भी तैनाती की जा रही है। और बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम में जिले के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। सदर प्रखंड के धीरज कुमार और हथुआ के दीपक राय का चयन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है, जबकि शिखा सिंह का चयन कोषागार सेवा में हुआ है। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
3: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है विधानमंडल की कार्यवाही की समीक्षा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विधानसभा में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के कई विधायकों ने ही ग्रामीण सड़क, पुल निर्माण और सोलर लाइट जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सरकार से जवाब मांगा। जदयू और भाजपा के विधायकों ने लंबित विकास कार्यों का मुद्दा उठाया, जिस पर संबंधित मंत्रियों ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदेश में सुखाड़ की स्थिति पर राजद विधायक कुमार सरजीत के प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश बिजली विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को सर्वे कर रिपोर्ट देने को कहा गया है, रिपोर्ट के आधार पर किसानों को डीजल अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। पथ निर्माण विभाग से जुड़े एक प्रश्न पर भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने विभागीय उत्तर पर आपत्ति जताई। मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने कहा कि विभाग से संबंधित बड़ी संख्या में प्रश्न आए हैं और सभी विकास कार्यों पर कार्रवाई जारी है। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत लंबित भुगतान का मुद्दा राजद विधायक भाई बीरेंद्र ने उठाया। ग्रामीण कार्य मंत्री ने बताया कि 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है और शेष भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। पंचायती राज विभाग की सोलर लाइट योजना पर जदयू विधायक श्याम रजक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सोलर लाइटें खराब पड़ी हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि एजेंसियों के कार्यों की

समीक्षा की जा रही है और खराब लाइटों की मरम्मत कराई जा रही है। कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी और छात्रों पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में सदन के वेल में आकर नारेबाजी भी की। विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर सदस्य अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। राजद विधायक कुमार सर्वजीत ने खाद्य पदार्थों और सब्जियों में शीशा तथा कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का मुद्दा उठाया। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव गंभीर हैं तथा सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। दूसरी पाली में सदन ने 13 महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कर दिया। इनमें बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026, बिहार नगर विकास विधेयक 2026, बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 तथा भारतीय स्टाम्प बिहार संशोधन विधेयक 2026 प्रमुख हैं। बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि यह विधेयक राज्य के युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बेहतर उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के दूसरे राज्यों में होने वाले पलायन को रोकना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में बिहार के लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और राज्य की प्रतिभा भी बाहर चली जाती है। उन्होंने कहा कि संशोधन के माध्यम से बिहार में विश्व स्तरीय निजी विश्वविद्यालयों को आकर्षित किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के अवसर राज्य में ही उपलब्ध होंगे। बिहार अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बदलते समय में अपराध की प्रकृति भी बदल रही है। संशोधन के तहत सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा या किसी व्यक्ति के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध भी बिहार अपराध नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। ऐसे मामलों में 6 महीने से 1 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक को भी संगठित अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि निवेशकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने और व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय सुगमता परिषद तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठित होगी। बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि संशोधन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण को व्यवस्थित करना है। सदन ने बिहार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा शर्त निरसन विधेयक 2026 समेत कई विधेयकों को पारित कर दिया। और अब प्रस्तुत है विधान परिषद में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता। इसके समीक्षक हैं वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। बिहार विधान परिषद में मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। मामूली नोकझोंक के बीच प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सैटेलाइट टाउनशिप, शिक्षा विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भूमि विवाद से जुड़े प्रश्नों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य एकमत दिखे। राज्य सरकार की प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा हुई। जदयू सदस्य रविंद्र कुमार के प्रश्न पर राजद सदस्य डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि नियमों की अस्पष्टता के कारण बड़ी संख्या में भूमि मालिकों को अपनी जमीन बेचने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने सरकार से नियम स्पष्ट किए जाने की मांग की है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि टाउनशिप के लिए चिन्हित भूमि बेचने वाले किसानों को 1 माह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि की जांच से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया 1 माह में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री के उत्तर पर राजद सदस्य डॉक्टर सुनील सिंह ने असंतोष जताया। राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह तथा अन्य सदस्यों ने पैक्स और व्यापार मंडलों की वित्तीय स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति की राशि का भुगतान लंबित रहने से राज्य के लगभग 70% पैक्स वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति के विरुद्ध लगभग 91% CMR राज्य खाद्य निगम को जमा कराया जा चुका है तथा इसके विरुद्ध करीब 76% राशि का भुगतान किया जा चुका है। दोपहर बाद दूसरी पाली में बिहार विधानसभा से पारित 7 महत्वपूर्ण विधेयकों को विधान परिषद ने भी मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्य छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में सदन से बहिर्गमन कर गए, जिसके बाद विधेयक पारित किए गए। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यमों से जुए के बढ़ते चलन पर रोक लगाने और

0: आर्थिक अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यह कानून लाया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप राज्य की कर व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजन के लिए सब परिवर्तन निरसन विधेयक 2026 तथा बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2026 सदन में प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बिहार चिकित्सा संशोधन विधेयक 2026 तथा बिहार नर्सेस पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करते हुए कहा कि इनके लागू होने के बाद देश के किसी भी राज्य में पंजीकृत चिकित्सक बिहार में अलग से पंजीकरण कराए बिना चिकित्सा सेवा दे सकेंगे। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बिहार चीनी उपक्रम अर्जन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। सभी विधायी कार्य संपन्न होने के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानमंडल में आज की कार्यवाही पर आधारित समीक्षात्मक वार्ता सुन रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति मिश्र, जबकि विधान परिषद की कार्यवाही के समीक्षक थे वरिष्ठ पत्रकार रामाधार प्रसाद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद।
2: डीजे प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार से जुड़ी हुई।
3: भगंगा द्रौपदी मुर्मू।
1: रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनिटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री टेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने, कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है, वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य

उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवी के अंतर्गत

पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए ना तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और ना ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी।
हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है, आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन

में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने एक मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। श्री रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, हमने पहले दिन से बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा, विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है, यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध लगातार बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फोन इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम हेलो मनपसंद में। आज आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बता देते हैं कि आप भी अपने मनपसंद गाने को सुन सकते हैं, बस करना है एक फोन। हमारा फोन नंबर है 06184221130, 06184221130। हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: सर मैं जय कुमार सिंह, ग्राम किनर चोला, पोस्ट जय सुरखाना, थाना भगवानपुर, जिला कैमूर, बिहार से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, बोला जाए सर।
1: सर बहुत खुशी की बात है, आज पहली बार मैंने ट्राई किया और हमारा कॉल लग गया।
0: अरे अब बहुत भाग्यशाली निकले आप तो।
1: जी भी समझ रहे हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, पहली बार हमारा फोन लग गया, अब हमको इतना खुशी हो रहा है, कुछ बोल ही नहीं जा रहा है।
0: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रयास करने से तो भगवान से भेंट हो जाती है, हम लोग कौन बड़ी चीज है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर आपने फोन किया है, आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: हम सर अपने परिवार का नाम लेना चाहते हैं, बहुत लोग तो अपने दोस्तों का नाम लेते हैं।
0: जी जी।
1: हमारा नाम तो जय कुमार सिंह है
0: जी।
1: हमारी पत्नी का नाम रीता देवी।
0: जी जी।
1: हमारी लड़की एक तो है खुशबू कुमारी, बिहार पुलिस में है।
0: जी जी, आशीर्वाद।
1: सचिन कुमार कुशवाहा जी है, वो शिक्षक है। एक अनुभव कुमार है, वो नेवी में है, विशाखापट्टनम।
0: चलिए बहुत सुखी संपन्न परिवार है आपका।
1: हाँ सर, हम खेती करते हैं, किसान आदमी है
0: जी। इस बहुत सौभाग्यशाली हैं कि किसानी करके सारे परिवार को इतना आगे बढ़ाए। सर क्या सुनना चाहते हैं? फिल्म का नाम बताइए, मुखड़ा का बोल है कुछ?
1: सर नदिया का तार का सुना दीजिए।
0: जी जी।
1: दिशा में
0: कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया?
1: जी
0: लीजिए, सुनिए अपने सर मनपसंद का यह गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं सर?
1: विनोद भाई,
0: जी
1: शेख जफर हसन, कुआं जिला रोहतास, बिहार से।
0: जी जी बोला जाए सर, क्या हाल चाल?
1: हाँ सर, ठीक है। आज तो पसंद आदमी तो आज हमारा नाम आया आपने।
0: हमारी कोशिश यही रहती है सर कि अधिक से अधिक नाम को शामिल किया जाए, ऐसी बात नहीं है।
1: सुन रहा था।
0: आज क्या सुनना चाहते हैं सर?
1: फिल्म का नाम बता दूंगा, आई एक्सप्रेस पर हुआ। खास बात यह है आज के प्रोग्राम में,
0: जी
1: 1980 31 जुलाई सहरसा, गायक मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि है, 31 जुलाई को उनकी मृत्यु हुई थी।
0: जी जी
1: तो इसके माध्यम से मैं याद करना चाहता हूँ। गम ज्यादा हूँ मुझे आसरा दीजिए,
0: वाह।
1: गम ज्यादा हूँ मुझे आसरा दीजिए, जाते जाते जरा मुस्कुरा दीजिए,
0: वाह।
1: फिल्म है फिर वही दिल लाया हूँ, मोहम्मद रफी ने ये गाया था।
0: जी जी
1: गाने के बोल है, चल में सजा ले ना कलिया।
0: वाह सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या उम्र रही होगी इस समय?
1: सर उम्र तो आपको जब बात कर दिया छेड़ी दिया तो हमारी उम्र है 67 साल।
0: सर इस उम्र में भी इतना खुश नसीब हैं कि आप इतना खुश रहते हैं, हमारे रेडियो परिवार की तरफ से सारी उम्र आपको लग जाए और आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें, यही मेरी शुभकामना है सर।
1: दोस्त से बस याद कर लेता
0: जी।
1: सर आपकी जाजा को गीत का।
0: जी बोलिए बोलिए सर।
1: हमारे दोस्त है उस्मान अली अंसारी,
0: हाँ,
1: पुरुषोत्तम कुमार और अलवर बिहारी।
0: जी जी तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत।

0: हेलो मनपसंद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: प्रेम सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: अच्छा, बोला जाए सर।
1: कैसे हैं आप?
0: बढ़िया, आकाशवाणी सासाराम में स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा
0: जी
1: है।
0: जी जी आपने फोन किया, जरूर कोई ना कोई ख्वाहिशें होंगी गीत सुनने की, तो
1: जी बिल्कुल, आकाशवाणी
0: आज कौन सी
1: मोबाइल
0: गीत सुनना
1: सुनते
0: चाहते हैं
1: हैं
0: आप?
1: हम। और आपको बताऊं, अभी मौसम काफी अच्छा हो चुका है हमारे यहाँ पर।
0: जी यहाँ भी मौसम अच्छी है।
1: जी बरसात हुई है तो अभी किसानों में काफी उत्साह है, क्योंकि सभी ने
0: हाँ
1: सोयाबीन की
0: बिल्कुल
1: फसल लगाई
0: बिल्कुल,
1: हुई है।
0: कुछ निराशा तो कम हुई है किसानों के लिए।
1: हाँ जी बिल्कुल, काफी उत्साह वो बढ़ चुका है, क्योंकि अभी फसल के लिए बहुत जरूरी था पानी,
0: जी जी
1: और पानी भी पिछले हफ्ते भी नहीं गया था, लेकिन आज शाम से अच्छा बारिश हुई है यहाँ
0: जी
1: पर।
0: जी
1: हाँ
0: जी देर आई है, दुरुस्त आई है, थोड़ी सी लेट हुई है, मगर उससे कोई परेशानी ज्यादा नहीं है।
1: जी
0: आज के भी डेट में अगर बारिश हुई तो किसान अच्छे पैदावार पैदा करेंगे,
1: जी
0: ये
1: बिल्कुल, अच्छी
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: फसल
0: हम लोग के
1: होगी
0: इसी
1: किसानों
0: उम्मीद
1: की।
0: रखी जाती है। तो सर आज फोन किया आपने आकाशवाणी के सासाराम, आप बताइए कि आज कौन सी गाना सुनने की ख्वाहिशमंद है?
1: जी लगान फिल्म का सुनवा दीजिएगा,
0: लगान
1: काले
0: फिल्म
1: मेघा काले मेघा पानी तो बरसा।
0: लीजिए, सुनिए सर लगान फिल्म का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो फरमाइश।
0: बोला क्या हाल चाल? अपना
1: बढ़िया।
0: परिचय दीजिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनूप कुमार, ग्राम उपरेखा, तहसील सरीला, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी जी
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। बोला जाए सर, कैसे हैं?
1: बढ़िया।
0: उधर का मौसम कैसा है अभी?
1: ठंडा है।
0: ठंडा है जी। तो मौसम उतार चढ़ाव है, इसमें बच के रहना पड़ता है मनुष्य को। तो आज आपने फोन किया है आकाशवाणी के सासाराम केंद्र, नियमित श्रोता हैं हमारे। आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: फूल और कांटे का कोई भी गीत सुना लो। जी
0: फूल और कांटे।
1: जी जी
0: क्या तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, सुना जाए?
1: जी जी जय वाला सुना लो।
0: चलिए लीजिए, सुनिए पहले मनपसंद का यह गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: जी सर नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, बोलिए सर।
1: कटकन से बोल रहे हैं। ठीक
0: जी, बोला जाए, कैसे हैं?
1: है। उस दिन तो आप गाना नहीं सुनाए।
0: कौन सा गीत सर?
1: नागिन नाचे गली गली,
0: नागिन नाचे गली गली।
1: उसी फिल्म का कोई भी गाना सुनाए।
0: अच्छा ठीक है सर, आज आपकी फरमाइशें जरूर पूरी कर दीजिए, क्योंकि समय का पाबंद है। आज भी प्रोग्राम में कुछ कटौती हुई है, क्योंकि संसद और ये विधानसभा दोनों चल रहा है, तो हो
1: हाँ
0: सकता
1: हाँ
0: है
1: वो
0: कि,
1: तो है।
0: मगर आपको ख्वाहिशें को जरूर पूरी की जाएगी सर।
1: परिवार भी है सर,
0: जी जी
1: लीला देवी, हिमांशु, दुगो नाती है मेरा,
0: जी जी
1: अनमोल आरती।
0: तो लीजिए सुनिए अपने मनपसंद का यह गीत।

इसी गीत के साथ दीजिए अनुमति फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद से। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सुन सकते हैं शनिवार यानी 25 जुलाई सन 2026 को इसी मीटर पर इसी समय पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। अपने दोस्त विनोद को नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आंदोलन बनना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की

0: कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
2: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
3: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: साइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नामची जिले के एनएसपीसी की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और एनएसपीसी ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लालचौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
2: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। एनएसई मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित।

0: विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue. In Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US
2: FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय गायन का कार्यक्रम सुर सौरभ। इसके अंतर्गत सुनते हैं सितार वादन पंडित निखिल बनर्जी से। राग श्री राग है, तबला पर संगत दिया है करामतुल्ला खान ने।

0: व्यवस्था को मिल रही।
1: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
2: आन मिलो शाम सवरे,
1: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
3: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
1: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
3: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक दिलचस्प घटना बताते हैं। एक लड़का था जिसकी बहन की शादी हो रही थी और अभिनेता मोतीलाल चूंकि उसके रिश्तेदार थे इसलिए वो इस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। चूंकि माहौल शादी के जश्न का था तो उस लड़के से कहा गया कि तुम गाना गाओ क्योंकि परिवार में सब जानते थे कि इसे गाने का शौक है। उस लड़के ने गाना गाया और सब लोग मुग्ध होकर सुनते रहे। मोतीलाल जी को लगा कि इस लड़के में प्रतिभा है। उन्होंने उसे मुंबई बुला लिया और बस यहां से फिल्म संगीत का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया क्योंकि ये नौजवान था मुकेश चंद्र माथुर।
1: जब त-

0: रहेंगे। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को खंगालें तो जो सबसे रोशन सितारे हमें नजर आते हैं पुरुष गायकों में, वो हैं मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार। जाहिर है कि इन तीन मुख्य सितारों को अलग कर दें तो फिल्म संगीत के न जाने कितने अनमोल गाने फिल्म संगीत के इतिहास से हट जाएंगे। मुकेश चंद्र माथुर के अपने फैन रहे हैं और दुनिया के कोने कोने में रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुकेश की गायकी में ऐसी सादगी, ऐसी सरलता है कि यूं लगता है जैसे वो हमारे लिए गा रहे हैं और हम उनके साथ गा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि आपके परिवार में अंत्याक्षरी हो रही हो, कोई पिकनिक हो, कोई अन्य उत्सव हो, गाने का माहौल हो, तो कोई ना कोई मुकेश का फैन आपको जरूर मिल जाएगा। यूं लगेगा जैसे मुकेश उसकी आवाज में गा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुकेश जी की जीवन यात्रा।
1: मैंने

0: सपने।
1: मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था। पिता लाला जोरावर चंद इंजीनियर थे और माँ थी चांद रानी। दरअसल पुरानी दिल्ली में पैदा हुए इस लड़के के जहन में संगीत की महक बहुत पहले से थी। बहुत बचपन से इस लड़के ने गुनगुनाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब सबसे बड़े गायक थे कुंदन लाल सहगल और सभी उनके दीवाने हुआ करते थे। जाहिर है कि यंग मुकेश भी कुंदन लाल सहगल के फैन थे। दसवीं पास की उस जमाने में इतनी पढ़ाई बहुत मानी जाती थी। इसके बाद लोक निर्माण विभाग में काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन यही दिन थे जब उनकी बहन की शादी हुई और वही घटना हुई जो हमने आपको इस कार्यक्रम की शुरुआत में सुनवाई थी। और इस तरह से मुकेश का मुंबई जाने का रास्ता खुल गया। हुआ यूं कि रंजीत मूवी टोन की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि एक नए गायक की तलाश जारी है। और फिर क्या हुआ कि चंदूलाल शाह के जारी किए गए इस विज्ञापन को देखकर मुकेश मोतीलाल जी के पास मुंबई आ गए। यहाँ आने के बाद उन्होंने पंडित जगन्नाथ प्रसाद से संगीत की तालीम लेनी भी शुरू कर दी और उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये सपना देखा कि वो गायक अभिनेता बनेंगे। और ऐसा हुआ भी। सन 1941 आया, मुकेश ने अपनी पहली फिल्म साइन की निर्दोष। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया और गाया भी। यानी ये वो पहला गाना है जो मुकेश जी ने गाया, पर इस गाने में मुकेश जी ने प्लेबैक नहीं किया, यानी किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए गाया। ये गाना था दिल ही बुझा हुआ है तो फसले बहार क्या।

मुकेश जी का पहला प्लेबैक गाना कौन सा था ये भी आपको बता देते हैं। सन 1945 में फिल्म पहली नजर बन रही थी। संगीतकार अनिल बिस्वास से मोतीलाल ने ये कहा कि आप मेरे लिए एक युवा गायक से प्लेबैक करवाएं। मुकेश की आवाज जब अनिल बिस्वास ने सुनी तो उन्हें ये आवाज जम गई और फिर मुकेश ने गाया अपना पहला प्लेबैक सॉन्ग पहली नजर फिल्म में।

जब कुंदनलाल सहगल तक इस गाने की ख्याति पहुंची और उन्होंने इस गाने का रिकॉर्ड सुना तो वो चकित रह गए। उन्होंने तपाक से ये सवाल पूछा, ये गाना मैंने कब गाया? इसके बाद उन्होंने मुकेश को अपने घर बुलवाया और कहा कि तुम गाने गाते जाओ। मुकेश एक के बाद एक कई गाने गाते चले गए और कुंदनलाल सहगल उस जमाने के सुपरस्टार, उस जमाने

के लाजवाब गायक और अभिनेता मुकेश को मुग्ध भाव से सुनते चले गए। उन्हें लगा कि यही है मेरा उत्तराधिकारी और उन्होंने अपना रियाज वाला हारमोनियम मुकेश को भेंट कर दिया। ये कुंदनलाल सहगल का मुकेश के लिए आशीर्वाद था। सन 1941 में निर्दोष में अभिनय करने के बाद सन 1943 में मुकेश ने एक और फिल्म में अभिनय किया जिसका नाम था आधा बर्ज। सन 1953 में उन्होंने फिल्म माशूका में अभिनय किया जहां उनकी हीरोइन थी सुरैया और सन 1951 में मल्हार फिल्म में अभिनय किया। संगीतकार रोशन की ये पहली

ये वो दौर था जब मुकेश कुंदन लाल सहगल की छाया में थे, उनके प्रभाव में थे और उनके जैसा गाया करते थे। सन 1948 में नौशाद ने दिलीप कुमार की फिल्म मेला के लिए मुकेश को गाने का मौका दिया और नौशाद के जरिए कुंदन लाल सहगल की छाया से बाहर आया उस जमाने का युवा पार्श्व गायक मुकेश। और फिर बस मुकेश की अपनी शैली तैयार हो गई। सन 1949 तक मुकेश का स्वर कुछ ऐसा हो चुका था।

1948-49 का दौर भारत में फिल्म संगीत के बदल जाने का दौर था। कैसे, आपको बताते हैं। लगातार नई प्रतिभाएं आती चली जा रही थीं और इन नई प्रतिभाओं में शामिल थे युवा संगीतकार शंकर जयकिशन। शंकर सिंह रघुवंशी और जयकिशन पांचाल किस तरह से मिले, ये तो एक इतिहास है। राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म बरसात में संगीत देने का मौका दिया और इस युवा संगीतकार जोड़ी ने कई युवा कलाकारों से गाने गवाए, जिनमें से एक मुकेश भी थे। फिल्म बरसात में मुकेश ने दो गाने गाए थे। एक गाना था ये।

0: घर है।
1: और इसके बाद राज कपूर, शंकर जयकिशन और मुकेश की इस तरह से टोली बनी कि एक के बाद एक इनकी फिल्में आती चली गईं और इन तमाम फिल्मों में मुकेश के गाने आते चले गए। यहां तक कि मुकेश का आखिरी गीत भी राज कपूर की ही फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। ये कहानी बाद में, पहले आपको एक दिलचस्प आंकड़ा बताते हैं। जरा सोचिए कि मुकेश ने किस संगीतकार के लिए सबसे ज्यादा गाया होगा। आपने सही सोचा है, शंकर जयकिशन के लिए मुकेश ने कुल 133 फिल्मों में पार्श्व गायन किया, जबकि कल्याण जी आनंद जी के लिए 99 फिल्मों में। जाहिर है कि कल्याण जी आनंद जी भी मुकेश के

चलिए फिर से पीछे चलते हैं, समय के चक्र को घुमाते हैं और पहुंच जाते हैं सन 1948 में। आप सोच रहे होंगे कि यहां हम क्यों आए हैं। दरअसल यहां हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बरसात वो पहली फिल्म नहीं थी जिसमें मुकेश ने राज कपूर के प्रोडक्शन के लिए गाया था। राम गांगुली के निर्देशन में आग में वो ये गाना गा चुके थे।

अब राज कपूर के साथ मुकेश ने किन किन फिल्मों के लिए गाया, एक के बाद एक लड़ी में फिल्में और गाने पिरोते हुए आज के फनकार कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आप हमारे साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए जरा अपने पैंट को थोड़ा सा ऊपर मोड़ लीजिए, सिर पर एक टोपी पहन लीजिए और सन 1951 में चलकर उछलते हुए मेरे साथ

सन 1964 में राज कपूर ने अपनी बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई, जो राज कपूर की पहली कलर फिल्म थी, फिल्म संगम। इस फिल्म में मुकेश ने ये मार्मिक गाना गाया था।

सन 1966 तक हम आ पहुंचे हैं और यहां हमारे हाथों में है फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक मारे गए गुलफाम। हमें याद शैलेंद्र की आ रही है जिन्होंने इस पुस्तक पर तीसरी कसम फिल्म बनाई और इस फिल्म में मुकेश ने बड़े मन से गाया।

और फिर सन 1978, मुकेश को अमेरिका की यात्रा पर जाना था और जाने से पहले जो आखिरी गीत उन्होंने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के लिए था।

इस गाने को रिकॉर्ड करने के बाद मुकेश ने एक लंबी उड़ान ली अमेरिका के लिए, और वहां से इससे भी लंबी उड़ान वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। ये बातें हुई राज कपूर और मुकेश के साथ वाले गानों की, लेकिन ऐसा नहीं था कि राज कपूर के लिए सिर्फ उनके प्रोडक्शन में मुकेश ने गाया हो। जरा 1950 में केदार शर्मा की बनाई फिल्म बावरे नैन का ये गाना सुनिए और याद कीजिए नीली आंखों वाले राज कपूर को।

अब आप सोच रहे होंगे ये भी कोई बात हुई कि पूरे आज के फनकार कार्यक्रम में केवल राज कपूर की बातें। अरे नहीं नहीं, ये नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। दिलीप कुमार के लिए जो प्लेबैक मुकेश ने किया वो तो लाजवाब था। फिल्म यहूदी का ये गाना सुनिए, शैलेंद्र के बोल हैं।

जाहिर है कि फिल्मी दुनिया के न जाने कितने नायकों ने पर्दे पर होंठ हिलाए, लेकिन आवाज तो मुकेश की थी, यानी उन्होंने मुकेश के गीत गुनगुनाए। मुकेश को भले ही एक दर्द भरी आवाज कहा जाता हो और रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड के बुक स्टॉल्स पर जो गानों की किताबें मिलती हैं उनके शीर्षक हों मुकेश के दर्द भरे नगमे, लेकिन मुकेश केवल दर्द भरे नगमों के गायक नहीं थे। जब भीगा भीगा मौसम आता है तो भला कौन सा ऐसा मनमौजी व्यक्ति हो जो ये गाना न गुनगुनाए।

0: याद।
1: यानी हम ये कहना चाहते हैं कि मुकेश ने तरह तरह के गाने गाए। वो केवल एक दर्द भरी आवाज नहीं थे, वो एक जिंदा दिल आवाज थे। मुकेश एक बेमिसाल शख्सियत जिन्होंने हर समय लोगों का भला किया। 27 अगस्त 1976 डेट्रॉइट मिशिगन, एक कॉन्सर्ट चल रहा है और मुकेश गाना गा रहे हैं। पर्दे के पीछे जाते हैं, दिल का दौरा पड़ता है और वो इस अनजान दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं। कॉन्सर्ट जारी रहता है, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं उनके बेटे नितिन मुकेश। उसके कुछ दिन बाद मुंबई के एयरपोर्ट पर एक ताबूत उतरता है। एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतजार में हैं अभिनेता राज कपूर और अभिनेता मनोज कुमार। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की कई जानी मानी शख्सियतें। मुकेश के ताबूत को देखकर राज कपूर रो पड़ते हैं और कहते हैं, मेरी तो आवाज ही चली गई। मुकेश के जाने से एक खला आ गई और ये खला कभी मिट नहीं सकती। मुकेश हम सब की आवाज हैं, हम सब थोड़े थोड़े मुकेश हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक मुकेश पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। लीजिए सुनिए एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग।

मोहब्बत के मुकद्दर में हर बार जुदाई है। शहर में शोर है लेकिन मेरे दिल में तन्हाई है।

आवाज़ है राहुल वैद्य की, रचना समीर अंजान और संजीव चतुर्वेदी की है, धुन बनाई है नदीम श्रवण और संजीव चतुर्वेदी ने। एल्बम का नाम जिंदगी खफा खफा।

आवाज़ है जुबिन नौटियाल की, मनोज मुंताशीर की रचना है, धुन बनाई है रोशक कोहली ने। एल्बम का नाम दिल पे जख्म।

वफा की उम्मीद में हम खुद को मिटा बैठे, तुम्हारी हर बेरुखी को हम अपनी तकदीर बना बैठे। दुनिया ढूंढती होगी तुम में कमियां हजारों, हम तो तुमसे बस मोहब्बत की इनायत छुपा बैठे।

आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौड़वाल की, संतोष आनंद की रचना है, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, फिल्म का नाम बड़े घर की बेटी।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और मौसम की जानकारी।

कल प्रातः 7:30 पर सुनिएगा प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 8:15 पर। फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी आपको सुनवाएंगे सुबह 8:20 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मलिका का समय होगा सुबह 9:10 पर। साहित्य के कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:05 पर।

भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार आपको सुनवाएंगे सुबह 10:45 पर। लोक माधुरी कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 10:30 पर।

युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी हम लेकर हाजिर होंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीत सुनिएगा शाम 6 बजे से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का समय होगा शाम 6:05 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा शाम 6:10 पर।

प्रायोजित कार्यक्रम आयुष्मान सुनिएगा रात्रि 7 बजे से। गुड इवनिंग रोहता संध्याकालीन सूचना कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार जिले की हलचल सुनिएगा 7:25 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे। विधानमंडल समीक्षा का समय होगा 7:50 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। संसद समीक्षा आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे से। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर। लोकधारा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9 बजे से। संसद के प्रश्नकाल की कार्यवाही के रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10 बजे से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रसरंग कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 10:15 पर। चित्रपट तराने लेकर हम हाजिर होंगे रात्रि 10:30 पर। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 22 से 26 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90% तथा दोपहर में 55 से 60% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। अभी आप जानकारी ले रहे थे कल के कार्यक्रमों की और मौसम की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च

0: स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
1: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended